मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 अगस्त सन 2026, सवेरे के 5:58 हो रहे हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक

0: युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। जिस तरह तालाब में कमल के फूल हमेशा वहीं जन्म लेकर वहीं खिलकर उसी रमणीय निसर्ग को चलाने वाले के चरणों में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह उसी परमात्मा में विलीन होने की इच्छा से तिल मिलाता हुआ जो पदार्थ या प्रक्रिया होती है वो है भक्ति। भक्ति वो रस है जो इस भवताप रूपी कढ़ाई में निरंतर उबलता खौलता रहता है। तब उसी मीठे गुड़ से सिद्ध और परिपक्व पदार्थ को केवल चखने मात्र से एक अजब सी ठंडक प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के तन मन ही नहीं किंतु दिल दिमाग पर आए फफोले पर असीम प्रेम करुणा का लेपन लग जाने से असीम शांति संतुष्टि का भाव सारे जीवन भर के लिए तृप्त करता है।

सभी विद्वजन ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को प्रमुख शर्त मानते हैं। वो कहते हैं कि समर्पण भाव के लिए भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति विनम्रता का भाव होना बेहद जरूरी है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जो भक्त जितना विनम्र होता है उसके प्रति ईश्वरीय अनुकंपा और कृपा की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।

हरि बिन तेरो को न सहाय, हरि बिन तेरो को न सहाय, काकी मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई।

हाले दिल सुनाएं किसको आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहां सरकार जाएं आपके होते हुए।

सूर्य देवता का गायत्री मंत्र है ओम आदित्याय विद्महि प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। यह मंत्र भगवान सूर्य देव की स्तुति और आराधना के लिए किया जाता है। अरे आइए कार्यक्रम के अंत में करते हैं भगवान सूर्य देव की ये स्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड नंबर 222 222।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। क्षमा कीजिए, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: रामचरित मानस के अंतिम अध्याय में एक प्रसंग आया है। पक्षीराज गरुड़ काग भुषंडी से पूछते हैं कि आपने हजार योनियों में जन्म लिया है, इनमें सबसे उत्तम योनि कौन सी है। काग भुषंडी का उत्तर था कि इनमें से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। मनुष्य योनि के सर्वोत्तम होने के जो कारण काग भुषंडी ने गिनाए, उन्हें सुनकर न जाने क्यों पक्षीराज की जिज्ञासा शांत हो गई। उन्हें फिर पूछना चाहिए था कि मानव योनि पाकर क्या मनुष्य अन्य जीव जंतुओं का जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है, और यदि है तो इसका उपाय क्या है। संभवतः तुलसीदास जी के युग में मनुष्य योनि एक वरदान ही रहा होगा। उसे देखकर तो यही लगता है कि मनुष्य जीवन की अपेक्षा अन्य प्राणियों का जीवन कहीं अधिक सुखी और सुरक्षित है। बाह्य जगत की आपाधापी और अंतर मन का द्वंद्व आज मनुष्य जीवन के अनिवार्य तत्व बन चुके हैं। इन तत्वों के मिश्रित प्रभाव से उपजे काम, क्रोध, मद, लोभ उसकी नियति बन गए हैं। इनके वशीभूत वो अपनी जीवन नैया को उस दिशा में ले चलता है जहां क्षणिक सुख तो उसे मिल जाता है, लेकिन अंततः पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। यह पछतावा बीते समय को वापस नहीं ला सकता, फिर पछताने से क्या लाभ। सांप जब निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या लाभ। मनुष्य योनि मोक्ष प्राप्ति यानी अनंत सुख प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी है। इस सीढ़ी तक पहुंचने के बाद यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूलता नहीं तो इंद्रिय सुखों को तुच्छ जानकर वो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, और इनसे दूर रहकर आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन में बंधकर वो अपने प्रत्येक कर्म को संचालित करता है। यह अनुशासन उसे आत्मानुभूति कराता है कि वो अपने में ही संपूर्ण इकाई नहीं है, वरन वो समाज का एक अंग मात्र है। शरीर तो पूरा प्राणी जगत है, मानव जगत ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पूरा प्राणी जगत का वो एक हिस्सा है। यही है वो अनुभूत जो जीवन को सुखी और सार्थक बनाती है। यही है वो अनुभूत जो मनुष्य को स्वकेंद्रित यानि स्वार्थी होने से बचाती है। समाज के हित में स्व का हित तलाशने की सीख देती है। जीवन का सुख और जीवन की सार्थकता भी इसी अनुभूति में निहित है। इस अनुभूति की प्राप्ति के लिए किसी कठिन जप तप की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों ने जप तप के कष्टदायक कठिन मार्ग पर चलकर हमारे लिए बहुत ही सुगम मार्ग ढूंढ निकाला है। वो मार्ग है आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का। जिसने अपने जीवन में इसे उतार लिया, उसे सहज में ही वो सब कुछ मिल जाता है जो ऋषि मुनियों को कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सवेरे के 6:45 हुए हैं। काव्य धाराक्रम में लीजिए सुनिए श्री ईश्वर चंद गंभीर का काव्य पाठ।

थे कहाँ गए, अतिथि का सत्कार करे थे कहाँ गए, गाँव में छप्पर मिलकर साथ

प्यार करे थे कहाँ गए जो आपस में प्यार करे थे कहाँ गए प्रेम का जो व्यवहार करे थे कहाँ गए। एक गीत और मित्रों बुजुर्गों के लिए इनसे।

यही दुआ वरदान करो बुजुर्गों का सम्मान। एक और रचना आपके समक्ष रख रहा हूं। बेटे जैसा बेटी को स्वच्छंद करो, बेटे जैसा बेटी को स्वच्छंद करो, चार दीवारी में ना इनको बंद करो, चार दीवारी में ना इनको बंद करो। बंद देखें, उच्च शिक्षा जब कोई बेटी पाएगी, जग में रोशन कुल का नाम कराएगी। उच्च शिक्षा

0: भावना से उसकी अब द्वंद करो, नहीं भावना से उसकी अब द्वंद करो, चार दीवारी।
1: काव्यधारा क्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री ईश्वरचंद गंभीर का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: सारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारोपसंगमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सह नवदिल्ल्यां आयोजिते वाणिज्यमञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 21.99 लाख कोटि रूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगत विकास व्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारं उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 28.19 लाख कोटि रूप्यकाणि अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45.88 लाख कोटि रूप्यकाणि अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10.8 लाख कोटि रूप्यकाणि प्राप्नोत्। पश्चिमबंगालराज्यं 66.87 लाख कोटि रूप्यकाणि महाराष्ट्रराज्यं च 22.7 लाख कोटि रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गोनगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि 17 रजतपदकानि 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्यतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉटपुट F57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किया।

जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
1: प्रमुख रोग जो है हड्डियों के, वो हड्डियों में बीमारी का होना, हड्डियों में किसी प्रकार की ट्यूमर का होना और जोड़ों में जो है इन्फेक्शन होना, मवाद पड़ जाना, ये जो है इसके प्रमुख रोग होते हैं। जोड़ों के दर्द जो है इसके कारण तो बहुत होते हैं, पर मुख्य कारण जैसे कि जोड़ में यदि कभी मतलब कोई चोट वोट लग जाए तो चोट लगने की वजह से भी जो है जोड़ों में दर्द रहता है, या जोड़ों की बीमारी जिसको कि प्रमुख बीमारी हमारे यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी होती है, वो उससे हो सकता है, या फिर बूढ़े लोगों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी होती है, जोड़ों में जो है ओल्ड एज जो है चेंजेस आते हैं, उससे हो सकता है। और बाकी जोड़ के अंदर अगर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो भी एक जोड़ का कारण, दर्द का जो है कारण हो सकता है। जोड़ इसी मतलब जो है इन्फेक्शन से है, जैसे कि इन्फेक्शन जो है वो टीबी के जो है कीटाणु से हो सकता है, या इन्फेक्शन जो है मवाद जो है पड़ने वाले कीटाणु से होता है, तो इस टाइप की आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द रहता है बना हुआ। टीबी से होने वाला इन्फेक्शन जोड़ों में जो है दर्द जो है उसमें धीमे धीमे होता है और मरीज को साथ में बुखार आता है, बुखार हल्का होता है, तेज नहीं होता है, जोड़ों में सूजन आती है और अक्सर मरीज को शाम के टाइम भी बुखार रहता है और हुस्ता रात में कभी कभी पसीना भी आता है मरीज को, भूख उसे कम लगती है, साथ में उसका वजन भी गिरने लगता है, और टीबी की बीमारी जो है फेफड़ों की टीबी या आंत की टीबी वो भी इसको साथ में हो सकती है। इसमें जो है बीमारी अपना एक लंबा समय लेती है। और दूसरा जो है जैसे आम जो है मवाद पड़ने वाले जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें जोड़ों के में बहुत तेजी से जो है दर्द होता है, जोड़ के आसपास जो है लाली आ जाती है, जोड़ों का तापमान बढ़ जाता है और बहुत ये जो है बीमारी बड़ी पेनफुल होती है, इसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, इसमें बुखार बहुत तेज आता है। और तीसरा जो है ओल्ड एज में या चोट लगने के बाद जो जोड़ में जो पुरानी जो है चोटें होती हैं उसका दर्द जो है वो जिस प्रकार के हम लोग जब चलते फिरते हैं या कोई एग्जर्सन हो जाए कुछ है उसमें वो दर्द बढ़ जाता है, उसके बाद जो है अगर आराम कर रहे तो वो दर्द भी कम हो जाता है। हमें खासकर ये कैल्शियम और विटामिन डी, ये विटामिन डी तो हमारे शरीर में सूरज की रोशनी जो होती है, अगर हम धूप में प्रॉपर हमको सनलाइट मिले, बच्चों को अगर जो है बचपन में सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे तो धूप से ही जो है हमारे शरीर के अंदर जो है विटामिन डी जो है स्किन पे जो है मैन्युफैक्चर होता है, वो जाके उसके बाद जो है अपना कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जो है शरीर में बढ़ाता है। दूसरा यह है कि बच्चों को दूध अगर प्रॉपर मिलना चाहिए या हमको भी जो है दूध मिलना चाहिए पीने को, अंडा हुआ, ये इस टाइप की जो है चीज़ें जिसमें कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बाद कॉड लिवर ऑयल होता है जो फिश होती हैं उसमें भी विटामिन डी होता है। कैल्शियम के लिए जो है जितने भी हमारा ये हुए अंडा हुआ, मीट हुआ, ये जो प्रोडक्ट हुए मिल्क प्रोडक्ट हुए, दूध हुआ, पनीर हुआ और कर्ड हुआ, इन सब में जो है कैल्शियम होता है। हाँ, मूच जो है वैसे हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्प्रिंग, तो मूच जो है जोड़ के अलावा किसी और हिस्से में भी आ सकती है, जनरली जोड़ पे ही मूँछें आती हैं जितनी भी है, क्योंकि जोड़ में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है शरीर का हमारा, हर अंग जो है जोड़ से जो है हिल रहा है, मतलब जैसे कि हाथ के जोड़े, पैरों के जोड़े, कमर है, गर्दन है, ये सब हमारे जोड़े जिसकी वजह से हम जो है हमारा पूरा शरीर जो है वो चलाएवान है। अब होता क्या है कि जैसे मूँछ आई तो मूँछ जो है कमर में जैसे आएगी तो कमर में भी जो है जैसे मसल्स होती हैं, मसल्स भी अगर जो है पुल अप हो जाती तो वो मूँछ होती है, तो मूँछ जो है जोड़ के अलावा किसी भी जो है मसल्स की लाइन में जो है मूँछ हो सकती है।
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें।

0: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में गलघोंटू रोग कारण लक्षण और बचाव के संदर्भ में। किसान भाइयों, देखिए हम सब पशु पालते हैं और पशु हम दो तरीके से पालते हैं, एक तो दूध के लिए पालते हैं और दूसरे हम जो अपने खेती के कार्य करने के लिए पालते हैं। तो इस दृष्टिकोण से पशुओं की रक्षा करना, सुरक्षा करना और उन्हें अच्छा चारा देना हमारा दायित्व बन जाता है और हम अपने पशुओं की काफ़ी देखभाल करते भी हैं। तो देखिए, जब हम पशु पालते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे रोग हमारे पशुओं में लग जाते हैं जिनका निदान करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उनमें से कुछ रोग ऐसे होते हैं जो भैया जानलेवा बन जाते हैं। तो पशुओं में गलघोंटू ऐसा रोग है जो भैया अगर समय से उसका इलाज न किया जाए या देखभाल न की जाए तो पशु की मौत भी हो सकती है। भाई देखिए, आजकल पशुओं की अगर हम बात करें तो कीमतें आकाश को छू रही हैं, यानी कि एक एक दो दो लाख के पशु हैं। तो भैया हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। बात यह आती है कि पशुओं में गलघोंटू रोग क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें तो भैया पशु में जो गलघोंटू रोग है, एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है और मुख्यतः ये बैक्टीरिया के कारण होती है, जो भैया मुख्य रूप से गायों में और भैंसों में बारिश या बदलते मौसम में होती है। विशेष रूप से हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि देखिए दो समय होते हैं, एक तो जब बरसात समाप्त होने को होती है यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में, और दूसरे एक जब बरसात शुरू होती है यानी कि जून और जुलाई का महीना होता है। इन दोनों समय में भैया मौसम बदलता है, तो ऐसे में भैया ये रोग ज़्यादा प्रभावी होता है। इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें तेज बुखार आता है, गले में सूजन हो जाती है और पशुओं को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और भैया ये बीमारी जो होती है 12 से 24 घंटे के अंदर पशु की जान भी ले सकती है। तो भैया देखिए, जैसे ही आप लक्षण देखें तो तुरंत अपने कुशल पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज जरूर कराएं। इसमें भैया पहचान की अगर बात है तो यह है कि पशु का शरीर बहुत गर्म हो जाता है, यानी कि पशु को जो बुखार होगा वो 107 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच जाता है। दूसरे ये है कि भाई पशु के गले में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है और गले पर और छाती पर सूजन आने से सांस लेने पर घर घर की आवाज़ होती है। आमतौर पर हमारे किसान भाई उसी समय पहचान पाते हैं जब घर घर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। साथ साथ पशु जो है मुंह खोल लेता है और मुंह से लगातार लार बहती है और पशु खाना छोड़ देता है, और जब वो खाना छोड़ देता है तो पशु में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और पशु उदास दिखाई देने पड़ता है, सुस्त हो जाता है। तो ये लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण आपको अपने पशु में दिखाई दे रहे हैं तो भैया आप समझ लीजिएगा कि आपके पशु को गलघोंटू रोग लग गया है। तो ये रोग भैया काफ़ी जानलेवा है, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना ही उपयोगी होता है। आप ध्यान ही रखें कि जो आपके नज़दीक में कुशल पशु चिकित्सक हो उसे संपर्क कर लें। अगर ज़रा सी भी आपने देरी कर दी तो ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन भैया हमें कुछ सावधानी भी रखनी होती हैं। अगर आप ये देख लें कि ये किसी पशु को हो गया है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने पशु को स्वस्थ पशुओं से दूर बांध दें, क्योंकि भैया ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है। दूसरा पशु आपका इसके चपेट में आए इसके लिए भैया आपको दूसरे पशु से दूर कर देना चाहिए। और भैया जब बात यह आती है कि ये बीमारी आपके पशु में हो ही ना, तो उसका सबसे बढ़िया और कारगर तरीका ये है कि आप अपने पशु का टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के लिए भैया आपको सलाह हम ये देंगे कि वर्ष में दो बार टीकाकरण कराना चाहिए। एक तो भैया देखिए, जब हमारा दशहरा का समय आता है यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना आता है उस समय करा दें, और एक भैया आप जो है मई और जून के समय में करा दें। तो इन दोनों में अगर टीकाकरण आप करा देते हैं तो आपके पशु जो है इस बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन टीकाकरण कराते समय भैया एक बात का विशेष ख्याल रखें, आप अकेले टीकाकरण कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए ये कि आपके आसपास के जो भी किसान भाई हैं वो एक साथ अपने पशु चिकित्सक को बुलाकर टीकाकरण कराएं। तो जब सारे कराते हैं तो एक साथ जो है पशुओं में टीकाकरण होता है तो ये रोग पूर्ण रूप से भाग जाता है। तो भैया हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई अपने पशुओं के बचाव के लिए, अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए टीकाकरण समय से ज़रूर कराएंगे और भैया गलघोंटू जैसी बीमारी को दूर करेंगे। तो किसान भाइयों, आज तुम खेती की बातें यहीं संपन्न करते हैं, कल आपको अन्य विषयों के विषय में जानकारी अवश्य देंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर आज रात्रि 9:30 पर और आज रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम सुनिएगा सवेरे 7:31 पर। 9:20 पर धरती गाती है कार्यक्रम में प्रीति शर्मा और सारिका कक्कड़ के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। गोल्डन हिट्स आप सुनेंगे आज सवेरे 8:45 पर। सवेरे 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम सुनिएगा आज दोपहर 12:05 पर। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी संडे। बाल श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटिका हम आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 1:15 पर। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:45 पर सुरेंद्र राजेश्वरी के गायक कुमाऊनी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम एक और अनेक सुनिएगा आज दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आज शाम 5:15 पर। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में श्री राहुल यादव से जितेंद्र कुमार की बातचीत का विषय होगा वर्षा जल संचयन और गन्ने में सूखी पत्ती कटाई। विविधा क्रम में आज शाम 6:45 पर श्री अतीक अहमद अंसारी की कहानी जुम्मन की हार और मां की पेंशन सुनवाई जाएंगी। छायागीत आप सुनेंगे आज शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर शाहरुख की गायी चंद गजलें सुनवाई जाएंगी। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज शाम 7:45 पर कला में शायर प्रस्तुत करेंगे श्री सुनील साहिल। एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनिएगा आज रात्रि 8:30 पर और आज रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संध्या। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सवेरे के 7:18 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत नशा मुक्त समाज के निर्माण में जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में खेलों का आयोजन, वाकाथन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र संचालन को लेकर आज दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
0: तेल विपणन कंपनियों ने कल 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे और 1 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आयोग के दायरे में आने वाली समूह ग की सभी भर्तियों के लिए पीईटी अनिवार्य होगी। पीईटी का स्कोर 3 वर्ष यानी वर्ष 2028 तक मान्य रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन माह में राज्य के सभी शिव मंदिरों में दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सावन के पहले सोमवार पर कल प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में उमड़ने वाली कांवड़ यात्रियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज से लेकर कल तक कई मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में कल से 12 अगस्त तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी 10 अगस्त तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। कांवड़ यात्रा से संबंधित जिलों में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में कल मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल अयोध्या में श्रीराम लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच SIT कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
4: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई वो जेल में, बाकी जो SIT की रिपोर्ट आएगी, SIT की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं उसके हम सब लोग चिंतित हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी जो उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कल वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पदक तालिका में देश को 4th स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत के 8 खिलाड़ियों ने कल स्वर्ण पदक जीते। मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जैस्मिन लैम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, प्रिया खड़घस, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और पैरा एथलीट सोमन राणा ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश के कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 13 पर पहुंचा दी। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। इसी के साथ प्रादेशिक सवार समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सूरज के साथ साथ कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें और होगा थोड़ा सा मनोरंजन। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तिरंगा के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया के बारे में चर्चा करके। 15 अगस्त सन 2026 को देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आज 2 अगस्त को उस महान इंसान की जयंती है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को डिजाइन किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की। वर्ष 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्मे पिंगली वेंकैया ने कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर देश की आजादी में अहम योगदान दिया। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लेकर 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया। इसके बाद साल 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण किया। इसे बनाने का उद्देश्य देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का था, ताकि स्वतंत्रता के लिए पूरे देश को एकजुट किया जा सके। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए एक झंडे को स्वीकृति दी थी। इस झंडे में लाल और हरे रंग की पट्टी थी और इसके बीचों बीच गांधी जी का चरखा स्थापित था। महात्मा गांधी के सुझाव पर ध्वज में सफेद रंग भी शामिल करवाया गया। साल 1931 तक कांग्रेस की हर बैठक में इसी झंडे का प्रयोग होता रहा। इसके बाद इस झंडे के वर्तमान रंग यानी कि केसरिया, सफेद और हरा, ये सब सामने आए थे। इसमें आगे चलकर अशोक चक्र को भी जोड़ा गया। पिंगली वेंकैया जापानी भाषा के काफी जानकार शख्स थे। वो इस परिपक्वता से जापानी बोलते थे कि उन्हें लोग जापान वेंकैया के नाम से भी पुकारते थे। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पिंगली एक जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश नेशनल कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया था। वहीं अपनी युवा अवस्था में पिंगली ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया था। यहीं पर पिंगली महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित हुए। तो ये तो बात हुई पिंगली वेंकैया की, और अब जानकारी करते हैं दादरा और नगर हवेली मुक्ति दिवस की। 2 अगस्त भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। 1954 में इसी दिन दादरा और नगर हवेली, जो बाद में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना, इसको पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी और राष्ट्रीय चेतना के तहत इसमें लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि हम इतिहास का यह स्वर्णिम अध्याय भूल चुके हैं। पहले दादरा नगर हवेली पर पुर्तगालियों के कब्जे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुर्तगालियों का विवादास्पद दावा था कि उन्होंने मराठों से एक संधि के तहत दादरा और नगर हवेली पर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने नगर हवेली को 1783 में और दादरा को 1785 में शासन करना आरंभ कर दिया था। उस समय दादरा का इलाका लगभग 3.5 वर्ग मील तथा नगर हवेली का क्षेत्रफल 185 वर्ग मील था। कुल 72 गांव थे और आबादी थी लगभग 42,000। पुर्तगालियों का औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद काफी समय तक पुर्तगालियों और धर्मपुर के राजा की सेना में इन दोनों इलाकों पर आधिपत्य को लेकर हिंसक झड़पें होती रहीं। पुर्तगाल का उपनिवेश बनने से पहले दादरा और नगर हवेली धर्मपुर के राज्य का हिस्सा थे। ये तथ्य पाठकों को अनेक किताबों में मिल सकता है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन तो चल ही रहा था। इधर गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में भी पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन की सुगबुगाहट तेज होने लगी थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो पुर्तगाली शासन वाले इलाकों को स्वतंत्रता नहीं मिली। इधर 1950 का दशक आरंभ होते ही पुर्तगाली शासन के खिलाफ बाकी भारत में हलचल तेज होने लगी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन जैसे नेताओं ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज उठाई और अंततोगत्वा एक दिन यानी कि 2 अगस्त के दिन भारत की जनता ने पुर्तगाल को यानी कि दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया। और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। और अब हम आपसे जिक्र करेंगे आज के प्रमुख सुर्खियों का। होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 192 रुपये, जबकि 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 46.50 रुपये की कटौती की गई है। विभिन्न विभागों की समूह गए की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का विज्ञापन शनिवार को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से 1 सितंबर तक होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के वैज्ञानिक तरीके सरकार को खोजने चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार आईआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों की मदद से वैज्ञानिक शोध करवाकर समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सर बेटियों के मुक्कों ने ऐसा दम दिखाया कि शनिवार भारत का स्वर्णिम दिन बन गया। प्रीति, जैस्मिन, साक्षी, अरुंधति, प्रिया और सचिन का मुक्केबाजी में तो सोनम का शॉटपुट में दम बहुत भरपूर दिखा। एक दिन में कुल 7 स्वर्ण पदकों की मदद से भारत पदक तालिका में सीधे 10वें से 4थे स्थान पर आ गया है। और अब बात करते हैं विश्व स्तनपान दिवस से जुड़े स्तनपान सप्ताह की। स्तनपान शिशु को स्वस्थ जीवन की शुरुआत देने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ये संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, स्वस्थ विकास में सहायक होता है और माँ और बच्चे के बीच एक अनूठा बंधन बनाता है। इसके सर्वविदित लाभों के बावजूद कई माताओं को सीमित जागरूकता या स्तनपान से जुड़ी आम गलतफहमियों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाने वाला विश्व स्तनपान सप्ताह स्तनपान को बढ़ावा देने, उसकी रक्षा करने और उसका समर्थन करने के लिए एक समर्पित एक वैश्विक अभियान है। ये परिवारों, स्वास्थ्य पेशेवरों, नियोक्ताओं और समुदायों को याद दिलाता है कि एक सहायक वातावरण बनाने से माताओं को आत्मविश्वास के साथ स्तनपान कराने और शिशुओं को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत देने में मदद मिल सकती है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का विषय है जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान, जो कारगर है उसे मजबूत करें। 2026 की थीम मौजूदा स्तनपान सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्तनपान को स्वस्थ बच्चों, स्वस्थ माताओं और स्वस्थ समुदायों में निवेश के रूप में मान्यता देती है। स्तनपान बेहतर पोषण में योगदान देता है, शिशु मृत्यु दर में सुधार करता है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है और शैशवावस्था के दौरान शिशुओं को कई बीमारियों से बचाकर स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करता है। ये थीम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और परिवार को ऐसे वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जहां माताओं को सफलतापूर्वक स्तनपान कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले। विश्व स्तनपान सप्ताह का इतिहास 1992 से शुरू होता है, जब विश्व स्तनपान अभियान संगठन ने 1990 के इनोसेंटी घोषणा पत्र के बाद वैश्विक अभियान की शुरुआत की थी। इस घोषणा पत्र में विश्व भर में स्तनपान की सुरक्षा, संवर्धन और समर्थन के लिए मजबूत कदम उठाने का आह्वान किया गया था। तब से विश्व स्तनपान सप्ताह सबसे बड़े जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में से एक बन गया, जो दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, अस्पतालों और सामुदायिक समूहों को एक साथ लाता है। हर साल ये अभियान एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है, जो बेहतर स्तनपान प्रथाओं, बेहतर मातृ सहायता और मजबूत जन स्वास्थ्य नीतियों को प्रोत्साहित करता है। आज विश्व स्तनपान सप्ताह जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाजों को ये याद दिलाता है कि स्तनपान का समर्थन करना हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: आकाशवाणी नजीबाबाद@gmail.com।
0: तो देर किस बात की?

0: उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: श्रोताओं, अब हम आपसे जिक्र करते हैं आज की तारीख में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं की। सन 1776 में आज की ही तारीख में अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर अधिकांश सदस्यों ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। 1858 में आज की ही तारीख में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, जिससे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1934 में आज की ही तारीख में एडॉल्फ हिटलर आधिकारिक रूप से जर्मनी के सर्वोच्च तानाशाह बने। 1987 में आज की ही तारीख में विश्वनाथन आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती और ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले एशियाई बने। 1990 में इराक ने कुवैत पर सैन्य हमला कर कब्जा किया, जिससे खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई थी आज की ही तारीख में। सन 2008 में आज की ही तारीख में सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ने हांगकांग में अपनी पहली शाखा खोली। सन 2012 में आज की ही तारीख में लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। भारत इस प्रतियोगिता में 55वें नंबर पर रहा। पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जिसने 104 पदक जीते थे। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैत्री यानी मित्रता दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी आधिकारिक वैश्विक तिथि 30 जुलाई है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो लोग इसे 2 अगस्त को मनाते हैं। भारत में छात्र और युवा आमतौर पर अगस्त के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस सन 2026 30 जुलाई को तो है, लेकिन भारत में लोकप्रिय मित्रता दिवस 2 अगस्त 2026 को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मित्रता का जश्न मनाने का विचार सर्वप्रथम 1958 में पराग्वे के डॉक्टर रामोन और टेमियो ब्राचो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनका और उनके मित्रों का मानना था कि मित्रता लोगों को शांति और समझ की संस्कृति विकसित करने में मदद करती है। यही विचार बाद में विश्व मैत्री अभियान के रूप में विकसित हुआ, जो एक ऐसा संगठन था जिसने लोगों और समुदायों को करीब लाने के साधन के रूप में मित्रता को बढ़ावा दिया। समय के साथ ये उत्सव दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। सन 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए लोगों, संस्कृतियों, देशों और समुदायों के बीच मित्रता को प्रोत्साहित करना था। हम अपने जीवन में मित्रों के महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। एक अच्छा मित्र हमारा साथ देता है, हमें समझता है, हमें प्रेरित करता है और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मित्रता भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता, धर्म और पृष्ठभूमि जैसे मतभेदों से परे लोगों को एक साथ ला सकती है। ये हमें दया, सम्मान, सहानुभूति और सहयोग सिखाती है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर महत्वपूर्ण है कि मित्रता भावनात्मक और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मित्र हमें आत्मविश्वास, समर्थन और जुड़ाव महसूस करने में मदद करते हैं। विद्यार्थियों के लिए मित्रता उन्हें टीमवर्क, ईमानदारी और सहयोग करना, सहानुभूति और सम्मान जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को सिखाती है। ये बच्चों को संवाद करना, समस्याओं को हल करना और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना भी सिखाती है। वैश्विक स्तर पर समुदायों और देशों के बीच मित्रता शांति, सांस्कृतिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। यही कारण है कि लोगों ने मित्रता दिवस को इतना महत्वपूर्ण माना है, है ना? अगर हम इस मित्रता दिवस को मनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा संदेश या स्नेहपूर्ण भाव भी मित्र को विशेष महसूस करा सकते हैं। अपने दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हम शुभकामनाएं भेज सकते हैं या एक फ्रेंडशिप बैंड भेज सकते हैं, हाथ से बना कार्ड या छोटा सा उपहार दे सकते हैं, किसी पुराने दोस्त को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ हम थोड़ा सा समय बिता सकते हैं। तो इस ये सब करके हम इस मित्रता दिवस को मना सकते हैं। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय

0: गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरो जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 13-9. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
6: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak's, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल आवाजों में हमजोली फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: चंदन का एहसास।
1: बोल बोल के थक गया,
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में दाता फिल्म से। गीतकार अनजान और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मन्ना डे आशा भोसले और साथियों को अभी आपने बूट पॉलिश फिल्म में सुना। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में गहरा जख्म फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं विट्ठल भाई पटेल ने और इसे संगीत से सजाया है R.D. बर्मन ने।

गहरा जख्म फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही गोल्डन हिट्स अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:15 होने को है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव संसद के सामने रखा गया। इस पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसने लगभग 10 राज्यों में विभिन्न पक्षों से मिलकर के उनकी राय जानने की कोशिश की, कितना ये देश के लिए सही है, कितनी इसमें चुनौतियां हैं, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया और जल्द ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में रखेगी। इस कमेटी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा किया और लखनऊ में 3 दिनों तक लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और तमाम पक्षों के साथ बातचीत की। किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे संभव हो सकेगी और क्या वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इस महत्वाकांक्षी योजना के पक्ष में है, इस पर बातचीत करने के लिए जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किस प्रकार आप इसको देखते हैं कि क्या देश को वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव जैसी किसी चीज की जरूरत भी है?
3: वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन जब संविधान लागू हुआ तो पहला इलेक्शन जो हुआ था 1952 में, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही था क्योंकि राज्यों में भी चुनाव हुए और संघ के लिए भी चुनाव हुआ। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कुछ विधानसभाओं ने बहुमत खोया मुख्यमंत्रियों ने, और देश में भी संसद का भी समय पीछे आगे हुआ और विधानसभाओं का भी समय पीछे आगे हो गया। ये बात समझने की है कि उस समय देश की आबादी लगभग 37 से 38 करोड़ थी और आज देश की आबादी लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो अत्यधिक व्यस्त हो गई है, बहुत सारे नए मंत्रालयों का गठन हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन का लक्ष्य ये है कि कार्यपालिका को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त समय मिले। अभी क्या होता है कि कार्यपालिका पर जो लोग हमारे देश में आसीन होते हैं, तो जो हमारी एक तरह से कह लीजिए कि संविधान की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद हो जाता है और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्रियों का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष पर्यंत या 5 वर्ष के शासन काल में अन्य राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, तो इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्यों में लगातार कहीं न कहीं चुनाव और चुनाव प्रचार के लिए कार्यपालिका को अपने व्यस्ततम क्षणों से समय निकाल करके प्रचार के लिए जाना पड़ता है और मुख्यमंत्रियों को भी अपने अपने दलों के लिए अन्य सभी राज्यों में आवागमन करना पड़ता है। इससे देश की जो विकास की योजनाएं हैं, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जो चर्चा का समय है और देश की योजनाओं को जितना गंभीर समय दिया जाना चाहिए वह संभव नहीं होता। तो कार्यकरण की दृष्टि से ये देखा जाता है कि जो कार्यपालिका है उसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए नई योजनाओं पर विचार करने के लिए, राष्ट्रोपयोगी योजनाओं को लाने के लिए और जो योजनाएं नहीं ठीक हैं उनको छोड़ने के लिए। इसके लिए गंभीर विचार विमर्श के लिए समय की आवश्यकता होती। तो अब जब लोकतंत्र का आकार इतना बड़ा हो चुका है तो उस स्थिति में देश के सामने कार्यपालिका का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का निर्वहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वैसे भी हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है तो उस लिहाज से भी हमारा दुनिया के अन्य देशों से भी एक आर्थिक प्रतियोगिता जैसी स्थिति बनी रहती है। तो देश को संभालने के लिए कार्यपालिका को पर्याप्त समय मिले और एक विशेष समय खंड में ही संघ और राज्यों का चुनाव हो जाए तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का खर्च भी बचता है और कार्यपालिकाओं को कार्य करने का समय भी मिलता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है और इसको होना चाहिए।
2: जी, बिल्कुल, आपका ये मानना है कि एक साथ ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने इस संसदीय समिति ने इस बार पहली बार जो है वो मीडिया से भी एक पक्ष मानते हुए सुझाव लिए, तो जो इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं सांसद पीपी चौधरी, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि भी मीडिया जो है वो चूंकि एक बड़ा रोल प्ले करती है तो हम उससे भी विचार लेते हैं। एक जो प्रमुख विचार उसमें सामने आया, बल्कि यूं कहें कि सबने इस बात को लेकर के रजामंदी दिखाई कि आचार संहिता लगने की वजह से विकास की गति बाधित होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये था कि आखिर इसे किस तरीके से देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी राज्य में जल्दी सरकार गिर जाती है तो फिर एक जर्मन मॉडल की जिसमें चर्चा होती है कि जिसमें मौजूदा जो नेता होते हैं उनको हटाने से पहले नया नेता चुना जाता है सरकार गिरने के बाद, और जापानी मॉडल भी होता है, इस तरीके से कुछ मॉडलों की भी चर्चा हुई। ये एक बड़ी चुनौती निकल करके सामने आई, ये पूरी तरीके से सुझाव लेकर के भविष्य में कब लागू किया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पर जनता की राय जानी जा रही। तो अगर सरकारें बीच में गिरती हैं तो आपकी नजर में ये किस तरीके से इस मॉडल में काम आ पाएगा और कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक किया जा सकेगा?
3: देखिए, भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी का एक दृष्टिकोण आया था, वो समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये संस्तुति दिया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा में किसी विधायक का पद रिक्त हो जाता है तो जो उपचुनाव होता है वो बची हुई विधानसभा के लिए ही होता है, तो जो विधायक चुना जाएगा वो केवल शेष विधानसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। अगर यही सिद्धांत पूरी विधानसभा पर लागू किया जाए, जैसे अभी बहुत कम ऐसी विधानसभाएं हैं जो मध्यावधि चुनाव के लिए जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में आपस में समझौता हो जाता है, बहुमत निर्मित हो जाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाता है, तो विधानसभाएं चलती रहती हैं, तो उनको नेशनल डेट पर पहुंचना होगा। तो उस स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि दो ही एक विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं जो कभी को मध्यावधि के लिए जावें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये हो गई कि मान लीजिए कि संसद है और संसद में कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो शेष बचे हुए अवधि के लिए ही चुनाव किया जा सकता है, उसके बाद जो नेशनल डेट होगी उस पर चुनावों में सबको जाना होगा। तो ऐसा करने से मेरा मानना है कि 90% से अधिक एक राष्ट्र एक चुनाव की जो कल्पना है वो साकार हो जाएगी और यह व्यवहार में लाने योग्य संस्तुति है
2: जी।
3: अगर हम इस पर भी काम कर लें तो मची हुई अवधि के लिए ही जो नेशनल डेट्स होगा, टाइम टेबल फिक्स होगा, उस टाइम फ्रेम पर पहुंचने के लिए सबको जाना है, और बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो शेष समय अवधि के लिए ही चुनाव किया जाएगा।
2: बिल्कुल। और ये जो 129वां संशोधन है संविधान का, इसको लेकर के जो समिति के सामने विचार आए उनमें एक प्रमुख चुनौती या आपत्ति जिसे कहा जाए वो छोटे दलों को लेकर के है और पूरे देश भर में एक समान राजनीतिक मुद्दों और भावनाओं को लेकर के है, कि जिसमें ये माना जा रहा है कि अगर बंगाल का कोई विषय है जो राज्य का विषय है वहां का प्रमुख मुद्दा है, और उत्तराखंड का कोई अलग मुद्दा है, गुजरात का अलग मुद्दा है, ये सभी प्रकार के मुद्दे एक किसी राष्ट्रीय मुद्दे के सामने फीके न पड़ जाएं, और दूसरी बात कि जो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास धन बल है वो किसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को हाईजैक न कर लें, इस खतरे को कितना जायज मानते हैं आप?
3: देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि जब हम विधानसभा का चुनाव करते हैं तो उसमें विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, और हमारी वही जनता लोकसभा के लिए भी चुनाव करती है, आजकल अलग अलग समय में करती है और वन नेशन वन इलेक्शन में एक समय में करेगी। तो मान लीजिए कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर विधानसभाओं के चुनाव हो, और चाहे वो राष्ट्रीय संसद के लिए चुनाव हो, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं, और उन मुद्दों में जो हमारी जनता होती है वो निरशिर विवेक पूर्वक तीनों स्तरों पर आज भी मतदान करती है और कल भी मतदान करेगी। तो उस स्थिति में जो ये तर्क है कि छोटे दलों के अस्तित्व का प्रश्न है, तो विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उसी समय विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, तो आज भी हम देखते हैं कि प्रायः विधानसभा के जो मुद्दे हैं लोग विधानसभा के लक्ष्य को रख करके चुनाव करते हैं, संघ की बात होती है तो संसद को लक्ष्य करके चुनाव करते हैं, और अगर जो है पंचायती राज व्यवस्था है तो नगर निकाय हुए और ग्रामीण क्षेत्र हुए इनके लिए चुनाव होता है, तो लोकल क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को ज्यादा प्रातिनिधिक बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए कि जो जनता है आज भी तीनों स्तरों पर अलग अलग वही जनता चुनाव करती है, केवल समय खंड एक हो जाएगा। तो समय खंड एक हो जाने से क्या होगा कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा, नीतियां बनेंगी, नीति निर्माताओं को समय मिलेगा, नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होगी, जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं चुनाव के घोषणा पत्रों में उन प्रॉमिसेस पर भी डिस्कशन होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या प्रॉमिस किया और क्या डिलीवर किया। और विशेष रूप से अब जबकि योजना आयोग की व्यवस्था खत्म होकर के नीति आयोग आ गई है, तो किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संसद को भी समय मिलेगा कि इस पर विचार करे, और विधानसभाओं को भी समय मिलेगा कि उन्होंने 5 वर्ष के कार्यक्रम में क्या किया। तो ऐसी स्थिति में ये एक व्यापक सुधार होगा, और यह सुधार जो है देश के लोकतंत्र के हित में होगा, क्योंकि जब चुनावों की कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो है जनता को ही बियर करना पड़ता है, प्रकार अंतर में
2: जी।
3: और जनता को भी ये अवसर मिलेगा कि जो चुनाव का समय है उस समय में कर लें, और तो चरणबद्ध तरीके से होगा, उसकी योजना होगी, और पूरा देश जो है नए परिवर्तन के लिए, नए जनादेश के लिए हर बार 5 वर्ष पे तैयार होगा।
2: बिल्कुल, और इस तरीके से जो विकसित भारत को लेकर के एक परिकल्पना रहती है उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इस पूरी प्रक्रिया के आसान होने से और लाखों करोड़ों के खर्च की बचत होने से। ब्रजेश जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
0: आकाशवाणी के
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:25 हुए हैं। धरती गाती है कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रीति शर्मा और सरिता कक्कड़ के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: धरती गाती है कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सारिका कक्कड़ और प्रीति शर्मा के गाए रोहिलखंडी लोकगीत।

0: धरती गाती है कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रीति शर्मा और सारिका कक्कड़ के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि सचिन शर्मा का और मेरे साथ हैं
1: फरीना का भी नमस्कार कबूल कीजिएगा।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो फरीना जी बिल्कुल देर ना करते हुए ले लेते हैं अपने श्रोताओं की फरमाइश और देखते हैं हमारे श्रोताओं ने कौन सा गीत सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है।
1: सचिन जी, उससे पहले अगर कोई नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहता है तो हाँ, उसको नंबर बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, नंबर है वही हमारा जो आप सब जानते हैं, नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं 9457078288। और सचिन जी, अगर हमारे श्रोता पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पता बता दीजिएगा।
0: हाँ, हमारा पता है आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश, पिन है 246763। तो आप इन नंबर पर और इस पते पर अपने फरमाइशी पत्र और मैसेज 9457078288 इन दोनों जगहों पर अपने पत्र अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं और सीधे जुड़ सकते हैं हमसे हमारे इस कार्यक्रम में और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। तो पहला पत्र लेंगे कार्यक्रम का।
1: जी, ये पहला पत्र हमें भेजा है ग्राम नंगला उभ भन नजीबाबाद से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। और ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं आप हैं हितेंद्र दास, असम से इन्होंने ये फरमाइशी मैसेज हमें भेजा है। अगला मैसेज जो हम ले रहे हैं वो हमें भेज रहे हैं पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह। और ये मैसेज हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
0: कार्यक्रम का अगला पत्र हमें लिख करके भेजा है गांव जाखूद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने। छत्तीसगढ़ महासमुंद से गीत सुनना चाहते हैं कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, याकूब आसमा डोम और यूसुफ आसमा डोम। चांदनी चौक बिहार से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव और इनके सभी साथियों ने। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में कबीर सिंह फिल्म से।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से गीत सुनना चाहा है विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव और इनके सभी साथियों ने। छत्रपति संभाजी नगर से गीत सुनना चाहते हैं मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। नेहरू चौक पैठण से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। और जालना शहर से गीत सुनना चाहते हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव।
6: ये अगला गीत सुनने के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नई बस्ती गंजुनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। अगला मैसेज भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांची से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गणेशपुर गंजुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। आप हैं मोहम्मद फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान।
5: खमारिया छत्तीसगढ़ से गीत सुनना चाहते हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। भोपालगढ़ राजस्थान से गीत सुनने की फरमाइश हमें मिली है धर्मेंद्र छीपा, कंवल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की ओर से। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से गीत सुनना चाहते हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सद्दाम से। नूरमहल महसौल सीतामणि बिहार से गीत सुनना चाहते हैं मुसर्रत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज की ओर से। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से गीत सुनना चाहते हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू।
6: ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, PS निहावकर, जिंघाव विदर्भ से हैं, उनके साथ ही बसंतराव भोजने, सोनू भोजने। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से MA वहीद रुमानी, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद फाजिल। इसी गीत सुनने की हसरत लिख भेजी है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से। आप हैं स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज, पोत्र गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह।
5: तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की युगल आवाजों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म आशिकी से, जिसको आवाज दी है कुमार सानू ने। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं
1: मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन ने, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से गीत सुनना चाहते हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।
0: ये मैसेज हमें भेजा है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और उनके परिवार के सदस्यों ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पीएस निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर, उनके साथ हैं मलकापुर नारायण, मलकापुर से नारायण इंग्ले, सोपान ताइडे, आशीष मुहेरेकर।
1: मुंदीचक भागलपुर बिहार से गीत सुनना चाहते हैं दिलीप सोनी और इनके सभी साथी। कृष्णा पार्क दिल्ली से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना ने। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से गीत सुनना चाहते हैं अशोक दले, सविता दले, निकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले ने।
0: झज्जर हरियाणा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत हमें मैसेज कर रहे हैं भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से। ये मैसेज भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल, उनके साथ में है धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल।
1: तो आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम का अगला गीत सुनाने से पहले हम अभी अपने सभी श्रोताओं को बता देते हैं कि यदि आप भी इस कार्यक्रम में मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना और अपने श्रोताओं अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का ये गीत सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में आशिकी फिल्म से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में, जहां सुनते हैं आप अपनी पसंद के गीत। तो अगला गीत जो पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं, श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से आप हैं, डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सोनू कुंभार, अर्चना कुंभार, कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, साइशा सोनवने, और ये हैं लक्सर रोड गाँव स्वाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से, मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शुएब कहकशा और उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाह है बिहार स्टेट से मोहम्मद याकूब आसमा, मोहम्मद यूसुफ आसमा, मोहम्मद सलीम आसमा, मोहम्मद कलीम आसमा, और इसी गीत को सुनना चाह है शाहजी नगर दैगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने।
3: गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से गीत सुनना चाहते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। इनके साथ में है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, सरफुद्दीन कुटरिया और सुरित रमेश कुटरिया ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बडोना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजते हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से गीत सुनना चाहते हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली। जेल रोड जलंधर से गीत सुनना चाहा है अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर ने। सल्लर पहलगाम कश्मीर से गीत सुनना चाहते हैं पीरजादा मेराजुद्दीन और इनके सभी साथी।
2: और इसी गीत को सुनना चाहा है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, सदानंद कुमार गौरव ने। यही गीत सुनना चाहते हैं सरगुजा मेनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा थापा, जुटमिल रायगढ़ से उन्हीं के साथ हैं डब्लू बेलदार, आदिबा बेलदार, शरफुद्दीन बेलदार और आसमा बेलदार। इसी गीत को सुनना चाहा है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से आप हैं डॉक्टर तस्लीम कौसर, इशिता शाहनी, प्रियंका मोदी, शनाया इब्राहिमी, बरकाकना झारखंड से उनके साथ हैं नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिमी। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
3: तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम की आवाज में चोर मचाए शोर फिल्म से।

0: श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है मैं हूं ना, और इसके लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं
1: दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और इनके सभी साथी। कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से गीत सुनना चाहते हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामण शिंडे और किशोर धनाड़े ने। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से गीत सुनना चाहते हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल ने। किशोरनगर अमरावती से गीत सुनना चाहते हैं हीरामण शिंडे और सिद्धार्थ गोंडाने। मेन रोड तुल्हारा से गीत सुनना चाहते हैं प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। मगनपुर झारखंड से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और इनके घर के सभी सदस्यों ने।
0: इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मजनू का टीला से माही मलिक, आकांक्षा मलिक, उमंग मलिक, सतना सागर बालूजा, मधु बालूजा, कमल बालूजा ने। यही गीत सुनना चाहा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वा खरगेन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पुराना बस स्टैंड बढ़ापुर बिजनौर से मोहम्मद ताहिर, इद्रीस, हिलाल जैन, प्लांट देहरादून से उनके साथ हैं, और यही गीत सुनना चाहा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। गांव फ्रासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये मैसेज भेजा है फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया, नसीर, साजिद, शाहिद, गोविंदपुरा, अहमदनगर से आप हैं जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन और उनके परिवार के सदस्य। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से आप हैं सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी, हर्षिदा और उनके परिवार के सदस्य।
1: तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में मैं हूं ना फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राजधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन में गजभिये और इनके सभी परिवार वालों ने छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से गीत सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पंधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पंधा और जी एस रामगढ़िया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से गीत सुनना चाहते हैं अभिजीत गवहानकर, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, अर्जुन गवहानकर, वैशाली शैलेश गवहानकर, सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर और इनके सभी परिवार वाले।
1: इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश की है नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, उनके साथ हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, जलालाबाद वैश से हमें मैसेज कर रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर मैसेज हमें कर रहे हैं, उनके साथ हैं परदेसीपुरा खंडवा से शेख सईद राही और अनस।
0: आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू की आवाज में दिलजले फिल्म से।

0: कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने के लिए हमारे श्रोता मैसेज कर रहे हैं। आप हैं वर्डिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ये मैसेज हमें भेजा है। गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, शगुफ्ता अंजुम, एसएम जावेद ने। काशगंज से आप हैं मास्टर राधे श्याम, शाकिया और उनके परिवार के सदस्य। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवनाशी खेड़ा और उनके परिवार के सदस्य गीत सुनने की ख्वाहिश कर रहे हैं। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पार डिंगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें कर रहे हैं।
1: उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गीत सुनना चाहते हैं। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि ने गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार गीत सुनना चाहते हैं। ग्राम गद्दारोना से मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भारत गिरी, मधुगिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी ने हमें गीत सुनने के लिए फरमाइश भेजी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है कसूर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। और आज चित्रपट संगीत में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी फरीना। श्रोताओं, कहते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसे हम खुद चुनते हैं, वो है दोस्ती का रिश्ता। जरा याद कीजिए, क्या आज भी आपके पास कोई एक दोस्त या कोई सहेली है जिसके बात किए बिना आपका दिन अधूरा रहता हो? कोई ऐसा जो आपकी हंसी की वजह भी जानता हो और आपकी खामोशी को भी। श्रोताओं, आज फ्रेंडशिप डे है, इसलिए आज का चित्रपट संगीत उन सभी दोस्तों, यारों और सहेलियों के नाम जिन्होंने हमारी जिंदगी के सफर को आसान और खूबसूरत बनाया। तो आज की इस महफिल को की शुरुआत करते हैं उस गीत से जो दोस्ती की सबसे प्यारी मिसाल है।

दोस्ती। इस फिल्म से आप ये प्यारा सा दोस्ती का गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। तो एक और दोस्ती का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें श्रोताओं, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल राहों में भी आपका हाथ थामे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ बिताया हर पल जिंदगी की सबसे प्यारी याद बन जाता है, और उसे देखकर दिल यही कहता है

0: अनजान के लिखे गीत राजेश रोशन के संगीत में किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म याराना में।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से चित्रपट संगीत, और आज के चित्रपट संगीत को हमने महकाया है दोस्ती की खुशबू से, वो खुशबू जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। श्रोताओं दोस्ती का रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से निभाया जाता है। उम्मीद है दोस्ती के रंग बिरंगे ये गीत आपको पसंद आ रहे होंगे, तो सुनिएगा दोस्ती के रंग बिरंगा ये एक खूबसूरत गीत जो आपको आपके किसी खास दोस्त की याद जरूर दिला देगा।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे गीत को आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम था शोले। श्रोताओं, दोस्ती सिर्फ निभाने का नाम नहीं होती, बल्कि भरोसे, वफादारी और ईमानदारी का दूसरा नाम होती है। जब दोस्ती दिल से निभाई जाए तो वो किसी दौलत से कम नहीं होती। दोस्ती करने वाले के दिल में एक ऐसा जज्बा होता है कि वो अपनी दोस्ती को ईमान से ज़्यादा मानते हैं।

श्रोताओं, कहते हैं कि दुनिया में अजूबे तो बहुत हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो वो किसी अजूबे से कम नहीं होता। सच्चा दोस्त जिंदगी की वो दौलत होती है जिसके सामने ये सोना चांदी सब कुछ फीका है, और ऐसा दोस्त हमारी जिंदगी का खूबसूरत तोहफा होता है।

रजनीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन तैयार की थी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म स्वर्ग से सुंदर से आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, दोस्ती सिर्फ मेल में नहीं होती, मतलब जेंट्स में नहीं होती, दोस्ती फीमेल्स में भी होती है। और आप जानते ही होंगे कि हर लड़की की ज़िंदगी में एक प्यारी सी सहेली ज़रूर होती है जो कभी उसकी बहन बन जाती है, कभी हमराज और कभी सबसे बड़ी ताकत, जिसके साथ हम अपनी हंसी बांट लेते हैं और अपने दुखों को भी साथ कर लेते हैं। वो ऐसी हमारी साथी होती है और अगर ऐसी कोई साथी हमारे घर में हो तो वो तो सच में बहन से ज़्यादा हो जाती है और ऐसा घर स्वर्ग से सुंदर हो जाता है।

श्रोताओं, दोस्ती का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही प्यारा होता है, और जब दोस्त दिल से एक दूसरे को पुकारे तो सुर अपने आप सज जाते हैं। और दोस्त तो वही होता है जो खामोशी में भी आपकी खामोशी को पढ़ ले और ज़रूरत पड़ने पर बिन बुलाए आपकी मदद के लिए साथ आ जाए। दोस्ती के इसी अटूट रिश्ते को सलाम करता है फिल्म सुहाग का ये गीत।

आप सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र आशा भोसले की आवाज़ में, जिसे हमने लिया था फिल्म सुहाग से। गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, वाकई में दोस्ती जो होती है जिंदगी से भी प्यारी होती है। दोस्ती में कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब कुछ बराबर होता है। दोस्ती का रिश्ता तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब उसमें हंसी, शरारत और बेफिक्र मस्ती भी शामिल हो, और जब आपकी सहेलियां साथ हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी प्यारी यादें बन जाती हैं। सहेलियों की हंसी ठिठोली, मीठी नोकझोंक और दिल की बातें, इन्हीं रंगों से सजी होती है दोस्ती। तो पेश है फिल्म यादों का एक ऐसा ही, यादें फिल्म का एक ऐसा ही चुलबुला सा गीत, जहाँ दोस्ती में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बता दिया जाता है।

सहेलियों की मुस्कुराहट और अटखेलियों से भरा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म यादें से। आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति, हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक और उदित नारायण की, संगीत रचना अनु मलिक की और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, आज फ्रेंडशिप डे पर उन सभी दोस्तों को सलाम जिनकी वजह से जिंदगी में हौसला, मुस्कान और अपनापन बना रहता है। दोस्ती इतना प्यारा रिश्ता है कि उसके आगे हर रिश्ता कमजोर ही लगता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं और उनमें सबसे प्यारा रिश्ता होता है दोस्ती का। सच्चा दोस्त वही होता है जिसकी मौजूदगी आपको एक खूबसूरत सा एहसास कराए। तो आइए इन्हीं एहसासों से सजा एक और गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दोस्ती। शब्द रचना समीर की है और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी किशोर कुमार को आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और श्रोताओं, जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसमें विश्वास और भरोसा रहे। तो भरोसे के साथ अपनी दोस्ती को निभाइए ताकि आपकी दोस्ती हमेशा महकती रहे और सलामत रहे।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12 बज रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम एक बार फिर बता दें, आप सुनेंगे रात 10 बजे और रात 9:30 पर समय रहेगा नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर का। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। संध्या 7:50 पर अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज के कलामे शायर होंगे सुनील साहिल। सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार शाहरुख की आवाज में कुछ गजलों का लुत्फ उठाइएगा संध्या 7:32 पर।

कहानियां आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में। कहानीकार होंगे अतीक अहमद अंसारी। युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में आज की सौगातें रहेंगी। कुछ खास है आज शब्दों के शिल्पकार बात जुबान की और बूस्टर। कार्यक्रम का समय वही संध्या 5:15 पर। किसान भाई अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे रोजाना की तरह ही संध्या 6:05 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत मेरठ के सहायक विपणन अधिकारी राहुल यादव से जितेंद्र कुमार की किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन विषय पर भेंटवार्ता के साथ सुनिएगा चर्चा। चर्चा के विषय रहेंगे वर्षा जल संचयन और गन्ने में सूखी पत्ती कटाई।

मेरा सपना उन्नत भारत में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी लीजिएगा आज शाम 5 बजे। आज दोपहर 2:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक केंद्रित रहेगा अभिनेता सुनील ग्रोवर पर। लोकधारा कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर सुनिएगा सुरेंद्र राजेश्वरी के स्वर में कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

साप्ताहिक मनोरंजक कार्यक्रम फिल्मी संडे आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। हमारी आज की फिल्म होगी साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर। और अब से कुछ ही देर में यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। दोपहर के 12:05 होने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 12:05 हो रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपका पत्र मिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ फरीना और मेरे साथ है आपके पत्रों का जवाब देने के लिए हमारे साथी
1: सचिन शर्मा। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सचिन जी, बिना देर लगाए कार्यक्रम में पहला पत्र शामिल कर लिया जाए।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो ये पहला पत्र हमें भेजा है ग्राम गदारोना से, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से भेज रहे हैं मदन गिरी जी। और इन्होंने लिखा है कि आज के कार्यक्रम अच्छे प्रस्तुत हुए, चित्रपट संगीत में दोस्ती पर गीत सुनाए गए उससे समा बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, चाहे वो वंदना हो, रामचरितमानस हो, चिंतन हो, काव्य गोष्ठी हो, सूरज के साथ साथ हो, गोल्डन हिट्स हो, धरती गाती चित्रपट संगीत हो, सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, सभी अच्छे लगते हैं। किसी एक उद्घोषक का नाम नहीं लूंगा, सभी उद्घोषक बड़ी मेहनत लगन से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, सभी को बधाई, मेरे पास और शब्द नहीं है।
1: हाँ, तो मदन गिरी जी ने हमें पत्र लिखा और ये हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो सुबह से रात्रि तक हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं और चाहे उन्हें कोई सा भी कार्यक्रम हो वो प्रायोजित कार्यक्रम तक भी मतलब बड़े ही तल्लीनता के साथ सुनते हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे किसी श्रोताओं को हमारे द्वारा की गई प्रस्तुति बहुत पसंद आती है और हमें बहुत मतलब प्रसन्नता का विषय हो जाता है हमारे लिए। लेकिन साथ ही इन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कार्यक्रमों

0: आलोचना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। जी हाँ मदन गिरी जी, बिल्कुल सही बात लिखी है आपने कि हमें किसी की आलोचना करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम समालोचना कर सकते हैं। अगर आलोचना आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है तो उसके जगह पर हम कार्यक्रमों की समालोचना कर सकते हैं। और कार्यक्रमों में किस समय क्या बदलाव हुआ था, क्या कुछ ऐसा परिवर्तन था जो प्रसारण की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था या थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण था, तो यदि आप इस तरह की बातें हमको लिख करके भेज सकते हैं तो उसके लिए हमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा कि आगे हम जो हमारी थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है किसी भी कार्यक्रम में, वो त्रुटि ना हो और उस त्रुटि से रहित हम कोई कार्यक्रम आपको प्रस्तुत करें आप सभी श्रोताओं के लिए,
1: और हम अपने कार्यक्रम को और ज्यादा खूबसूरत बना सकें जिससे आपको अच्छा लगे।
0: हाँ, तो मदन गिरी जी, कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं अपने सभी श्रोता साथियों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यदि आप भी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप इस नंबर पर हमें तुरंत अपना पत्र व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लिख करके भेज दीजिए। यदि आप हमें अपना पत्र भेजेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होगा, बहुत अतुल्य होगा, क्योंकि आपके पत्र ही हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हम किस तरह से कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकें।
1: ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, हीना कौसर, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट बिजनौर से ये मैसेज इन्होंने किया है। ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम, आपको भी सलाम, कैसे हैं आप? हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आते हैं। हमें 1 अगस्त का गीत तुम्हारे जो ताहिर महमूद जी और अलका जी ने पेश किया पसंद आया, जिंदगी लाइव भी पसंद आया। इसके अलावा 31 जुलाई का गीत तुम्हारे जो राजवीर सिंह जी और अनुपम जी ने पेश किया पसंद आया। हेलो नजीबाबाद और रात के हमसफर जो लोकेंद्र जी ने पेश किया अच्छा लगा। 30 जुलाई का गीत तुम्हारे जो नमित जी और मनोज जी ने पेश किया अच्छा लगा। एक शिकायत है आपसे कि जब गीत तुम्हारे प्रोग्राम पेश किया जा रहा था या फिर आपका पत्र मिला पेश किया जा रहा जाता है तो दोनों प्रोग्राम दो आवाज़ों में होते हैं, एक ही आवाज़ सही आती है और दूसरे की बहुत कम, ऐसा क्यों होता है?
0: हाँ, ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि जब ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो ये कार्यक्रम दो आवाज़ों में होते हैं। तो मैं वकार भाई आपको सबसे पहले तो मतलब आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना पत्र लिखा, और साथ ही आपने पूछा कि जब आपका पत्र मिला या गीत तुम्हारे होते हैं तो दो आवाज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपका पत्र मिला कार्यक्रम होगा तो आपके पत्रों को पढ़ने के लिए आपकी तरफ से आपका एक मतलब क्या बोलते हैं जो प्रतिनिधि होगा वो आपका पत्र पढ़ेगा, जैसे इस कार्यक्रम में इस समय फरीना जी पढ़ रही हैं और दूसरे हम आपके साथी हैं जो हम आपके पत्रों का जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम में एक अलग सा रंग आता है, एक कलेवर आता है, और ये पहली बार नहीं है, ये तो बहुत समय से ऐसा होता चला आया है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम है तो इसमें दो जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो कोई मतलब शिकायत की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम जो बाइलिंगुअल होते हैं या दो लोगों के बोलने से कार्यक्रमों की सार्थकता और सिद्ध हो जाती है। यदि एक ही व्यक्ति पत्र लिखे, पत्र पढ़े और उस पत्र का जवाब स्वयं से दे तो शायद मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम का जो रंग है, आपका पत्र मिला कार्यक्रम का जो एक रंग है, एक कलेवर है जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आता है, शायद उससे हमारे श्रोता महरूम रह जाएंगे। तो इसी अपेक्षा के साथ कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और अब हम आपका पत्र लिखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सचिन जी, आपने एक बात नोटिस की है कि इन्होंने जो हमें प्रोग्राम के नेम लिख के भेजे हैं तो वो ज्यादातर वही है जो लिसनर के नाम जिसमें शामिल किए जाते हैं, तो ये अन्य प्रोग्राम भी हमारे सुने और उसमें अपने सुझाव दें तो और भी अच्छा रहेगा।
0: हाँ, फिल्म म्यूजिक के कार्यक्रम है और एक आपका पत्र मिला कार्यक्रम है जिसमें श्रोताओं के नाम बोले जाते हैं,
1: जी जी।
0: तो शायद वक्कार भाई को इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत
1: ज्यादा पसंद आते हैं,
0: ज्यादा पसंद आते हैं, तो वो अच्छी बात है, हम भी इनके इस प्रयास की सराहना करते हैं। अगला पत्र लेंगे फरीना जी।
1: अगला पत्र हमें भेजा है महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, अलशिफा अंसारी, जसपुर रोड, दुल्हापुर, जिला मुरादाबाद से आप ये पत्र हमें भेज रहे हैं। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला की उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए प्रशंसा तथा पते के उच्चारण में सुधार हेतु शिकायत भेज रहे हैं। ये लिखते हैं, मैं आकाशवाणी नजीबाबाद का एक नियमित और निष्ठावान श्रोता हूँ। आपके लोकप्रिय कार्यक्रम आपका पत्र मिला, गीत तुम्हारे, फरमाइश गीत आपके नाम जिंदगी लाइव रात के हम सफर हेलो नजीबाबाद गपशप अड्डा सूरज के साथ साथ हेलो किसान लोक मंजरी इलाकाई खबरें और समाचार फिल्म संगीत इसको सुनना मेरी दिनचर्या है। ये मेरे बेहद सुखद और अनिवार्य हिस्सा है जिंदगी का। इस शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं आपकी पूरी टीम की गहरी प्रशंसा प्रकट करना चाहता हूँ। आत्मीय जुड़ाव और प्रस्तुति कार्यक्रम की प्रस्तुति का अंदाज मधुर वाणी शालीन तरीका हम जैसे श्रोताओं को हमेशा जोड़े रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात लिखी
0: हाँ,
1: है
0: बिल्कुल।
1: और यही रेडियो के जादू को आज तक जीवित रखे हुए। एक शिकायत और सुधार हेतु इन्होंने निवेदन किया है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये इन्होंने लिखा है, प्रशंसक होने के नाते मैं आपका ध्यान एक छोटी सी गलती की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले कुछ एपिसोड्स में जब मेरा पत्र पढ़ा गया तो पते का गलत उच्चारण किया गया और मेरा सही पता मुरादाबाद है जबकि बिजनौर पढ़ दिया गया। तो हम उनकी तरफ से आपसे माफी चाहते हैं, आगे से ख्याल रखा जाएगा। और आगे ही लिखते हैं, चूंकि आकाशवाणी नजीबाबाद हमारे अपने दिल के करीब है इसलिए इस प्रकार की भौगोलिक त्रुटि से श्रोताओं के बीच असमंजस की स्थिति बन जाती है। आपसे अनुरोध है कि भविष्य में पत्र पढ़ते समय मेरे पते को ठीक से पढ़ा जाए। और देखिए आज हमने पढ़ लिया है इनका,
0: हाँ,
1: है ना,
0: हाँ,
1: इनकी शिकायत दूर हो गई है।
0: आपने पढ़ा, पहले नाम बोले, महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेबी अलशिफा अंसारी, और ये पत्र लिखते हैं जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से। बिल्कुल सही बात कही। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक साथ में, क्योंकि हम भी स्क्रीन पर ही पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक स्क्रीन अवेलेबल है, जैसे स्क्रीन पर हम अपने श्रोताओं के पत्रों को, उनके सारे मैसेजेस को पढ़ते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है और वो त्रुटिवश होता है, जान करके नहीं होता। लेकिन आपकी इस विशेष हिदायत का और जो आपने हमसे चाहा है, जो एक निवेदन किया है या एक शिकायत है, तो ये हमारे लिए फूल के समान है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी, जब हमको कोई शिकायत लिखते हैं तो वो हमारे लिए वो शिकायत नहीं होती। आपके दृष्टिकोण से उसे शिकायत समझा जाता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो फूलों के समान होती है, ताकि वो फूल जब हम पर बरसते हैं तो हम अपनी गुणवत्ता में और भी सुधार करते हैं और इस योग्य हो जाते हैं, अपने आप को सक्षम बनाते हैं कि हमारे किसी भी श्रोता को हमारे किसी भी एक शब्द से कोई भी परेशानी ना हो। तो पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये अगला पत्र हमें भेज रहे हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। आप हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन और तमन्ना परवीन। ये लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा आदाब। हमें नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। गीत तुम्हारे, जिंदगी लाइव, संदेश.com, फिल्मी संडे, आपका पत्र मिला, सूरज के साथ साथ, ये सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। पहले आपके केंद्र से एक कार्यक्रम होता था हेलो जिंदगी, वो आपने बंद कर दिया है, हो सके तो उसे फिर से शुरू कर दें, आपकी मेहरबानी होगी।
0: हाँ, बहुत बहुत पहले तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इस कार्यक्रम में पत्र लिखा। और अंसारी भाई, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आपने लिखा है कि आपने पूछा है कि पहले यहाँ से एक हमारे केंद्र से एक कार्यक्रम होता था हेलो ज़िंदगी, तो हमने उसे बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने उस कार्यक्रम को बंद नहीं किया है। हमने उस कार्यक्रम का थोड़ा सा कलेवर चेंज किया और कलेवर चेंज करके उसे ज़िंदगी लाइव की फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, तो ज़िंदगी लाइव में भी आप हमसे व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से आप जुड़ते हैं और उस कार्यक्रम में जो बात आप हमसे बोल करके करते हैं वो बात आप हमें लिख करके भेज देते हैं और वही बात हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। तो और आप साथ ही आप सभी श्रोताओं का नाम भी उस कार्यक्रम में पढ़ा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने कोई कार्यक्रम बंद कर दिया। ये समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आकाशवाणी के केंद्र से ज़रूरी होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने सभी श्रोताओं के लिए हमने एक पत्र, जो जिंदगी लाइव है, वो भी मैसेजेस पर आधारित एक कार्यक्रम लिखा और जिसकी एक विशेष थीम होती है, उस थीम पर वो कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी उदास ना हो अंसारी भाई, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अंसारी जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कोई अच्छा परिवर्तन अगर कर लिया जाए तो कार्यक्रम को और खूबसूरत बना देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगला पत्र लेंगे फरीना जी।
1: ये अगला पत्र हमें भेजा है अम्मे विहार कॉलोनी बिजनौर से लता शर्मा, दिनेश शर्मा, अनंत, आरव, कल्पना, कंचन और उनके परिवार के सारे सदस्य। ये लिखते हैं कि आशा करते हैं आज हमारा पत्र पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जा रहा है। 3-4 हफ्तों से हमारा पत्र शामिल नहीं किया जा रहा, उसका हमें दुख है, और साथ ही साथ आशा करते हैं कि हम आपके

0: पुराने श्रोता हैं और हमें सारे ही प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, सारे उद्घोषक अच्छे लगते हैं, हमारी पसंद के मतलब प्रेजेंटर हैं रेणु कोटनाला जी, श्वेता भट्ट, सचिन जी और बहुत सारे लोग जिन्हें हम सुनते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। शिकायत तो बहुत है, वो हम अगले पत्र में लिखेंगे, फिलहाल हमारा आज का पत्र शामिल कर लीजिए, बहुत खुशी होगी।
1: हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही कि हमारा पत्र शामिल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी हमें पत्र लिखते हैं आपका पत्र शामिल होता है। कई बार श्रोताओं की इस तरह की शिकायत रहती है कि हमारा पत्र या हमारा संदेश या हमारा मैसेज कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल भी ऐसा जानबूझ करके कभी नहीं किया जाता है ना। ये कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस एक साथ हमें मिलते हैं और जिसकी वजह से कार्यक्रम का समय सीमित होता है, और सीमित समय होने के कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने सभी श्रोताओं को नाराज़ करना चाहते हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं। सीमित समय की थोड़ी बाध्यता होती है जिसकी वजह से कभी कभी कुछ श्रोताओं के पत्र छूट जाते हैं, कुछ श्रोताओं के मैसेजेस छूट जाते हैं, जिसकी वजह से कार्यक्रम की समय सीमा है। उसी समय सीमा के भीतर हमें पूर्ण जितने भी पत्र हमसे लिए जा सकते हैं वो सारे कार्यक्रम लिखते हैं। और आपने अपने पत्र में लिखा कि आपकी शिकायतें और भी हैं, वो आप अगले पत्रों में लिखेंगे, तो यदि आप अपनी शिकायत आज इस पत्र में लिख देते तो शायद सभी श्रोताओं के समक्ष हम आपकी शिकायत को भी प्रस्तुत कर देते और साथ ही उसका क्या निवारण हो सकता है उसकी भी संभावनाएँ हम सब मिलकर तलाशने की कोशिश ज़रूर करते। तो ठीक है, हम आपके अगले पत्र का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्र लिखने के लिए, और अपने अगले पत्रों को लिखते रहिए, हम आपके पत्र की प्रतीक्षा करेंगे। फरीना जी अगला पत्र लेते हैं।
0: अगला पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से आप ये मैसेज कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि हम आपके पुराने श्रोता हैं, यहाँ से सभी प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हमें पसंद है। हमारी एक छोटी सी शिकायत है, युववाणी में कार्यक्रम होता है गीत आपके नाम, इसमें कुछ श्रोताओं के ही नाम शामिल किए जाते हैं बार बार। क्या कार्यक्रम पेश करने वाले को अन्य श्रोताओं के मैसेज वो मतलब क्यों नहीं शामिल करते हैं?
1: हाँ,
0: ऐसा ही लिख रहे हैं।
1: तो ताज मोहम्मद अंसारी भाई और इनके सभी साथियों को हम ये बताना चाहते हैं, जो युववाणी कार्यक्रम में एक जो चंक है गीत आपके नाम, उस चंक में आपने लिखा है कि कुछ ही श्रोताओं के नाम प्रसारित किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी अभी इससे पिछले पत्र में बोला कि जो भी हम पत्र आप हमारे पास मैसेजेस आते हैं उन सभी मैसेजेस को शामिल करने का पूरा प्रयास करा जाता है, लेकिन एक ही समय में इतने सारे मैसेजेस, हमारे इतने सारे सुधी श्रोता हैं जो अपने मैसेजेस करते हैं, तो हमारी भी एक सीमा होती है कि हम उन मैसेजेस को या उनके नामों को पढ़ सकें, है ना, या उनकी फरमाइशों को शामिल कर सकें, क्योंकि हम बहुत सारे मैसेजेस एक ही समय पर आ पाना ये हमारे लिए भी एक बहुत कठिनाई भरा कार्य होता है कि सबके नाम ले पाना असंभव होता है। तो इस शिकायत के लिए हमें आपसे थोड़ी मोहलत चाहिए, थोड़ी छूट चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम आपका पत्र शामिल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पाया है तो उसके लिए आप हमसे नाराज़गी रखें। आप अपने पत्र, अपने मैसेजेस ऐसे ही हमें लिखते रहें और हम आपके अगले पत्रों का इंतज़ार ऐसे ही करते रहेंगे। ताज मोहम्मद भाई, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये अगला पत्र हमें भेज रहे हैं अनिल विनोचा जी, ये लिखते हैं आप दोनों को सादर नमस्कार। हमारा ये कोई पत्र नहीं है, ये हमारे दिल का हाल है। प्यार आप करते हैं हमसे तो हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हाल ही दिल कुछ इस तरह है, आज संडे से शुरू करता हूँ। आज सचिन जी ने वंदना और सूरज के साथ साथ प्रोग्राम बहुत अच्छे से पेश किया। फरीना जी ने दोस्ती पर बड़े मन से चित्रपट संगीत पेश किया। जिंदगी लाइव में अधूरे सपनों पर अलका जी ने प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया। फ्राइडे को राजवीर जी और अनुपम जी ने बहुत ही अच्छे से जवाब भरे सॉन्ग, जज्बातों भरे सॉन्ग प्ले किए, मज़ा ही आ गया। दिल ने फिर याद किया रात के हम सफ़र, दिल लूटने में कामयाब रहा। ट्यूसडे को स्कूल में न्यूज़पेपर पर परिचर्चा बहुत अच्छी लगी। अनिल शर्मा और संजीव शर्मा का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा, सच दिल को छू गया। मनोज जी, लोकेंद्र जी, नेहा शर्मा, रविकांत जी, रेणु कोटनाला जी बहुत अच्छे से प्रोग्राम पेश करते हैं, सच बहुत हेल्दी मनोरंजन हुआ पूरे सप्ताह। बस आपका श्रोता अनिल विनोचा।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये इनका जो पत्र है इसमें प्रतिदिन वार कौन कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, किस किस प्रस्तोता ने प्रस्तुत किया और उस कार्यक्रम में कौन कौन से कलाकार थे, किस विषय पर था, ये सारी बातें एक पत्र में समाहित कर देने वाले हमारे अनिल विनोचा जी हमारे बहुत ही बेहद सुधी श्रोता हैं और ये नगीना से हैं और ये अक्सर अपने कार्यक्रमों में हमारे सारे कार्य अपने पत्रों के माध्यम से हमारे सारे कार्यक्रमों को जोड़ देते हैं और हमें भी याद दिला देते हैं कि पिछले पूरे वीक में कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हमारे कुछ ऐसे सुधी श्रोता होते हैं जो एक एक कार्यक्रम को लिखते हैं और उन्हें सुनते हैं, उन्हें सराहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य था वो सार्थक सिद्ध हुआ। पत्र लिखने के लिए अनिल बिनोचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अशोता, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमारी कोशिशें कामयाब हो गई हैं और हम आगे भी कोशिश करते हैं कि हम और ज़्यादा अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये अगला पत्र हमें भेजा है
1: कटघर मुरादाबाद
0: से फरहान असलम है। सुझाव शिकायत का पिटारा इन्होंने भेजा है।
1: हाँ।
0: आदाब अजहर, आपसे अनुरोध है कि पहले पूर्व प्रसारित कार्यक्रम में हमें यूट्यूब पर सुनने को मिल जाते थे लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं, कृपया उन्हें फिर से शुरू करने का कष्ट करें। पिछले रविवार को शाम की सभा में महिला उद्घोषक ने गुमशुदा की सूचना में एक महिला के डिटेल्स बताई और ना ही उन्होंने नाम बताया, तो
1: 5 फीट 25 इंच लंबाई उनकी बताई जबकि और ना ही खेद प्रकट किया, जबकि उन्होंने इन्होंने लिखा है कि 12 इंच का 1 फीट होता है।
0: हाँ, और उन्होंने नाम भी नहीं बताया उनका। हाँ, तो हाँ, हम आपकी ये शिकायत उन तक पहुंचा देंगे और आगे से ख्याल रखेंगे। हाँ, कि ऐसी त्रुटि ना हो।
1: हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। कभी कभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फरहान भाई कटघर मुरादाबाद से हमें पत्र लिख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम भी जो कुछ इस तरह की सूचनाएं होती हैं वो हमारे पास लिखित में होती हैं और कभी कभी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग एरर हो जाती है और कोई ग्लिच इस तरह का हो जाता है जिसकी वजह से अचानक यकायक हम जो बोलते हैं उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और यदि इस तरह का हुआ है और तो हम उस चीज़ के लिए खेद प्रकट करते हैं अपनी ओर से। फरहान भाई, आगे से भविष्य में इस प्रकार की यदि कोई भी बात होती है तो हम उस कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई बात ना हो, है ना। तो आपने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। तो कार्यक्रम का अगला पत्र लेंगे फरीना जी।
0: अगला पत्र हमें भेज रहे हैं विलेज एंड पोस्ट राहू नांगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान और प्रिंस राजपूत। ये लिखते हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, हम डेली सुनते हैं। कृषि जगत में हेलो गन्ना किसान में किसी गन्ने से संबंधित कृषि वैज्ञानिक को बुलाया करें या गन्ने की पाठशाला शुरू करें क्योंकि हमारा क्षेत्र गन्ना बहुल्य है।
1: हाँ।
0: राजवीर धर्मेंद्र जी, मनोज वर्मा बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिंदगी लाइव में देशभक्ति को भी शामिल करें। फिल्मी संडे में गीत कम हो और स्टोरी ज़्यादा हो। और बाल वाटिका बहुत अच्छा लगता है। नेहा जी, अलका जी, ज्योति जी, निधि जी, आप सब बहुत मेहनत करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने आचार्य सत्यवीर जी ने कि गन्ना हेलो गन्ना किसान जो है उसमें विशेषज्ञों को बुलाया जाए और क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है गन्ना की पैदावार में बहुत हमारा जो क्षेत्र है वो प्रधानता रखता है। तो मैं आचार्य सत्यवीर जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम आप हेलो गन्ना किसान सुनते हैं उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं कृषि जगत में जो चंक होते हैं उसमें हम बहुत सारी बातें रखते हैं। जैसे कि अगर हम आज की ही बात रखें तो जिस तरह का मौसम चल रहा है तो इसमें अब जो हमारे किसान हैं उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, अपनी फसलों का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, तो उस विषय पर भी समय समय पर भेंट वार्ताएँ प्रसारित की जाती है। जैसे कि आज ही हम कई बार उद्घोषणा कर चुके हैं कार्यक्रम विवरण के माध्यम से कि आज शाम 6:05 पर किसान भाइयों का जो मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत होता है उसमें सहायक विपणन अधिकारी मेरठ से जितेंद्र कुमार की बातचीत प्रसारित की जाएगी जिसमें किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन विषय पर जो है चर्चा और भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। और इससे पहले भी हमने जो पाश्चात्य में कुछ ऐसी भेंटवार्ताएं आयोजित की हैं गन्ना संबंधित और उसके लिए हमने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से, तो हमारे बीच में आते रहते हैं समय समय पर और हमारे किसानों की समस्याओं का निराकरण लाइव फोन इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी किया जाता है, भेंटवार्ताओं के माध्यम से भी किया जाता है और वार्ताओं के माध्यम से भी किया जाता है। तो प्रत्येक दिन या हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम के प्रत्येक एपिसोड में एक एक ही कलेवर नहीं हम प्रसारित कर पाते हैं, क्योंकि एक ही विधा एक ही है, कृषि गन्ने को उगाना, लेकिन उससे जुड़े कई अहम पड़ाव होते हैं और हर एक पड़ाव को अपने उस कार्यक्रम में शामिल करना होता है, जिसकी वजह से कीटनाशकों का सही प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को अपने इस कार्यक्रम में, इस अपने इस कृषि जगत कार्यक्रम के तहत जो हमारा एक चंक है हेलो गन्ना किसान, सबको समाहित करना होता है। तो विषयवार एक एपिसोड में हम कुछ और विषय लेते हैं, दूसरे एपिसोड में हम कुछ और विषय लेते हैं, और जिस विषय को हम विशेषज्ञ की मदद से आपके सम्मुख हल कर सकते हैं, तो उस विषय को हम विशेषज्ञ उस विषय पर हम विशेषज्ञों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं उनको हम सुलझा सके। कार्यक्रम का अगला अंतिम पत्र लेंगे फरीना जी।
0: इन्होंने सचिन जी ये बात और लिखी थी कि मतलब जिंदगी लाइफ में देशभक्ति का टॉपिक भी शामिल करें, तो हम इनकी इस बात का ध्यान रखेंगे और हाँ, इसको शामिल करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और आज सुनिएगा, आपने फिल्मी संडे को भी कहा है कि गीत कम होने चाहिए, तो उसको सुनिएगा, बताइएगा कि आपकी मतलब जो आपकी प्रतिक्रिया है उस पर खरा उतरता है या नहीं।
1: हाँ, अगला पत्र बहुत शॉर्ट में मैं ही पढ़ देता हूँ, और ये पत्र लिखा है प्रेम नगर हरिद्वार से शिखा अभिषेक अबीर राशि, और इनके मम्मी पापा ने, और ये लिखते हैं हम आप पिछले चार सालों से आपके, हम तो रेगुलर लिसनर हैं और पिछले चार साल से मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के सारे कार्यक्रम, इन्हें बहुत पसंद है, नॉलेजेबल हैं सारे कार्यक्रम, और ये कहते हैं कि चित्रपट संगीत श्वेता भट्ट जी ने जो अभी 27 जुलाई को प्रस्तुत किया इन्हें बहुत अच्छा लगा, और अमजद खान स्पेशल था एक्चुअली वो जो था उस दिन, तो इन्हें बहुत पसंद आया, और ये फिल्मी संडे भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है, 28 जुलाई का सूरज के साथ साथ बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से इन्हें सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और आकाशवाणी नजीबाबाद से ज़्यादा प्रोग्राम सुने और सुनते भी हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी हमें शिकायत आलोचना समालोचना भी चाहिए थी इस पत्र में, लेकिन कोई बात नहीं फरीना जी, मुझे ऐसा लगता है कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो मैं समाप्त होने से पहले जो हमारे श्रोता हरिद्वार से हमें पत्र लिख रहे हैं, प्रेमनगर हरिद्वार से शिखा जी और इनके सभी साथी, उनको बता देना चाहता हूँ पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फरीना जी अब कर लेते हैं अपने श्रोताओं को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी संडे, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आएंगे लाए हैं साल 1993 की फिल्म बाजीगर।
1: फिल्मी संडे,
2: फिल्मी संडे,
1: फिल्मी संडे,
2: फिल्मी संडे।
0: रविवार की इस सुहानी घड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। हर सप्ताह की तरह आज भी इस महफिल में आप सुनेंगे गीतों और संवादों से सजी एक शानदार फिल्म की कहानी, जिसका नाम है बाजीगर। साल 1993 की एक ऐसी फिल्म जिसमें नायक को नए अंदाज में पेश किया गया। इसमें रहस्य भी है, रोमांच भी है, प्यार है तो धोखा भी है। कुल मिलाकर ये बदले और धोखे की ऐसी दास्तां है जो अंत तक आपको बांधे रखेगी। तो सबसे पहले रूबरू कराते हैं उन फनकारों से जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस फिल्म को सफल बनाया। गणेश जैन द्वारा निर्मित इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली अब्बास मस्तान की प्रसिद्ध जोड़ी ने। कहानी को आकार दिया रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना और जावेद सिद्दीकी ने। संगीतकार अनु मलिक के सुरों में ढले गीतों को अल्फाज देव कोहली, नवाब आरजू, जफर गौरखपुरी, रानी मलिक और गौहर कानपुरी ने दिए। उनमें अपनी आवाजों की मिठास घोली है आशा भोसले, अलका याग्निक, कुमार सानू, विनोद राठौर और अनु मलिक ने। फिल्म की कहानी को पर्दे पर साकार करने वाले मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दोहरी पहचान वाले अजय शर्मा और विक्की मल्होत्रा के चुनौतीपूर्ण किरदार में हैं। उनके बचपन की भूमिका सुमित पाठक ने अदा की है। राखी शोभा शर्मा और अनंत महादेवन विश्वनाथ शर्मा के रूप में उनके माता पिता हैं। दिलीप ताहिल मदन चोपड़ा हैं, जिनका अतीत में किया गया छल ही पूरी कहानी की जड़ है। उनकी दो बेटियों सीमा और प्रिया के किरदारों को निभाया है अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और काजोल ने। सिद्धार्थ रे इंस्पेक्टर करण सक्सेना है। टप्पू मलिक रवि शुक्ला और रेशम टिपनिस अंजलि सिन्हा के रूप में सीमा के कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अजय का दोस्त आदि ईरानी असली विक्की मल्होत्रा है, जिसकी पहचान अजय अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनाता है। और बाबूलाल की हास्य भूमिका निभाई है जॉनी लीवर ने। इसके अलावा दिनेश हिंगू और राजू श्रीवास्तव जैसे कलाकारों ने अपने छोटे छोटे अहम किरदारों से कहानी को रोचक बना दिया है। तो आइए अब फिल्म की कहानी से पर्दा उठाते हैं। तेज बारिश में भीगता हुआ अजय अपनी बीमार माँ शोभा की जांच के लिए विनती करके डॉक्टर को घर लाता है। डॉक्टर बताते हैं सदमे की वजह से वो अपनी आवाज और याददाश्त खो चुकी है। मासूम अजय मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ की सेवा करता है। ये देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए अजय कहता है,
3: मत रो माँ, तू क्यों रोती है? रोना तो उसको है जिसने हमें रुलाया है।
0: वक्त गुजरता है, अजय बड़ा हो जाता है और निकल पड़ता है अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने, जो बचपन से उसके मन में है। रास्ते में उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त विक्की मल्होत्रा से होती है। बातचीत में अजय को पता चलता है कि विक्की के माँ बाप एक प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। इधर सीमा अपने कॉलेज फ्रेंड्स अंजलि और रवि से मिलकर गार्डन में अजय से मिलती है। अजय सीमा के लेट आने पर नाराज होकर किताब पढ़ने लगता है। तब सीमा उसे इस अंदाज में मनाती है,

0: अचानक सीमा को याद आता है कि आज उसकी छोटी बहन प्रिया शिमला से लौट रही है। घर पर प्रिया एयरपोर्ट पर उसे लेने न आने के लिए गब्बर के अंदाज में सभी नौकरों की क्लास लगाती है। तभी सीमा आकर उसे गले लगा लेती है। प्रिया सीमा और अपने पिता पर एयरपोर्ट न आने पर नाराज होती है। बेटी के आने पर बेहद खुश मदन चोपड़ा दोनों पर अपना प्यार लुटाते हुए बताते हैं कि कल वो उन दोनों को लेकर कार रेस में आखिरी बार हिस्सा लेने मद्रास जा रहे हैं, लेकिन सीमा अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की वजह से जा नहीं पाती। कहानी के इस मोड़ पर अजय अपनी दोहरी पहचान यानी विक्की मल्होत्रा के रूप में हमारे सामने आता है। कार रेस में सबकी नजर मदन चोपड़ा और विक्की पर टिकी होती है। विश्वास जीतने के लिए विक्की मदन चोपड़ा को रेस जीतने देता है। पूछने पर इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है,
1: मैं बरसों से आपका फैन रहा।

0: आपको अपना गुरु मानता और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाएं।
1: तब प्रिया हैरानी से उससे पूछती है,
2: इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए?
1: और विक्की आशिकाना अंदाज में उससे कहता है,
0: कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
1: प्रिया को विक्की से प्यार हो जाता है।

अपने दिल का हाल सीमा को सुनाती है। अगले दिन विकी प्रिया को टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है, पर प्रिया चालाकी से अकेले ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे परेशान करते हैं। विकी आकर गुंडों की बढ़िया धुनाई कर देता है। अब दोनों गुंडों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां प्रिया की मुलाकात अपने कॉलेज फ्रेंड इंस्पेक्टर करण से होती है, जो दिल ही दिल में प्रिया को बहुत चाहता है। प्रिया करण को विकी से मिलाकर घर आ जाती है। उधर सीमा अपनी सहेली अंजलि की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही होती है, तभी अजय खिड़की से इशारा करके सीमा को बुला लेता है और कुछ दिनों बाद मिलने की बात कहकर चला जाता है। घर पहुंचकर सीमा को अपनी सगाई के बारे में पता चलता है। वो अजय को फोन करके पिता से शादी की बात करने के लिए कहती है, पर अजय अपनी कोई हैसियत ना होने की वजह से खुदकुशी करने के लिए सीमा के साथ सुसाइड नोट लिखता है। फिर इसे सीमा के प्यार का इम्तिहान बताकर उसका सुसाइड नोट अपने पास रखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। हाँ सुनकर सीमा को लगता है कि अजय के रूप में उसको सच्चा हमसफर मिल गया है।

अगले दिन दोनों कोर्ट मैरिज करने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं। लंच टाइम होने पर अजय सीमा को टेरेस पर ले जाता है। सीमा अजय को दोनों की फोटो लगा मंगलसूत्र दिखाती है। श्रोताओं, कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जो हर किसी को हिला कर रख देती है। मंगलसूत्र देखने के बाद बात करते करते अजय अचानक सीमा को टेरेस से नीचे फेंक देता है। सीमा मर जाती है। चोपड़ा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस सीमा का सुसाइड नोट देखकर केस को बंद कर देती है, पर प्रिया को सीमा की सुसाइड की बात पर शक होता है और उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब एक चोरी सीमा के मंगलसूत्र के बाकी पैसे लेने आता है। प्रिया ये बात अपने पिता को बताती है, पर बदनामी की वजह से वो इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहते। प्रिया करण की मदद लेती है और उसके कहने पर सीमा के फ्रेंड्स अंजलि और रवि से मिलती है। रवि बताता है कि सीमा छिपकर जिस लड़के से मिलती थी उसकी एक तस्वीर उसके पास है जो उसने अंजलि के बर्थडे पर ली थी। इससे पहले कि रवि हॉस्टल से लाकर वो तस्वीर प्रिया को देता, अजय रवि से सुसाइड नोट लिखवाकर उसे मार देता है। प्रिया और करण को सुसाइड नोट देखकर ये लगता है कि सीमा का कातिल रवि ही था। कहानी आगे बढ़ती है। मदन चोपड़ा प्रिया और विक्की की शादी की बात करने के लिए विक्की से माँ बाप को बुलाने के लिए कहते हैं। विक्की उन्हें बताता है कि एक प्लेन क्रैश में वो अपने माँ बाप को खो चुका है। मदन चोपड़ा उसे दिलासा देकर बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। उनके जाने के बाद विक्की यानी अजय को अपने साथ हुए जुल्म की कहानी याद आती है, जहां विश्वासघाती मदन चोपड़ा 3 साल की सजा काटने के बाद अजय के पिता विश्वनाथ शर्मा से माफी मांगने का नाटक करके फिर से काम पर रखने की मिन्नतें करता है। अजय की मां शोभा उसकी बच्चियों पर तरस खाकर पति को इस बात के लिए मना लेती है। धीरे धीरे मदन चोपड़ा अजय के पिता का इतना भरोसा जीत लेता है कि बिजनेस टूर पर जाते हुए वो पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम कर जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मदन चोपड़ा उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। अजय का हंसता खेलता परिवार सड़क पर आ जाता है। शोभा अजय के साथ मदन चोपड़ा से बात करने जाती है, पर वो उस पर गलत नजर डालता है। शोभा उसकी बदनीयती का जवाब थप्पड़ के साथ देती है। कहानी आज में लौटकर एक शॉपिंग सेंटर पहुंचती है, जहां प्रिया और विक्की की मुलाकात सीमा की सहेली अंजलि से होती है। प्रिया उसे अपनी सगाई के बारे में बताती है। सगाई का फंक्शन शुरू होता है और इस खुशी के मौके पर हमें हिंदी सिनेमा के 2 फनकारों की झलक

देखने को मिलती है, एक अनु मलिक और दूसरे विनोद राठौर। सगाई में गाया गया उनके इस गीत का एक एक शब्द करण की प्रिया के लिए खामोश मोहब्बत को बयां करता है।

0: इसी बीच विक्की को देखकर कुछ याद आते ही अंजलि सगाई में ही प्रिया को फोन करती है, पर बाबूलाल की भूलने की आदत की वजह से अजय मदन चोपड़ा बनकर अंजलि से फोन पर बात करता है। अंजलि उसे बताती है,
1: बात यह है कि आज प्रिया मुझे शॉपिंग सेंटर में मिली थी, वहाँ उसने मुझे विक्की से मिलवाया। अंकल, विक्की की सूरत बिल्कुल उस आदमी से मिलती है जिससे सीमा की दोस्ती थी।
2: तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकती हो?
1: मेरे पास उसकी तस्वीर है।
2: तस्वीर?
1: हाँ, मेरे बर्थडे पार्टी पर जो तस्वीरें ली गई थी उसमें वो भी है।
2: ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं?
1: नहीं, मैंने पहले प्रिया को बताना जरूरी समझा।
2: अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
0: राज खुलने के डर से अजय अंजलि को भी रास्ते से हटा देता है। अकस्मत मदन चोपड़ा के साथ हूबहू वही खेल खेलती है जो बरसों पहले उसने अजय के पिता के साथ खेला था। होता ये है कि बिजनेस टूर पर जाते हुए मदन चोपड़ा पावर ऑफ अटर्नी विक्की के नाम कर जाते हैं। विक्की यानी अजय को तो इसी दिन का इंतजार था। इधर अंजलि के गायब होने और मौत की खबर से करण और प्रिया को यकीन हो जाता है कि सीमा का कातिल रवि नहीं कोई और है। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि अजय और विक्की एक ही हैं और उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। करण से छिप छिप कर मिलने पर विक्की प्रिया पर नाराज होता है और उसके रोने पर उसे बहलाने के लिए क्लब ले जाता है और वहाँ चुलबुले अंदाज में उसकी तारीफ करता है।

0: तभी क्लब में असली विक्की मल्होत्रा यानी अजय के बचपन के दोस्त की एंट्री होती है। विक्की के रूप में अजय उसे पहचानने से इनकार कर देता है। दोनों के बीच में इसी बात पर हाथापाई हो जाती है और प्रिया गहरी सोच में पड़ जाती है। इधर मदन चोपड़ा बिजनेस टूर से वापस आ जाते हैं और सब कुछ बदला हुआ देखकर विक्की यानी अजय के पास जाते हैं और वो कहता है,
1: वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया, उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक सपाही जैसी हो गई है। जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है।
0: उधर प्रिया पता लगाते लगाते असली विक्की मल्होत्रा से मिलती है। सच्चाई जानने के बाद वो अजय के घर जाती है, जहां उसे हर वो सबूत मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। तभी अजय आ जाता है। प्रिया उसे सवाल करती है,
2: क्या कहूं तुम्हें, विक्की मल्होत्रा या अजय शर्मा? नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। तुमने जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे भी धोखा दिया, मेरे साथ ही प्यार का नाटक किया। क्यों, क्यों बिगाड़ा था हमने तुम्हारा?
0: अतीत की यादों से पता चलता है कि किस तरह मासूम अजय के आंसू अपनी बहन और पिता की मौत से बदले की आग में बदल गए थे। इसके बाद अजय प्रिया को अपनी माँ से मिलवा ही रहा होता है कि तभी मदन चोपड़ा अपने गुंडों के साथ आकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। मदन चोपड़ा को देखकर शोभा की आवाज और याददाश्त लौट आती है। वो बेटे को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन मदन चोपड़ा उसे धक्का दे देता है। माँ को खून में लथपथ देख कर अजय तड़प उठता है।
1: 15 साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रिसता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा।
0: सारे गुंडों को मार कर अजय जैसे ही मदन चोपड़ा को मारने के लिए हथियार उठाता है, करण उसे रोक देता है, लेकिन मदन चोपड़ा उस पर वार करने से जरा नहीं चूकता। जवाब में अजय भी हंसते हुए मदन चोपड़ा को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है और अपनी माँ के आंचल में हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है।

श्रोताओं, बस यही था आज की फिल्म बाजीगर का फसाना। अगले रविवार फिर लेकर आएंगे एक नई फिल्म का नजराना। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।

0: ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಡೇ.
1: फिल्मी संडे में अभी आप सुन रहे थे साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर की कहानी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ खास हयात शब्दों के शिल्पकार, बात जुबान की, बूस्टर्स और साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। कृषि जगत कार्यक्रम में आज सुनिएगा भेंटवार्ता, किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन, और इसमें आप बात करेंगे मेरठ के सहायक विपणन अधिकारी राहुल यादव से जितेंद्र कुमार। विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर सुनिएगा कहानियां, जुम्मन की हार और माँ की पेंशन, कहानीकार होंगे अतीक अहमद अंसारी। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार शाहरुख की गायी गजलें आप सुनेंगे। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज हमारे कलामे शायर होंगे सुनील साहिल और कार्यक्रम का समय 7:50 पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:00 को है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसुलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
0: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का नई दिल्ली से आगाज किया। ये मुहिम 2047 तक मुंशियात से पाक हिंदुस्तान और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मकसद को हासिल करने की तरफ ले जाने वाली अवामी शराकतदारी की एक बड़ी तहरीक है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम सब एक अजीम और अहम करारदाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम जिस मुहिम का मुशाहिदा कर रहे हैं वो फर्द के लिए है, खानदान के लिए है, मुआशरे के लिए है और सबसे अहम बात यह है कि ये कौम के लिए है। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 इतवार मुंशियात से पाक हिंदुस्तान की तरफ 100 मजबूत कदम होंगे। आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लाखों तुलबा ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज ने हमेशा मुंशियात की लत को एक बुराई के तौर पर देखा है। हमारे संतों और गुरुओं ने हमें इसके खिलाफ खबरदार किया है। हमारी सकाफत इसकी रोकथाम के लिए इंतबाहात भी फराहम करती है और अगर नशे की नशोनुमा होती है तो उस पर काबू पाने के तरीके भी फराहम करती है। मुआशरे की हिमायत, योगा और मुराकबा की ताकत नशे के खिलाफ हमारे बातिन को मजबूत करती है। वजीर आजम ने कहा,
1: देश विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे।
0: इस प्रोग्राम में 28,000 मकामात से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 5,000 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीतने पर गुलवीर सिंह को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह कामयाबी कॉमनवेल्थ गेम्स के इस यूनिट में हिंदुस्तान का पहला तमगा है और इसकी पिछली कामयाबी के बाद उनके सफर में एक और काबिल फख्र बाप का इजाफा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गुलवीर सिंह को मुबारकबाद दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। इससे कबल कुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की थी। वो एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स के 2 तमगे जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने अपने 17 इजला को छतों पर सोलर प्लांट्स की तंसीब के लिए मुल्क के टॉप 100 की फेहरिस्त में शामिल कराया है। इस फेहरिस्त में लखनऊ ने पहला मकाम हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
2: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: रियासती मुकन्ना का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है। इजलास के दौरान रियासती हुकूमत मंगल को जिमनी बजट पेश करेगी। आज दोपहर वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़िद होगी जिसमें सेशन के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग से पहले असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। मॉनसून इजलास 6 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आजादी पसंद और कौमी परचम के खालिक पिंगली वेंकैया को उनकी योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि अजीम आजादी के जंगजू पिंगली वेंकैया के योम पैदाइश पर आजिजाना खराज अकीदत जिसने तिरंगे को हिंदुस्तान के फख्र और शान की शक्ल दी। सावन के महीने के दौरान अकीदतमंद रियासत के तमाम शिव मंदिरों में दर्शन, पूजा और जलाभिषेक के लिए आते हैं। दरियसना सावन के पहले पीर को कल रियासत भर के बड़े शिव मंदिरों में कांवर यात्रियों की बड़ी तादाद के आने की तवक्को के पेश नजर वसी हिफाजती इंतजाम और ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं। रियासत के कई अजला में आज से कल तक कई रास्तों पर गाड़ियों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश के महकमा सियाहत की पहल दी राइडिंग चैप्टर्स विजिट माय स्टेट के तहत आज सुबह दारुल हुकूमत लखनऊ के 1090 चौराहे से तारीखी कलिंजर किले तक मोटरसाइकिल का सफर शुरू किया गया। सियाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने बाइक सवारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और महकमे मौसमियात ने आज से शुरू होने वाले अगले चार दिनों तक रियासत में मानसून की सरगर्मियों में इजाफे की पेशगोई की है। महकमे ने रियासत के कई हिस्सों में 5 अगस्त तक भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान रियासत में कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक पसंदीदा कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: बाल वाटिका सुनने वाले सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। साथ ही आप लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बच्चों, आज हम आपसे एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जो हमें हंसी देता है, खुशियाँ देता है और कभी-कभी जब हम कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हमारा साथ भी देता है। और बच्चों, वो कौन सा रिश्ता है? वो है दोस्ती का। कहते हैं ना, दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा, हर पल देता खुशियों का सहारा। बच्चों, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पाते, लेकिन एक मित्र ऐसा दोस्त होता है जिनसे हम अपनी मन की बातें साझा कर सकते हैं। और बच्चों, सच्चा दोस्त भी वही होता है जो हमारी परेशानियों को समझे और हमारा साथ दे। पर बच्चों, दोस्ती का मतलब बस खेलना या टिफिन शेयर करना नहीं होता है। दोस्ती का मतलब होता है कि हम अपने दोस्तों का मजाक ना उड़ाएं, उनसे झूठ ना बोलें। बच्चों, मित्रता कैसी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी। दोनों की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन उनकी मित्रता में कभी दूरी नहीं आई। बच्चों, हमें भी इनसे सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अपनेपन से बनती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त वही होता है जो जल्दी से माफ करना सीख जाए और फिर मुस्कुराकर दोस्ती निभाए। और आप जानते हैं कि हम अगस्त के पहले रविवार को मित्रता दिवस भी मनाते हैं। बच्चों, ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमें मौका मिलता है कि अपने दोस्तों को धन्यवाद कहने का और उन्हें बताने का कि वो हमारे जीवन में कितने खास हैं। तो आइए बच्चों, इस मित्रता दिवस पर हम अपने सारे फ्रेंड जो आपके खास हैं, बल्कि वो भी जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, आपके पड़ोस में हैं, सभी के साथ प्रेम, सम्मान और मुस्कान बांटने का संकल्प लें। बच्चों, दोस्ती वही होती है जहाँ ढेर सारी खुशियाँ हों, जहाँ नाराजगी ना हो। तो हमें उम्मीद है कि हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्त आज खूब अच्छे से फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ बच्चों, एक बार और हमारी तरफ से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। और आइए अब बच्चों सुनते हैं कार्यक्रम बालमुख और जानते हैं कि हमारे साथियों ने कैसे मनाया आज अपना फ्रेंडशिप डे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम बालमुख में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उनसे उनका परिचय।
1: मेरा नाम रुद्र है।
2: मेरा नाम केशव है।
3: मेरा नाम अमन है।
4: मैं अगन्या।
5: मेरा नाम दर्श है।
0: आज सारे बच्चे बहुत तैयार होकर आए हैं, कोई खास बात है क्या?
6: दीदी, आज फ्रेंडशिप डे है।
0: अच्छा, तो आज फ्रेंडशिप डे है इसलिए आप सब लोग बहुत तैयार होकर आए हैं। जी हाँ बच्चों, अगस्त महीने के पहले रविवार को हम मनाते हैं मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे। तो क्यों ना आज इसी पर बात हो जाए। तो सबसे पहले अगन्या से पूछते हैं कि अगन्या, आज आपने फ्रेंडशिप डे पर क्या करा?
6: मैंने आज अपने फ्रेंड को मनपसंद चॉकलेट दी।
0: अच्छा अगन्या, आपके कितने दोस्त हैं?
6: दीदी, वैसे तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड पीहू है।
0: अच्छा अगन्या, पीहू ही आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है?
6: दीदी, वो मेरी हेल्प करती है, वो मेरे साथ खेलती है, वो मेरी बात सुनती है।
0: अच्छा, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड इसलिए है क्योंकि वो आपके साथ खेलती है, आपकी बात सुनती है। तो आप भी अपनी फ्रेंड की कुछ हेल्प करती हैं?
6: जी दीदी, अभी उसकी कुछ दिनों पहले तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने उसकी हेल्प करी, उसका होमवर्क कंप्लीट करने में और पढ़ाई में हेल्प करने में।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अच्छे जो फ्रेंड होते हैं, सच्चे जो फ्रेंड होते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनकी जब अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो तब भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, अब रुद्र से पूछते हैं कि उनके कितने सारे फ्रेंड हैं?
1: दीदी, वैसे तो मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है, पर मैंने अपने सारे फ्रेंड को अपने घर बुलाया, केक कटिंग करी और वे भी थोड़ा थोड़ा खाने का सामान लेकर आए थे और हमने सभी ने शेयर करे और हमने खूब मस्ती करी।
0: तो भाई रुद्र ने देखो अपने सारे फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट करा और केक भी काटा और सबने खूब मस्ती करी। तो अब चलते हैं केशव से पूछते हैं कि आज उन्होंने क्या किया। तो केशव, आज आपने क्या किया?
2: दीदी मेरा जो दोस्त है उसकी नानी की तबीयत खराब हो रही है तो अपने मम्मी पापा के साथ नानी के घर गया हुआ है।
0: तो केशव आज आपने फ्रेंडशिप डे नहीं मनाया?
2: दीदी मैंने उसे फोन पे ही विश कर दिया था।
0: केशव आपका सिर्फ एक ही फ्रेंड है और कोई फ्रेंड नहीं आपका?
2: दीदी वैसे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं पर मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो अपनी नानी के गया है।
0: केशव क्या आप अपनी फ्रेंड के बिना फ्रेंडशिप डे नहीं मनाएंगे?
2: नहीं दीदी, जब मेरा वो दोस्त आ जाएगा तब मैं उसके साथ केक कटिंग करके फ्रेंडशिप डे मनाऊंगा।
0: तो भाई आज केशव अपने फ्रेंड को बहुत मिस कर रहे हैं, तो भाई हम भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आपके फ्रेंड की नानी की तबीयत जल्दी सही हो जाए और वो जल्दी लौट आए और आप उसके साथ अच्छी अच्छी सी पार्टी करो। अमन से पूछते हैं कि आज उन्होंने क्या किया।
4: दीदी आज मैंने अपने दोस्तों को पार्टी पे बुलाया था।
0: तो अमन आपने अपने दोस्तों को पार्टी पे कहाँ बुलाया था?
4: दीदी मैंने अपने दोस्तों को घर पे बुलाया था, मेरी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए थे।
0: तो आपने छोले भटूरे खाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया था? तो अमन आपके तो बहुत सारे दोस्त आए होंगे।
4: जी दीदी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है।
0: तो देखिए बच्चों अमन के तो बहुत सारे फ्रेंड हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी सबसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड हो, भाई और भी हो सकते हैं और आपको सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। तो अब हम अपने नन्हे दर्श से पूछते हैं कि उन्होंने आज क्या किया।
5: मेरे दोस्त का बर्थडे है, शाम को हम वही पार्टी करेंगे।
0: ये तो बहुत अच्छा है कि भाई आज दर्श के फ्रेंड का बर्थडे भी है और दर्श वहीं पर पार्टी करेंगे। तो बच्चों एक बात आप लोग बताइए कि सच्ची मित्रता क्या होती है, कौन बताएगा?
7: दीदी हम बताएंगे, हम बताएंगे, दीदी हम बताएंगे।
0: तो सबसे पहले रुद्र से पूछते हैं।
8: दीदी सच्ची मित्रता ये होती है कि हम दूसरे की हेल्प करें और अगर कोई हमसे नाराज हो जाए तो हम जल्दी से दोस्ती वापस कर लें और उनकी पढ़ाई में हेल्प भी करें।
0: आप बताइए।
5: जी दीदी सच्ची मित्रता वही होती है, हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ खेलें, एक दूसरे के साथ पढ़ें और एक दूसरे की कभी बुराई ना करें।
0: जी हाँ बच्चों ये तो अघंडे ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अपने जो फ्रेंड है, अपने जो दोस्त है उनकी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपका सच्चा मित्र है और उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी है और आप उसे बताएंगे तो वो जरूर उस अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करेगा। ये ना कि आप किसी और से कहें कि वो ऐसे कर रहा था, वो वैसे कर रहा था, ऐसे ना कहने के बजाय आप उसी से उसकी कमियों को बताएं और फिर उसे दूर करने की भी कोशिश करें। तो बच्चों क्या आप लोग कुछ सुनाएंगे भी हमारे बच्चों को?
8: दीदी मैं एक पोएम सुनाऊंगा। मेरा दोस्त मेरा प्यार सबसे अच्छा सबसे प्यारा, साथ में हंसना साथ में गाना, मिलजुल कर आगे बढ़ जाना, गिर जाऊं तो हाथ बढ़ाए, रो दू तो मुझे सताए, प्यार के फूल सभी को दे, दोस्ती का यही है मान, सबका करे हम सम्मान, आओ मिलकर कसम ये खाए, सच्ची दोस्ती सदा निभाए।
0: बहुत अच्छी रुद्र ने हमें पोयम सुनाई। तो अब अघन्या से पूछते हैं कि वो क्या सुनाएंगी।
9: दीदी मैं भी कविता सुनाना चाहूंगी। दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा, खुशियों से भर दे जीवन सारा, सुख में साथ दुख में सारा, सच्चा मित्र होता है न्यारा, मिलजुल कर हम खेले गाएं, हंसते हंसते आगे जाएं, ना लड़ाई ना कोई बैर, सबसे रखे प्यार का ढेर, सच बोले सबका मान करो, आओ आज ये वचन निभाओ, सच्ची दोस्ती सदा निभाओ।
0: तो अघन्या ने भी बहुत अच्छी कविता सुनाई हमें। अब दर्श से पूछते हैं कि वो क्या सुनाएंगे हमें।
10: दीदी मैं भी एक पोएम सुनाऊंगा। मेरा मित्र सबसे प्यारा, हंसता गाता न्यारा न्यारा, साथ में खेल साथ में पढ़े, मिलकर हर दिन आगे बढ़े, ना झगड़ा करें ना टूटे हम, प्यार बांटे हर दिन हम।
0: बहुत अच्छी कविता सुनाई हमें दर्श ने कि सच में हम हर दिन प्यार बांटे और अच्छी अच्छी बातें करें। तो अब अमन से पूछते हैं कि वो क्या सुनाएंगे।
11: दीदी मैं एक पोएम सुनूंगा। सबसे पहले मेरा घर अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही सोचती थी बस, इतना तिनके से तैयार, फिर मेरा घर बंद घोसला, सूखे तिनके से तैयार, तब मैं यही सोचती थी बस, इतना सा ही है संसार।
0: भाई अमन ने तो बहुत जोर शोर से पोएम सुनाई, पर बहुत अच्छी पोएम सुनाई। तो अब केशव से पूछते हैं कि वो क्या सुनाएंगे।
2: दीदी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चूहा और एक शेर रहते थे। एक दिन शेर आराम कर रहा था, उसके ऊपर चूहा आके कूदने खेलने लग गया। तभी शेर उठा, उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी चूहे ने कहा शेर जी मुझे छोड़ दो, कभी मैं आपकी मदद कर दूंगा। एक दिन शेर जाल में फंस गया, तभी चूहा आया और उसने शेर को आजाद कर दिया। फिर शेर ने उसका शुक्रिया करा और वो दोनों दोस्त बन गए।
0: देखिए बच्चों, केशव ने कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई हमें। चूहा इतना छोटा था, फिर भी उसने जंगल के राजा शेर की हेल्प करी और फिर दोनों दोस्त बन गए। जी हाँ बच्चों, सच्ची मित्रता यही होती है, जब हम अपने फ्रेंड के परेशानियों में उनका साथ निभाएं, उनकी मदद करें। और जो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके हम उम्र हैं वही आपके सच्चे दोस्त हैं, आपके भाई बहन भी आपके सच्चे दोस्त हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी आपके फ्रेंड बन सकते हैं। बस हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और सभी बच्चों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारे बच्चों की बातचीत, पत्रों द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि इस महीने हमें ऐसे कई ख़ास दिनों के बारे में जानने का मौका मिलता है जो हमें शांति, मेहनत और देशभक्ति का संदेश देते हैं। आज हम भी आपको ऐसे तीन ख़ास दिनों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पहला है बच्चों हिरोशिमा दिवस की। बच्चों 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। बच्चों बहुत साल पहले जापान के हिरोशिमा शहर पर एक बहुत शक्तिशाली बम गिराया गया था और बच्चों इस घटना से पूरा शहर प्रभावित हुआ था। इसलिए 6 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है कि पूरी दुनिया ये याद रखे कि युद्ध कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, हमें हमेशा शांति भाईचारे के साथ रहना चाहिए। बच्चों अब बात करते हैं 7 अगस्त को, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। बच्चों आप जो सुंदर कपड़े पहनते हैं और आपकी मम्मी जो सुंदर सुंदर साड़ी पहनती हैं, इन्हें बनाने वाले हमारे मेहनती बुनकर होते हैं। वो मशीन से नहीं बल्कि अपने हाथों और हथकरघों की मदद से सुंदर कपड़े तैयार करते हैं। उनकी कला को सम्मान देने के लिए हम ये हथकरघा दिवस मनाते हैं। और अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे बच्चों, ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने देशवासियों से कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद तो पूरे देश में आज़ादी की आवाज़ और भी बुलंद हो गई। लोगों ने हिम्मत, एकता और अहिंसा के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसी आंदोलन ने भारत की आज़ादी की राह को और मजबूत बनाया। बच्चों ये तीनों दिन हमें बहुत सुंदर सीख देते हैं कि हमें अपने देश की एकता को बनाए रखना चाहिए और हमेशा देश में शांति भी बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये ज़रूरी संदेश। बच्चों आप बिना खाना खाए कुछ घंटों तक तो रह सकते हैं और बिना पानी के भी कुछ समय तक रहा जा सकता है, लेकिन बिना हवा के हम केवल कुछ ही मिनट जीवित रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों सांस लेने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, और वो हमें कौन देता है? वो हमें देता है पेड़। तो आज हम जानेंगे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं। बच्चों पेड़ों की हरी पत्तियां, दिन में सूरज की रोशनी, मिट्टी से मिला पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस अद्भुत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब पेड़ अपना भोजन बनाते हैं तब वो हमारे लिए एक अनमोल उपहार देते हैं, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हमारे सांसों को चलाती है। हम सांस लेते हैं और सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर।

छोड़ते हैं। पेड़ उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके फिर से ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरह पेड़ और इंसान एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। और बच्चों, पेड़ों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि हवा को भी स्वच्छ रखते हैं, गर्मी कम करते हैं, वर्षा लाने में मदद करते हैं और पक्षियों और जानवरों को रहने को घर देते हैं। इसलिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और कभी उन्हें बिना कारण नहीं काटना चाहिए। बच्चों याद रखिए, एक पेड़ हजारों सांसों का आधार होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप भी अपने बच्चों को, अपने साथियों को एक सुंदर सा पौधा गिफ्ट करें, और मम्मी पापा भी अपने बच्चों को एक सुंदर सा पौधा गिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें बताएं कि उनकी देखभाल कैसे करें वो। और इससे अच्छा फ्रेंडशिप का जो गिफ्ट है वो कोई भी नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। और बच्चों, अगर आप लोगों को कोई कविता लिखने का शौक हो, कोई पोयम लिखने का शौक हो, तो वो आप लिखकर हमें भेज सकते हैं और हम अपने कार्यक्रम में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। और बच्चों, हम चाहते हैं कि, वैसे तो ये कार्यक्रम आप बच्चों का है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा और जो आपके घर में जितने बड़े हैं वो भी हमारा कार्यक्रम सुने और अपना सुझाव हमें ज़रूर लिखकर भेजें। तो चलिए बच्चों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हम अपने कार्यक्रम महान विभूति क्रम में एक ऐसे महान भारतीय के बारे में बात करेंगे जिनकी बदौलत आज हमारा तिरंगा पूरी दुनिया में भारत की शान बनकर लहराता है और जिनका नाम है पिंगली वेंकैया। आपका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो एक महान देशभक्त, विद्वान और कृषि वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जनक के रूप में जाना जाता है। आपने देश के लिए एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो पूरे भारत की एकता, शांति और साहस का प्रतीक बने। आपके द्वारा तैयार किए गए ध्वज के आधार पर आगे चलकर हमारे तिरंगे का स्वरूप विकसित हुआ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। बच्चों, हमारे तिरंगे के 3 रंग हमें बहुत सुंदर संदेश देते हैं। केसरिया रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग शांति और सत्य का, और हरा रंग समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक है। बच्चों, बीच में बना अशोक चक्र हमें हमेशा आगे बढ़ने और कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है। बच्चों, वेंकैया जी ने हमें सिखाया, यदि मन में देश के प्रति प्रेम और सेवा की भावना हो तो एक व्यक्ति भी पूरे राष्ट्र के लिए अमूल योगदान दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, जब तिरंगे की बात चली रही है, तो क्यों ना एक तिरंगे पे ही एक गाना सुन लिया जाए।

सबको इंतजार होगा अब कहानी का। हमें पता है बच्चे भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कहानी का। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और सुनते हैं कहानी आया बदलाव। बच्चों, शांति वन में रहने वाले जानवर अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उस जंगल का नाम भले ही शांति वन था लेकिन वहां शांति कमी देखने को मिलती थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते थे। हेलमो हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर था। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए करता था और वहीं फॉली लोमड़ी चालाक थी और अक्सर अपने बातों से दूसरों को भड़का देती थी। और सोनू गधा जिद्दी था। एक बार जो ठान लेता वह कभी नहीं बदलता था। और मेंटी मंदर अक्सर दूसरों की बात काटता और झगड़ा बढ़ा देता। एक दिन सुबह हाथी जंगल के बीचों बीच तालाब के पास अपनी सूंड से पानी उछाल रहा था। तभी लोमड़ी दौड़ती हुई वहां आई और बोली, अरे तुम तालाब का सारा पानी अपने खेल में इस्तेमाल कर रहे हो, हमें भी तो पानी चाहिए। एल्मो ने जोर से कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, पानी पर पहला अधिकार मेरा है। तभी वहां पर गधे महाराज पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, ताकत का फायदा जंगल में सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तभी मेंटी पेड़ से नीचे कूदा और हंसते हुए बोला, अरे भाइयों तुम तो लड़ते रहते हो, तब तक तो मैं कुछ फल खा लेता हूँ। यह सुनकर फॉली लोमड़ी ने उसे ताना मारा, मेंटी तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, तुम्हें तो बस मौज मस्ती और खाना चाहिए। बस फिर चारों लड़ने लगे। कई जानवर इधर उधर इकट्ठा हो गए। कुछ ने एल्मो हाथी का साथ दे रहे थे तो कुछ लोल गधे महाराज का, और देखते देखते पूरे जंगल में शोर मच गया। तभी वहां बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ कोकी वहां आया और उसे देखकर सब जानवर चुप हो गए। कोकी ने कहा, मेरे बच्चों अगर तुम इसी तरह लड़ते रहोगे तो जंगल में शांति कैसे रहेगी। तभी फॉली लोमड़ी ने पूछा, लेकिन हम लड़ाई कैसे रोकें, कोई तरीका तो होना चाहिए। तभी कोकी बोला, तुम लोग खुद ही फैसला कर लो, काम बांट लो और एक दूसरे का सम्मान करो। तभी गधे महाराज ने गर्व से कहा, हम जंगल में साथ रहने के लिए कुछ नियम बनाएंगे ताकि कोई किसी के साथ जबरदस्ती ना कर सके। बच्चों, एल्मो हाथी ने सोचते हुए अपने कान फड़फड़ाए और फिर बोला, ठीक है हम मिलकर नियम बनाएंगे, लेकिन फैसला कौन करेगा। तभी वनवासी सोचने लगे, वे एक पेड़ की छाया में इकट्ठे बैठ गए। तभी हाथी महाराज ने कहा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हमारी शांति तो छिन जाएगी, चलो तालाब का पानी मिलकर बांट लेते हैं। तभी गधे महाराज बोले कि सिर्फ पानी ही नहीं, खाना भी बराबर बांटना जाना चाहिए, किसी को लालच नहीं करना चाहिए। तभी फॉली लोमड़ी ने कहा, हम यह भी कर सकते हैं। तभी पेड़ पर बैठे कीनो कौवे ने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, लेकिन भालू महाराज ने उसे बीच में ही रोक दिया। हमने तुम्हारी कांव कांव की आवाज बहुत सुन ली, अब थोड़ी देर चुप रहो। यह सुनकर कीनो बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, अगर आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो बोलने का अधिकार तो सभी को होना चाहिए, इसलिए हमें भी बोलने का हक है, हम भी इस जंगल के निवासी हैं। यह सुनकर सब चुप हो गए और सभी को कीनू की बात भी पसंद आई। फिर जंगल वासियों ने मिलकर नियम बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने तालाब का पानी बांटने का समय तय किया। अब हाथी महाराज घंटों तालाब में नहीं रह सकते थे और ना ही पानी बर्बाद कर सकते थे। और भोजन के लिए एक साझा जगह बनाई गई, जो कोई भी दूसरों की मदद करता था उसे धन्यवाद कहा जाता था, और सभी को अपनी बात रखने के लिए समान अवसर देने की बात भी कही गई, चाहे वो पक्षी हो या जानवर। एल्मो हाथी बोला, वाह अब हम सब साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई नियम तोड़ देगा तो क्या करेंगे। तो कोकी ने सिर हिलाया और कहा, अगर किसी को लगता है कि उसका अधिकार छीना जा रहा है तो वह सबके सामने बात रखे, फिर हम सब मिलकर उसका कोई हल निकालेंगे। यह तुम्हारा हक है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है। फिर वाली लोमड़ी जो थी वो बिल्कुल उत्साहित होकर बोली, मतलब सबकी बात सुनी जाएगी, यही एक साथ रहने का असली आनंद है। लो बेचारे गधे महाराज ने भी गंभीरता से कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हम सब मिलकर उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे।
मेंटी बंदर ने भी ताली बजाते हुए कहा, वाह, अब जंगल में रहना सचमुच मजेदार हो गया है। बच्चों, धीरे धीरे जंगल बदलने लगा। अब सभी तालाब का पानी बांटते थे, कोई किसी से छीना झपटी नहीं करता था। खाने की जगह पर सब अपनी बारी का इंतजार करते थे। छोटे जानवर को पहले बुलाया जाता था, जो भी दूसरों की मदद करता था उसका नाम लेकर उसकी प्रशंसा की जाती थी। कुछ ही दिनों में शांतिवन में झगड़े कम हो गए, अब जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन एल्मो हाथी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, कोकी ने हमें सिखाया कि हम सब बराबर हैं, हर किसी को अधिकार है कि वह सुरक्षित रहे, उसकी बात सुनी जाए और खुशी से जी सके, तो क्यों ना हम इसका जश्न मनाएं। और बच्चों, फिर सबने इस संविधान इस दिन को मिलके मनाया और इन्होंने इस दिन को एक डे के रूप में घोषित कर दिया। और सभी ने तय किया कि हम हर साल जंगल में उस दिन मिलकर अपने अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की चर्चा करेंगे। और उन्होंने एक शानदार समारोह का आयोजन किया, जहां सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। अब बच्चों, इस तरह सभी को सीख मिली कि खुशी ताकत में नहीं है, बल्कि साथ रहने में है, किसी को परेशान करने में नहीं है, और सबके साथ रहने में है, और सबकी परेशानियों को साझा करने में है। अब बच्चों, इस तरह सभी जंगल के जानवर जो हैं वो बिल्कुल साथ में रहने लगे, और उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं करी। और उस दिन के बाद शांतिवन सचमुच बदल गया। हर जगह हर कोई खुलकर बोल सकता था, कमजोरी की देखभाल की जाती थी, कोई किसी पर दबाव नहीं डालता था, सब मिलकर अपनी खुशियां बांटते थे, और हर साल सारे जानवर मिलकर ये जश्न मनाते थे। तो प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप पत्रों द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। और आपसे इस उम्मीद से कि आपसे अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और खूब अच्छे से अपने फ्रेंडशिप फ्रेंड के साथ अपने आज डे को सेलिब्रेट करें, और खूब अच्छे से पढ़ाई भी करें। तो फिर चलिए, आप अपनी दीदी को इजाजत दीजिए। जय हिंद।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक पसंदीदा कार्यक्रम पाल वाटिका। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:45 हो रहे हैं। अब सुनेंगे आप कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी फरीना। श्रोताओं, कार्यक्रम को आज हमने सजाया और संवारा है कुमाऊनी लोकगीतों से, जिसको आवाज दी है सुरेंद्र राजेश्वरी ने। तो चलिए कुमाऊनों की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और पहाड़ों की ठंडी हवाओं और लोक जीवन की सादगी का आनंद लेते हैं इन लोकगीतों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कुमाऊं की लोक धुनों में प्रेम, अपनापन और पहाड़ों के सहज जीवन की झलक बड़ी ही खूबसूरती से इन लोकगीतों में नजर आती है। ऐसी ही मिठास और लोक भाव से हमने आज सजाया है अपना ये कार्यक्रम। तो लीजिए, आनंद लीजिएगा अगले लोकगीत का।

पहाड़ों की झरनों की कलकल, लोक जीवन की सादगी और रिश्तों की मधुरता, इन्हीं रंगों को अपने सुरों में समेटे हुए है हमारे कार्यक्रम का ये अंतिम अगला कुमाऊनी लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ आज का लोकधारा कार्यक्रम अब बस यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।
1: Good afternoon. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Kerala. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts

0: mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said, young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
1: Nasha केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and addressed by Prime Minister Narendra Modi. Most of the students from Punjab-based universities, many of whom were NSS volunteers also, were of the opinion that it is the collective responsibility of the society to promote such campaigns for drug-free country. Piyush Saini from Lovely Professional University, Phagwara, said that they have taken a pledge for Nasha Mukt Bharat.
2: Today, under the Nasha Mukti Yuva Abhiyan organized by Prime Minister Shri Narendra Modi, I, along with my friends and fellow students, have taken a pledge towards a drug-free India. Now, our responsibility is to not only stay away from drugs ourselves, but also to encourage people around us and our relatives to join this mission and move forward towards a developed India.
0: President Draupadi Murmu flagged off a run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion.

0: Pakistan for threatening war against India if Islamabad's demands on the Indus River system are not met. Ambassador Quatra stated that threatening war against India to distract from its internal problems has become a standard policy option for Islamabad. On to sports. In badminton, India's Tanvi Sharma claimed her maiden BWF World Tour title, defeating Vietnam's six-seeded Nguyen Thu Linh 21-16-21-16 to win the Taipei Open Super Women's Singles title today. 17-year-old Tanvi became the youngest Taipei Open champion, surpassing Taiwan's Tai Tzu Ying. She is also the first Indian woman to win the title since Saina Nehwal in 2008. At the Glasgow Commonwealth Games, India's medal hunt enters the final day with judo and track cycling offering the last opportunities to add to the tally. Avtar Singh in the men's 100kg, Yash Gangas in the men's plus 100kg and Ishroop Narang in the women's 78kg category will lead India's judo challenge, while Ronaldo Lak Tong Jam will compete in the men's 1000m time trial in track cycling. Paratrack cycling events are also scheduled on the closing day. A report.
1: India enters the final day in fourth place in the medal table with 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. After its most productive day of the Commonwealth Games, led by record 7 gold medals in boxing, the boxers produced India's best ever Commonwealth Games campaign in the sport, topping the medal table with 7 gold and 3 silver medals. Jasmine Lamboria, Preeti Pawar, Priya Ghangas, Sakshi Chaudhary and Arundhati Chaudhary won women's titles, while Sachin Sivach and Ankush Pankaj secured gold in the men's event. Olympic medalist Lovlina Borgohain settled for silver in the women's 75kg category, while Jadumani Singh and Narinder Barwal also finished runners-up in their respective men's weight classes. India's judokas also scripted history, winning 4 medals in the country's best ever Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the Games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para-athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver and 2 bronze. Their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashwani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continued to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. U.S. President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open, and in Commonwealth Games, India enters the final day with fourth place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया. नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए. केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार. बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन. भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी की डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
2: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी अहमदाबाद।
2: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माही, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास

0: और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंघास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र ध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अपराहन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। एक और अनेक सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराहटे बांटना भी एक कला है। मुस्कुराहटे बांटना भी एक कला है। हर किसी के हिस्से में ये दौलत नहीं आती। जो अपने फन से रोतों को भी हंसा दे, जो अपने फन से रोतों को भी हंसा दे, ऐसी अदाकारी हर किसी के नसीब में नहीं आती। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है ऐसे ही एक कलाकार पर जिसने अपने हुनर से हमें हंसाया, गुदगुदाया और अपना फिल्म सिनेमा में एक अलग मकाम बनाया। हंसी और बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीतने वाले इस हास्य अभिनेता का नाम है सुनील ग्रोवर। कल यानी 3 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे सुनील ग्रोवर ने फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत साल 1998 में फिल्म प्यार तो होना ही था से की थी, जिसमें आपने निभाया था नाई तोताराम का किरदार, जो गलती से अजय देवगन की मूछें काट देता है। और तो चलिए सुनते हैं इसी सीन के बाद होने वाला ये प्यारा सा गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में।

समीर के लिखे गीत और जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक को फिल्म प्यार तो होना ही था में। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे सुनील ग्रोवर की। सुनील ग्रोवर को अभिनय क्षेत्र में लाने का श्रेय दिवंगत हास्य कलाकार जसपाल भट्टी को जाता है और रंगमंच की मजबूत नींव ने उनके भीतर के कलाकार को सवारा और निखारा, जिसमें उन्होंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा के शो में गुत्थी, रिंकू देवी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों से हंसा हंसा कर सबके पसंदीदा बन गए सुनील ग्रोवर। इसके अलावा उनका मिमिक्री करने का अंदाज भी काफ़ी प्रभावशाली होता है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान, सबकी मिमिक्री करना और फिर हमें हंसाना उन्हें बखूबी आता है। आपको साल 2008 में आई हार्ट टचिंग मूवी गजनी तो याद ही होगी और इस फिल्म में कल्पना और संजय सिंघानिया का प्यार भरा रिश्ता भी याद होगा। तो आपको वो भी याद होगा कि इस कहानी में संपत का किरदार निभाया था सुनील ग्रोवर ने। जब कल्पना नकली संजय सिंघानिया बनाने की कोशिश करती है उनको और संपत बने सुनील ग्रोवर ने अपनी इस छोटी सी भूमिका से हमें मुस्कुराने की वजह दे दी थी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

0: बैनी दयाल श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे गजनी फिल्म का ये गीत। धुन तैयार की थी जतिन ललित ने और गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: इस समय आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक का, और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर पर। सुनील ग्रोवर एक ऐसा नाम जिनका नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुनील ग्रोवर का रेडियो से भी खास रिश्ता रहा है। रेडियो मिर्ची पर उनका हंसी का फव्वारा नाम का प्रोग्राम काफी फेमस रहा है। मंच हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो या सिनेमा, हर जगह उनका अभिनय अपनी तरफ हमें खींच ही लेता है। और अब भी वक्त हमें खींच रहा है उन्हीं की फिल्म के गीत की तरफ, जिसमें आपने निभाया श्रद्धा कपूर के पिता पीपी खुराना का रोल, और ये फिल्म है बागी।

बागी फिल्म में आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर को। संगीत रचना थी अमजद नदीम की और गीत की रचना थी शब्बीर अहमद की। श्रोताओं, सुनील ग्रोवर केवल हमें हंसाते नहीं बल्कि अपनी गंभीर और भावनात्मक भूमिकाओं से उतना ही प्रभाव छोड़ते हैं जितना हंसाकर। चाहे फिर बात उनकी फिल्म गब्बर इज बैक की हो, हीरो पंती की हो, बागी की हो, गजनी की हो, जवान की हो या फिर जिला गाजियाबाद की, हर फिल्म से वो अपना ध्यान, अपने किरदार से हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म

गीत यानी आपको लेकर चल रहे हैं हम जिला गाजियाबाद, जिसमें उन्होंने निभाया है फकीर चंद बैसला का किरदार, जो फौजी के खास लोगों में से एक होते हैं। तो आनंद लीजिएगा मोहित चौहान तुलसी कुमार की आवाज में जिला गाजियाबाद के इस गीत का।

मोहित चौहान और तुलसी कुमार को आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद में, और कार्यक्रम केंद्रित है सुनील ग्रोवर पर। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, सुनील ग्रोवर अपनी सादगी और सहज अदायगी और बेहतरीन हास्य अभिनय के कारण सबके दिल में तो बसे ही हैं, लेकिन आपको साल 2018 में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने के लिए ITA अवार्ड फॉर स्पेशल मेंशन कॉमिक आइकन से सम्मानित किया गया था। आने वाले समय में भी हमें आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप हमेशा मुस्कुरा

आते रहें और सबको हंसाते हुए अपनी सफलता को और ज्यादा बढ़ाएं। तो श्रोताओं, आपको गुड बाय कहने से पहले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं गुड बाय फिल्म का ये गीत, जिसको आवाज दी है अभिजीत श्रीवास्तव ने, संगीत रचना है अमित खन्ना की और गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने। तो देते हैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं इस गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, फिल्म गुडबाय के इस खूबसूरत गीत के साथ आपसे विदा लेने का भी वक्त आ पहुंचा है। उम्मीद है सुनील ग्रोवर की फिल्मी यात्रा, उन्हीं की फिल्मों के चुनिंदा गीतों का ये सफर आपको पसंद आया होगा। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ दीजिएगा इजाजत। फिर होगी मुलाकात किसी दिन किसी कार्यक्रम में। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के लिए आज हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। पहले बात करते हैं भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना की जिसने लाखों ग्रामीण परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को साकार किया है। जी हाँ, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। श्रोता, एक सुरक्षित और मजबूत घर केवल 4 दीवारों से नहीं होता, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की पहचान भी है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिसके पास अपना पक्का घर नहीं है या जो कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। पात्र लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। योजना के अंतर्गत घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी या कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके साथ ही लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालय, बिजली, स्वच्छ पेयजल और LPG जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इससे ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर बेहतर बनता है और उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण भी होता है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केवल मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब किसी परिवार को अपना सुरक्षित घर मिलता है तो बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और पूरे परिवार का भविष्य अधिक उज्ज्वल बन जाता है। यदि आप या आपके आसपास कोई पात्र ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM की जो ग्रामीण गरीब परिवार

वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने की सुविधा और स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी मदद की जाती है, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ती है और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इस मिशन की एक विशेषता यह है कि यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। आज देश भर में लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। श्रोताओं, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और इस योजना का लाभ चाहते हैं, तो अपने गांव की ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से संपर्क करें। वहां आपको योजना की पात्रता, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने और उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी मिलेगी।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आवश्यक सूचना सुनिए। थाना प्रभारी निरीक्षक थाना सिहोरा जिला बिजनौर से प्राप्त गुमशुदा की सूचना इस प्रकार है। पहली सूचना, गुमशुदा अनामिका उफ अन्नु पुत्री स्वर्गीय गजराज सिंह निवासी अकबरपुर आशा उफ हरोली थाना सिहोरा जिला बिजनौर से 15 जून 2026 सुबह 8 बजे से लापता है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। इसका हुलिया इस प्रकार है, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, नाक कान औसत और लापता होते समय टॉप व काले रंग की प्लाजो, साथ में पैर में चप्पल पहने हुए है। जिस किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा के संबंध में कोई जानकारी मिले तो प्रभारी निरीक्षक सिहोरा को इस नंबर 9454403145 पर जानकारी देने का कष्ट करें। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9454403145। दूसरी सूचना सुनिए, गुमशुदा अर्शी पुत्री मसीता निवासी ग्राम मंझेड़ा शकरू थाना नगीना जिला बिजनौर से 6 जुलाई समय करीब 4 बजे से लापता है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। जिस किसी सज्जन को इसके संबंध में कोई जानकारी मिले वो थाना अध्यक्ष नगीना जिला बिजनौर को 9454403136 इस नंबर पर जानकारी देने का कष्ट करें। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9454403136। सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात्रि 10 बजे, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। अदबी दुनिया के अंतर्गत शाम 7:50 पर कलामे शायर होंगे सुनील साहिल। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा शाहरुख की गाई गजलें। छाया गीत का समय रहेगा शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर अतीक अहमद अंसारी से आप सुनेंगे कहानी, शीर्षक होगा जुम्मन की हार और माँ की पेंशन। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर राहुल यादव सहायक विपणन अधिकारी मेरठ से जितेंद्र कुमार की बातचीत सुनिएगा, विषय होगा किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा वर्षा जल संचयन और गन्ने में सूखी पत्ती कटाई। युवाणी में अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर आज क्रम होगा कुछ खास है आज, शब्दों के शिल्पकार, बात जुबान की, झलकी दिखला जा और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। विधानमंडल समीक्षा आप सुनेंगे कल 8:20 पर, ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। संसद समीक्षा रात्रि 8:00।

पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर, संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10:00। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर सुनेगा बेनू जुयाल के गाए भजन। छाया गीत कल शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर सुनेगा डॉक्टर विद्या सिंह सागर से वार्ता। विषय होगा रसखान के साहित्य में निस्वार्थ प्रेम। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर डॉक्टर दुष्यंत भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ से प्रमोद सिंह की बातचीत सुनेगा। विषय होगा कार्बन फार्मिंग। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा। विषय होगा नए बागों में पौधों की सुरक्षा और फॉर्मर ई रजिस्ट्री। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप, अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, लव स्टोरीज और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में कल शाम 5:00 जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री पावर लूम बुनकर क्रेडिट योजना की। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आज आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो साथी शुमाइला।
1: नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ जैदी और शुमाइला के साथ आपके साथ कार्यक्रम में बनी रहूंगी और आप सभी को मेरा प्यार भरा आदा। तो शुमाइला, आज आपके लिए फिर से एक अजीबोगरीब सवाल लिए बैठी है।
0: ओह यूसुफा, सवाल तुम्हारा हो और अजीब ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें पूछना है, पूछो पूछो, क्या सोच रही हो?
1: अच्छा, मुझे इस पूछना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम हर रोज आकाशवाणी पर लोगों से बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें अपनी दास्तान सुनाते हैं, मगर क्या कभी सोचा है कि जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है?
0: बिल्कुल यूसुफा, बस फर्क इतना है कि आकाशवाणी पर हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं और जिंदगी में हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है।
1: वाह, ये बात तो बहुत खूब कही आपने। वैसे तुम्हें पता है क्या लगता है कि जिंदगी जो है ना, ज्यादा आसान है या फिर रेडियो का प्रोग्राम?
0: मुझे लगता है रेडियो ज्यादा आसान है यूसुफा, कम से कम यहाँ पता होता है कि अगला सेगमेंट क्या है।
1: और जिंदगी?
0: जिंदगी में तो कभी कभी अगला लम्हा भी बिना स्क्रिप्ट के आ जाता है और कुछ भी प्लान करो सब उससे अलग ही जाता है।
1: काफी हद तक तुम्हारी बातें सही हैं। कभी कोई मुलाकात हमारी कहानी बदल देती है, कभी कोई जुदाई, और कभी कोई छोटा सा लम्हा पूरी उम्र याद रह जाता है ना?
0: और दोस्तों शायद यही तो जिंदगी की खूबसूरती है, अगर हर चीज पहले से ही लिखी होती हो तो फिर इंतजार किस बात का होता।
1: और उम्मीद?
0: उम्मीद तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो पर कोई अनजान आवाज सुनकर अचानक लगे।
1: अरे, ये बात तो मेरे दिल की थी ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती यूसुफा, कुछ आवाजें सीधा दिल तक पहुंचती है।
1: और शायद इसीलिए आकाशवाणी सिर्फ आवाजों का सफर नहीं है, ये उन लोगों से जुड़ने का जरिया है जिनसे हम शायद कभी ना मिले।
0: बिल्कुल, जैसे जिंदगी में कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं और कुछ हमारी यादों में हमेशा के लिए ठहर जाते हैं।
1: जैसे कि मेरे जहन में ये गीत जो कि अब आप सुनेंगे और शायद आपके ख्याल में भी ठहर गए हो, है?
0: और हमें लगता है कि हम भी ठहर जाते हैं इस गीत के साथ यहीं पर, क्यों यूसुफा?
1: बिल्कुल।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: ओहो, ये सूट भी मेरा टाइट हो गया। अरे सुनते भी हो?
3: जी हाँ बोलो।
2: देखना, जो भी कपड़े पहन रहे हो ना, सब छोटे आ रहे हैं। बताओ अब मैं क्या करूं?
3: ये वाला भी छोटा हो गया।
2: एक काम करो, आपने मुझे नए कपड़े दिला दो अब।
3: अरे तू रुक, मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है। पूछ क्या?
2: बताओ।
3: आइडिया ये है कि जिस डिटर्जेंट से तूने ये सारे कपड़े धोए हैं ना, उसी डिटर्जेंट से तू नहा भी ले, फिर तू भी छोटी हो जाएगी और कपड़े भी फिट आ जाएंगे, है ना बढ़िया?
2: मुंह बंद करो अपना।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किडबैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
6: RBI कहता है,
7: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, आज तो आपको पता ही कि आज है संडे, यानी कि फन डे। फन होता है ना संडे में, तो आज के संडे को और स्पेशल बनाए हैं। तो आपके लिए प्रेजेंट है झलकी। झलकी का टाइटल है बुद्धि सबसे बड़ा गहना है। देखिए, बुद्धि तो है ही सबसे बड़ा गहना। अगर अक्ल ना हो, फिर ज्ञान भी हमारे पास जितना भी होता है वो भी खराब ही हो जाता है, क्योंकि हमें उसका यूज ही नहीं करना आता है ना। तो ऐसी है झलकी, जिसे लिखा है यूसुफा जैदी ने, और प्रतिभागी हैं यूसुफा शुमायला और सचिन शर्मा। प्रस्तुति है शोभी शर्मा जी की। तो आइए सुनते हैं ये झलकी।
2: झलकी दिखला जा, झलकी दिखला जा,
3: झलकी दिखला जा,

0: बहू, अरे ओ बहू, अरे उठ भी जा बहुरानी, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये महारानी अभी तक पुराने तकिए पर कब्जा करे पड़ी है।
1: अरे माता जी, सुबह सुबह क्यों अपनी हड्डियों को दुखा रही हैं आप? थोड़ा आराम कर लो और मुझे भी सोने दो।
0: सोने दूं? तुम्हें पता भी है आज क्या है?
1: हाँ आज पता है, आज 2 तारीख है।
0: अरे बेटा, मेरे बेटे की दुखिया तारीख तो याद है, मगर घर की सबसे बड़ी बात याद नहीं है तुझे।
1: अच्छा चलो, लो उठ गई। अब आप ही बता दो, आज कोई त्योहार है? लोन की किस्त जमा करनी है या फिर आपके घुटनों का टेस्ट होना है?
0: चुप कर, तुझे खबर भी है बिटिया 20 साल की हो गई है तेरी?
1: हाँ माँ, अब वो 21 की भी होगी और उसके बाद 22 की भी होगी।
0: तो कब तक मैं बैठी रहूंगी तुझे उसके हाथ पीले नहीं करने?
1: लो बताओ अम्मा, पिछले महीने तो हल्दी ली थी, अब तो हम कड़ी भी नहीं बनाते हर महीने, तो इतनी जल्दी तो राशन खत्म होने वाला नहीं है। देखो तो हाथ तो पीले हम उसके उसी हल्दी से करा देंगे।
0: ओहो, क्या मंद बुद्धि को लेके आ गई मैं। बिटिया की शादी के लिए लड़का देख लड़का, ये मतलब है मेरा? कब तक बच्ची बनी रहेगी?
1: अच्छा आप ये कहना चाह रही थी।
0: हाँ बाप इसका है नहीं, मैं भी कितने दिन जी लूंगी, और तेरी अकल के तो मैं सदके, बस तो लड़का देख और बाकी सारा काम मैं कर दूंगी।
1: तो आप ही बता दीजिए क्या खूबियां हैं, वरना उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरी जिंदगी ऐसे ही कानून निकालती रहोगी जैसे मेरे में निकालते रहती हो।
0: अरे हाँ बस, और क्या, लड़का अच्छा हो।
1: कितना अच्छा?
0: पैसा होना चाहिए, समझदार हो, लोगों में इज्जत हो, जिसकी बात लोग माने, वो एक आवाज पर लोग इकट्ठे कर ले बस।
1: दामाद चाहिए या कोई मंत्री?
0: अरे बस जो भी हो, अच्छा परिवार हो।
1: ठीक है, आज से शुरू करती हूँ फिर ये प्रक्रिया। देखो आपकी पसंद का दामाद मिलता भी है या नहीं। हे प्रभु, माता जी ने भी क्या क्या शर्तें रख दी। पैसा भी हो, देखने में अच्छा भी हो, जिसकी आवाज पर दौड़े चले आए सब, ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ?
2: आओ आओ खेल देखो, एक इशारे पर सब इकट्ठे हो जाओ।
1: अरे वाह, मिल गया मेरा दामाद, मिल गया मिल गया। अरे मदारी, मेरा मतलब है दामाद जी, आप हमारे घर तो पधारिए।
2: दामाद? मगर क्यों?
1: अरे आप चलिए तो सही। माँ जी, ओ माँ जी, देखो देखो तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करके आई हूँ, ये रहा हमारा होने वाला दामाद।

0: अरे ये कौन है?
1: ध्यान से देखो, पूरे 6 फुट का जवान है। एक आवाज लगाता है तो देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो जाती है। खेल दिखाता है, लोगों को जमा करता है और लोग इस पे पैसा बरसा देते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात, बहुत सीधा है बेचारा। बोलो बेटा, मानते हो ना तुम सबकी बात?
2: हाँ जमुरे, मेरा मतलब जी मैडम।
1: लो बताओ, अब इससे अच्छा लड़का मिलेगा कहीं? है ना?
3: काश भगवान थोड़ी अक्ल भी दे देता तुझे। एक अच्छा समझदार लड़का ढूंढने को कहा था।
1: अम्मा जी, ये तो बताओ, इसमें आखिर कमी क्या है? देखो, भीड़ इकट्ठी कर लेता है, पैसे कमा लेता है, इज्जत भी है, लोग जब ही तो आते हैं, देखो भला।
3: अरे जा, तू तो है ही बेअकल। अरे जा जमादारी बेटा, तू अपना काम कर, तू अपना खेल दिखा। और तुम सब जो ये सुन रहे हो, उनसे निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपनी बेटियों को सिखाओ कि जीवन कैसे चलता है, वरना आप भी इसी ना समझी का शिकार होंगे जैसे कि मैं।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: ये चुनमुन का बच्चा कहाँ से आ गया? इस सिगरेट का क्या करूँ? एक काम कर दो, अपने हाथ में छुपा लेता हूँ।
4: अरे अरे अरे मुनमुन, क्या है तेरे हाथ में? क्या है, कुछ तो छुपा रहा है?
3: मैं नहीं बताऊंगा।
4: बता दे यार, क्या है तेरे हाथ में?
3: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मत बता, मैंने तो देख ही लिया क्या है तेरे हाथ में।
3: क्या है?
4: तेरे हाथ में रेलगाड़ी है ना, है ना, है ना?
3: हाँ, तुझे कैसे पता चला?
4: क्योंकि मैंने तेरे हाथ से धुआं निकलता हुआ देख लिया।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों, अब रुक करते हैं हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जी हाँ, सेगमेंट है शब्दों के शिल्पकार, और इसको पेश करने जा रही है हमारी युवानी साथी यूसुफ अजादी।
3: इंकलाब जिंदाबाद। फुल जोश आ रहा है ना आवाज में? आना ही चाहिए, क्योंकि नारा ही कुछ इस तरह से है, है ना? और ये नारा आपको हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर स्टूडियो में सुनने को मिलेगा, क्योंकि आज है 2 अगस्त और 15 अगस्त आने में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। तो तैयारियां चल रही हैं और ये नारा गूंज रहा है। और ये नारा किसका है, उन्हीं का तो जिक्र करेंगे आज हम हमारे सेगमेंट शब्दों के शिल्पकार में।

जी हाँ, मैं हूँ सुफा जैदी और आप सुन रहे हैं सेगमेंट शब्दों के शिल्पकार। और आज के शिल्पकार हैं हसरत मोहानी। उनका असली नाम है सैयद फजलुल हसन और उन्होंने ही इस नारे का इंतखाब किया। और इनकलाब का असली मतलब क्या है? रिवॉल्यूशन है ना, तो वो यही तो लाना चाहते थे। अब क्या वो करते थे ये तो आप सुनते रहिए और महसूस करते जाइए। ये वो नाम है जिसने अंग्रेजों के सामने कहने की जुर्रत की कि हमें आधा वाला हिंदुस्तान नहीं, पूरा मुकम्मल आजाद हिंदुस्तान चाहिए। वसल की बनती हैं इन बातों से तदबीरें कहीं, आरजुओं से फिरा करती हैं तकदीरें कहीं। पैदाइश इनकी लखनऊ में हुई, सन रहा 1881 और इनका बचपन इनके ननिहाल में गुजरा। फिर इन्होंने 12th किया और पहुंच गए अलीगढ़। वहां पर एक हाथ में पानदान और बड़ा सा कुर्ता पहन कर गए जनाब और पाँव में बड़े बड़े से जूते, तो इनके दोस्तों ने इनका नाम रख दिया खाला अम्मा। उसके बाद ये हुआ कि इनकी हसरतें और आगे गईं। इन्होंने मोर्चा खोल दिया जी अंग्रेजों के खिलाफ। तो कॉलेज में पता चल गया कि इनकी जो शायरी है, इनकी जो बातें हैं, जो इनके लेक्चर हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ हैं। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने इन्हें कॉलेज से निकाल दिया और इन्हें इजाजत दी कि ये कॉलेज नहीं आए लेकिन एग्जाम देने आ सके। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। फिर जनाब का दिल लगा मुल्क की आजादी में और इन्होंने नारा बना दिया इंकलाब जिंदाबाद। फिर इन पर हुआ मुकदमा और फिर इन्हें मिली 2 साल की सजा। और उस सजा में इन्होंने चक्की पीसी और उसी चक्की को पीसते पीसते इन्होंने शेर लिखा, ए मशके सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है शायर की तबीयत भी। हसरत मोहानी की जिंदगी भी बड़ी हसरत है और बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ ये इस कदर क्रांतिकारी के रूप में है कि जेल चले गए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और कह दिया कि हमें हिंदुस्तान जो है वो पूरा का पूरा मुकम्मल आजाद चाहिए। और एक तरफ मोहब्बत में भी इतने हैं कि गजल लिख डाली। और मेरी गारंटी इस बात की है कि ये गजल हर इंसान ने, हर उस बच्चे ने, हर बड़े ने, हर दौर के इंसान ने जरूर सुनी होगी जगजीत सिंह की आवाज में, जो किस तरह से है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का जमाना याद है। बा हजारा इश्तराबो सद हजारा इश्तियाक, तुझसे वो पहले पहल का दिल लगाना याद है। बार बार उठाना उसे जानिब निगाह शौक का, और तेरा गुल्फे से वो आंखें लड़ाना याद है। काश काश वक्त होता और मैं गजल आपको पूरी पढ़कर सुना पाती। हसरत ने स्वदेशी आंदोलन को जब अपनाया तो आपको पता है शिबली नौमानी ने उन्हें क्या कहा? उन्हें कहा कि तुम आदमी हो या जिन, एक तरफ तो तुम शायर बन जाते हो, फिर पॉलिटिशियन और अब बनिए भी बन गए। यानी देख रहे हैं आप उनकी जिंदगी की हसरतें कि जो भी उनका दिल चाहा उन्होंने बनने की कोशिश की, जुर्रत की। उस वक्त में जब हिंदुस्तान गुलाम था उस वक्त में उन्होंने जुर्रत की, और अब तो देश आजाद है, अब हम कितना कुछ करने की सोच सकते हैं अगर उनसे सीख लें तो, है ना। तो हसरत की जिंदगी बहुत ही अजीबोगरीब जिंदगी है और उस अजीबोगरीब जिंदगी में जब आप जुर्रत करते हैं ना तो बहुत सारी हेट भी आपको मिलती है, लोग आपको बुरा कहने लगते हैं। जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि कभी कभी हमें रुसवाई भी मिलती है। तो उस रुसवाई को हसरत ने ऐसे चुटकियों में झेला है, उनको मोहब्बत की हर चरखे में संभाला देने वाली चीज खुद मोहब्बत है ना। तभी तो वो कहते हैं कि कुव्वत इश्क भी क्या शय है होकर मायूस, जब भी कभी गिरने लगा हूं तो संभाला है मुझे। यानी इश्क करने की कुव्वत, हिम्मत जो थी ना उनकी, जब भी वो गिरे हैं तो उनको उसी हिम्मत ने संभाला है। तो आज हमने उनसे क्या सीखा? हमने उनसे सीखा, आरजू तेरी बरकरार रहे, दिल का क्या है रहा रहा ना रहा। यानी कि जब हमें कोई चीज पानी है उससे मोहब्बत करनी है और उससे पाने की आरजू भी करनी है। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, आरजू भी करें, हिम्मत भी रखें कि हाँ मुझे मिलेगी ये चीज, हाँ मैं कर लूंगी पता, ये एग्जाम, ये जॉब के लिए अप्लाई जो किया है, ये इंटरव्यू में मैं क्लियर कर लूंगी या कर लूंगी।

तो हो जाएगा, क्योंकि हसरत ने भी तो यही किया है, पूरी जिंदगी उन्होंने हसरतें की हैं और उन्हें पाने की आरजू भी की है, तभी तो वो बार बार आरजू का जिक्र कर रहे हैं। और एक और खास बात इनकी कि ये जो है ना कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं, इनको उनसे भी बड़ी मोहब्बत है, तो इन्होंने उन्हीं के लिए भी एक नज्म लिखी है जो कि इस तरह से है कि मथुरा की नगर है आशिकी का, है ना, आशिकी, मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्राए सरजमीन गोकुल दारा है जमाले दिलबरी का, बरसानों नंद गांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगाम हयात जाविंदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का, वो नूर सियाया की हसरत सर चश्मा फरागोए आगही का। यानी देखिए यहाँ भी आशिकी से ही है कि आप किसी चीज को चाहें तो फिर उसकी आरजू कीजिए और फिर वो आपको मिल जाएगी। तो ये तो थी हसरत की हसरत भरी कहानी, जिनका नाम है असल सैयद फजलुल हसन, और हमारा सेगमेंट था शब्दों के शिल्पकार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें बताइएगा ज़रूर, और सुनते रहिएगा हमारा सेगमेंट शब्दों के शिल्पकार और हमारा प्रोग्राम युववाणी।

0: हर पल यहाँ जी भर जियो, क्योंकि कुछ पता नहीं कल तो हो या ना हो, लेकिन मगर हम भी हों कि यहाँ स्टूडियो में या ना हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना। और ऐसा भी है कि हम कुछ छोड़ के भी ना जाएं जिससे आपको भी अफसोस हो और हमें भी, है ना। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई लफ्ज़ ऐसा होता है जो हमारे ज़बान पे तो बहुत होता है मगर हमें ये नहीं पता कि वो आया कहाँ से है, उसका सही तलफ़ुज़ क्या है, उसे कैसे हमें बोलना है, तरीका क्या है और उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, है ना। ये बात गौर करने काबिल है वैसे, जैसे सोचो कभी अलग अलग मीनिंग निकल आएगा कि हम सोचना एक लफ्ज़ है, उसका इस्तेमाल किस किस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही चीज़ों को अंदर तक गहराई तक जांचने के लिए हमारा सेगमेंट है बात जुबान से, और उसमें हम एक लफ्ज़ लेते हैं और उसका पूरा जो है उसकी सर्च कर देते हैं, पूरा उसको खोल के रख देते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और इसके क्या क्या मतलब है। और यही सेगमेंट हम आपको अब सुना रहे हैं जिसका नाम है बाज़ुबा से, जिसे पेश किया है शुमायला ने।
1: अल्फाज में छुपी हैं दास्ताने, शब्दों में बसी हैं जज्बात की कहानियां। बोले शब्द जो दिल को छू जाएं, बाज़ुबा से एक नई दुनिया बनाएं। सेगमेंट बात सुबह से। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जान में उतर जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेगमेंट बात जुबान से, आपके साथ हूं मैं शुमायला। और हर बार की तरह आज भी हमारे इस खूबसूरत सेगमेंट में हम शामिल करेंगे एक बेहतरीन लफ्ज, क्योंकि कभी कभी अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो अपने अंदर एक पूरी कहानी, एक एहसास और एक दर्द समेटे होते हैं। ऐसा ही एक लफ्ज है जख्म, जिसे हम अक्सर बोलचाल में जख्म या जख्म कहते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण, सही प्रोनंसिएशन या कहें सही तलफ्फुज जख्म है। जख्म वैसे तो दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है जो उर्दू और हिंदी में भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें डिक्शनरी की तो डिक्शनरी में इसका सीधा सीधा मतलब है चोट, घाव या फिर नुकसान। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे वुंड, ब्रूज, कट, इंजरी, लॉस और हार्म जैसे वर्ड्स से भी जाना जाता है। लेकिन अदब की दुनिया में जख्म सिर्फ जिस्म पर लगी चोट नहीं होता, कभी किसी की कही हुई बात भी जख्म बन जाती है, कभी किसी की बेरुखी, कभी कोई अधूरी मुलाकात और कभी कभी तो अपनों की खामोशी भी दिल पर जख्म छोड़ जाती है। और दोस्तों शायद यही वजह है कि उर्दू शायरी में जख्म सिर्फ दर्द का अल्फाज नहीं, बल्कि इश्क, जुदाई, तन्हाई और जिंदगी के तजुर्बों का इख्तियारा बन जाता है। और शायद इसी एहसास को बड़े सादगी से कहा गया है कि लोग कांटों से बच के चलते हैं

मैंने फूलों से जख्म खाए हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिससे हमें खुशबू की उम्मीद थी उसी से जख्म मिल गया। और शायद यही जिंदगी भी है, हर जख्म किसी दुश्मन से मिले ये जरूरी नहीं, कुछ जख्म तो अपने भी दे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने हमारे उर्दू जबान के जाने माने शायर राहत इंदौरी जी के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने बहुत खूबसूरती से जख्म को बयां किया है। वो कहते हैं कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते आते, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, कि अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। अब देखिए, यहाँ जख्म दिखाई नहीं देता मगर रुखसत होने का दर्द साफ महसूस होता है। वहीं जॉन एलियस आप फरमाते हैं कि जब्त करके हंसी को भूल गया, मैं तो उस जख्म ही को भूल गया, जात दर जात हम सफर रहकर अजनबी अजनबी को भूल गया। यानी कभी इंसान अपने जख्म को इतना छुपाता है कि एक वक्त के बाद उसे खुद भी याद नहीं रहता कि दर्द कहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन शायद हर जख्म का मकसद हमें तोड़ना नहीं होता, कुछ जख्म हमें समझदार बनाते हैं, कुछ हमें खामोश करते हैं और कुछ हमें ये सिखा जाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा बेफिक्र नहीं होता। इसलिए जख्म को सिर्फ दर्द मत समझिए, कभी कभी जख्म हमारी कहानी का वो हिस्सा होता है जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं, लेकिन वही हिस्सा हमें हम बनाता है। और शायद इसीलिए कुछ जख्म दिखाई देते हैं, कुछ सिर्फ महसूस होते हैं और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं मगर अपना निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, यही है जख्म, एक छोटा सा मगर अपने अंदर दर्द की पूरी दास्तान समेटे हुए। तो आज के हमारे सेगमेंट बात सुबह से भी आपके लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, जुड़े रहिए आकाशवाणी अजीबाबाद के साथ।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है
1: कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: और दोस्तों इसी के साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, इंस्टाग्राम आईडी @आकाशवाणी नजीबाबाद, साथ ही हमारे पुराने प्लेस कहानियां आप यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं
0: जो कि है आकाशवाणी नजीबाबाद। और इसी के साथ मुझे यानी यूसुफ जैदी
1: और मुझे यानी शुमाइला को दीजिए कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

0: के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्जी खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो धान की रोपाई से हमारे किसान भाइयों की सबकी छुट्टी हो गई होगी, सबने अपनी धान की रोपाई की पूरी कर ली होगी भैया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें भैया सिंचाई प्रबंधन की, तो भाई देखो धान की फसल हमारी पानी मांग रही थी तो वो हमारे भाइयों का भैया ऊपर वाले ने पूर्ति कर दी भैया। अच्छी बारिश हो गई है, अब जो है 5-6 दिन तक बारिश की आवश्यकता ना हा और भैया सिंचाई की भी आवश्यकता ना हा। साथ ही साथ भैया देखो जो हमारी गन्ने की फसल खड़ी है भाई, उसमें जब अच्छी बारिश हो जा तो भैया घास जम जा यानी कि खरपतवार जम जा, एक बेल हो जाती है बेल, जो कि भैया गन्ने के ऊपर एक छतरी सी बना ले है, ना तो गन्ने को धूप लगन देती ना भैया गन्ने को बढ़न देती है। और साथ ही साथ भाई जो हमारी फसल है, चाहे कितना ही उर्वरक दे लो और कितना ही भैया कोई काम कर लो भैया, वो जो है हमारी फसल नीचे को होती रहे ऊपर को होती नहीं। तो भाई देखो उसका हमें नियंत्रण करना है, तो उसका नियंत्रण हमारे किसान भाई कर रहे होंगे, चाहे स्प्रे कर रहे हों, चाहे भैया श्रमिक लगाकर उसको उखड़वा रहे हों, निकलवा रहे हों। तो भाई देखो हमारे किसान भाई जागरूक हैं और जागरूकता की दृष्टि से वो अपनी खेती किसानी के सारे काम समय से करते रहते हैं। तो भाई जैसे बेल हो जा तो बेल के लिए आप 2,4-D का स्प्रे अपने खेत में करावा, लेकिन भाई हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बरसात में बादल बदली होती रहती हैं, तो मौसम को देखते हुए मौसम साफ हो भैया 4-5 घंटे की धूप अगर मिल जावे स्प्रे के बाद तो बहुत अच्छा होता है, उससे भैया जो हमारा खरपतवार है उस पर उसका पूरा नियंत्रण होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ भाई देखो अगर हम बात करें भैया अपनी फसलों की, तो भाई दिन रात हमारे किसान भाई देखभाल कर रहे हैं, समय समय पर सारे काम कर रहे हैं और भाई अपनी फसलों को टाइम टू टाइम अपने कामों में उपज को भैया तैयार कर कर बाजार में बेचे भी हैं भाई, चाहे बुआई का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे खरपतवार नियंत्रण का हो और चाहे भैया कीट बीमारियों का हो। तो भाई ये सारे काम हमारे किसान भाई समय से करते हैं और नियंत्रण भी सारे समय से कर लेते हैं। और भाई अब देखो कुछ बातचीत करेंगे बरसात के मौसम जो चल रहा है, तो भाई जो आज हम देख भी रहे हैं कि भैया जल है तो कल है, यानी कि पानी को हमें बचाना पड़ेगा, पानी की बर्बादी यदि हम करेंगे तो भाई अपने भविष्य के लिए हम पानी को जो है अच्छा छोड़ कर नहीं जा सकते। तो भाई हम जो है वर्षा का जल का संचयन करना है और वर्षा के जल का संचयन हमें किस तरह से करना है भैया, इस बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें कि भाई वर्षा जल का संचयन क्या है, यदि हम विस्तार से समझें तो भाई ये वो प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के जल

0: को एकत्र करके भविष्य में उपयोग के में लाया जाता है या उपयोग के लिए संग्रह किया जाता है। भाई देखो, इस जल का उपयोग सिंचाई, घरेलू कार्यों, भूजल पुनर्भरण और पेयजल की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। भाइयों, यदि हम बात करें इस जल को संग्रहित हम कैसे करें, तो भाई आप वर्षा के जल को टैंक में संग्रहित कर सकते हैं। टैंक बना लें, छत का जो पानी गिरा है भैया उसको जो है टैंक में आप संग्रहित कर लें। एक ऐसी इस तरह का एक पाइप लगा दें जो कि भैया आप टैंक पक्के बना लें, या भैया प्लास्टिक के जो टैंक आते हैं उनको रख लें, तो भाई उसका संग्रह हो जाएगा। दूसरे भाई, आप जो है ऐसे रिचार्ज कुएं बना सकते हैं गांव-गांव, जिससे भैया जो वर्षा का जल होता है उसमें जावो वो, और भैया नीचे जमीन में वो भूजल चला जाए, भूमि में चला जाए वो, और जिससे भैया जल के स्रोत बढ़ते हैं। जो हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं, जमीन का जल लेते हैं, तो भाई उससे जो है उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। साथ ही साथ भाई जो हमारे जलाशय हैं, यानी कि तालाब हैं, छोटी झील हैं, भाई उनमें भी हम जो है वर्षा का जल का संचयन कर सकते हैं। आप देखते हैं तो भैया उनकी हमें चारों तरफ से मेड़बंदी करनी आवश्यक हो जाती है। आप सभी तालाब की मेड़बंदी आप सभी ने कर ली होगी समय से, और वर्षा का जल का संचयन भी हमारे किसान भाई कर रहे होंगे। इससे यानी कि वर्षा जल को संग्रहित करने से भूजल स्तर में वृद्धि होती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहता है, बाढ़ और जल भराव की समस्या नहीं दिखाई देती। भाइयों देखो, जब जल कहीं नहीं बहने का तो देखो भैया प्रदूषण नहीं होने का, तो पर्यावरण संरक्षण भी होता है, और साथ ही साथ जल संसाधनों का जो उपयोग है वो हमारे किसान भाइयों का पूरा होता है। तो इस तरह से यदि आप भैया वर्षा के जल का संचयन करेंगे, तो भाई आप अपने भविष्य के लिए एक अच्छा जल का स्रोत छोड़कर जाएंगे, ताकि भैया वो भी हमारे जो बच्चे हैं वो भी भैया खेती कर सकें, और खेती करके अपने बच्चों को पाल सकें जिस तरह से हम पाल रहे हैं, तो भाई उसी तरह से अपने बच्चों का जो है भरण पोषण कर सकें। तो भाई देखो, हमें वर्षा के जल का संचयन करना है, और भाई वर्षा के जल की बात भी करेंगे साथ ही साथ अपनी फसलों की भी बात करेंगे। लेकिन भाई इस समय कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो भाई संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भैया देखो, हम वर्षा जल संचयन की बात कर रहे थे, वो तो हमने कर ली। अब भाई देखो, उससे पहले हम गन्ने की बात कर रहे थे, तो भाई गन्ने में देखो इस समय खरपतवार उग जाते हैं, वो तो हमने थोड़ी सी बात अपने किसान भाइयों से कर ही ली है। लेकिन भाई गन्ना इस समय देखो बड़ा हो गया, यानी कि भैया हमारा जो लंबाई होती है, आदमी की लंबाई होती है लगभग 5-6 फीट की, भैया उससे हमारा गन्ना जो है बड़ा हो गया, और गन्ने में जब आदमी खड़ा हो जाता तो दिखाई नहीं देता। तो भाई इस समय जो सूखी पत्ती नीचे की हो जाती हैं, तो भैया उन्हें या तो हम दाती से या भैया हाथों से उन्हें हम उतार दें यदि, तो भैया उसका गन्ने का जो है बढ़वार अच्छी होती है। साथ ही साथ भैया बरसात में देखो जो हवा चले गए है, तो भाई हवा भी हमारे गन्ने को जो है बेकार नहीं करती, यानी कि गिराती नहीं है। तो भाई कुछ बातचीत देखो, गन्ने की सूखी पत्ती की कटाई के संबंध में यदि हम

हैं, तो भाई इस समय देखो लाभ भी है क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा, और अगस्त के महीने में भैया हम अपने गन्ने की फसल में सूखी पत्ती यदि हम काट दें या उतार दें उसे, तो भाई हमारे गन्ने की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हमारा गन्ना गिरने से भी बच जाएगा। यानी क्योंकि जो हवा चलेगी, हवा देखो दो तरह की चलती, एक तो भैया पूर्वा चला एक पछुआ चला है, तो भाई यदि पछा से चल रही तो पछुआ चलेगी, और पूरब से चल रही है भैया तो पूर्वा चलेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, हम गन्ने की बुआई भी हमारे किसान भाई पूरब पछा को ही करते हैं। तो भैया देखो यदि गन्ने की आप पत्ती उतार देंगे तो हवा भैया बिना रुके किसी बिना किसी अवरोध के हमारे खेत से पार हो जाएगी, जब भैया गन्ना हमारा सीधा खड़ा होगा और भैया पत्ती होने की नहीं, क्योंकि जब पत्ती होती है तो हवा हमारी जब निकलती है खेत को तो वो रुकती है और गन्ने उससे गिरते हैं, क्योंकि बारिश से जमीन जो है वो भैया मुलायम हो जाती है पानी से, तो भाई गन्ना गिरने की संभावना रहती है। और गन्ना गिरने के बाद हमारे किसान भाई जागरूक हैं, उन्हें सभी को पता है कि भाई कितना नुकसान हमारे किसान भाइयों का गन्ने की उपज में होता है। भाई देखो 30 से 35% नुकसान गन्ना गिरने से हमारे किसान भाइयों का हो जाता है। देखो वजन घट जाता है हमारे गन्ने का, क्योंकि गन्ने की जो नोड होती हैं, जड़ें होती हैं, जो गांठें होती हैं, उनमें भैया गिरने से भैया वो जमीन को पकड़ लेती हैं और उसमें से जड़ें निकल जाती हैं, जिससे भैया गन्ने के वजन में फर्क पड़ता। दूसरे भाई चूहा हमारे गन्ने को काफी नुकसान पहुंचा देता है जब गिर जाता है गन्ना। तीसरे भाई जो देखो जंगली जानवर हैं, जैसे भैया गिद्दड़ है या अन्य जानवर हैं, भैया वो गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखो गिरे हुए गन्ने को ही ये जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि भैया खड़े गन्ने को। खड़े गन्ने में यदि चूहा लग भी गया थोड़ा बहुत भैया जड़ों को ही नुकसान कर सके, भाई गन्ने को नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह से भैया हम जो है गन्ने की सूखी पत्तियों की कटाई करनी है, जिससे भैया हमारा गन्ना ना गिरे। दूसरे भाई एक काम और करना कि यदि हम इस महीने में गन्ने को बंधवा दें तो भाई देखो सोने का काम हो जाता है। तीसरे भाई देखो सूखी पत्ती कटने से एक लाभ और है, छोटा सा भाई लाभ क्या है, देखो छोटा सा तो है लेकिन भैया लाभ इतना बड़ा है कि हमारे किसान भाइयों की काफी लागत कम हो जाती, उससे जो है हमारे खेत में मल्चिंग हो जाएगी। मल्चिंग होने से भाई वो जो पत्ती होती है वो गन्ने की, भैया बारिश पड़ेगी और गले सड़ेगी तो भैया वो जमीन में हमारे ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती है, यानी कि हमारे खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, और उपजाऊ के साथ साथ भैया जो हम अगली फसल अपने खेत में लगाते हैं तो भाई उसका उत्पादन भी भैया हमारे किसान भाइयों को अच्छा मिलता है। उत्पादन इसलिए अच्छा मिलता है क्योंकि भैया उसमें ह्यूमस की, जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने से भैया हम उर्वरकों की मात्रा अपने खेत में कम देने की आवश्यकता होती है। जो आज हमारे किसान भाई इतना उर्वरक डाल रहे हैं, चाहे यूरिया हो, चाहे भैया डीएपी हो या एनपीके हो, या भैया कई तरह के उर्वरक चल रहे हैं बाजारों में, भैया कई तरह के उर्वरक हमारे किसान भाई डाल रहे हैं, यानी कि हमारे किसान भाइयों की जेब पर अतिरिक्त भार इन उर्वरकों के खरीदने में पड़ रहा है, तो भाई उससे हमारे किसान भाइयों को बचत हो जाएगी। तीसरे भाई जो हम सिंचाई अपने खेत में भैया बार बार कर रहे हैं ना, तो मल्चिंग करने से सिंचाई करने की आवश्यकता हमें कम पड़ेगी, क्योंकि खेत में जब मल्चिंग हो जाती है तो भैया जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य की लाइट होती है, वो हमारे खेत की मिट्टी पर भैया सीधे नहीं पड़ती, वो पत्ती पे पड़ेगी और पत्ती के नीचे मिट्टी होती है, तो मिट्टी तक पहुंचने में भैया उसे काफी समय लग जाता है, इतना भैया सूरज ढल जा। तो भैया देखो मिट्टी की जो नमी है वो लंबे समय तक संरक्षित रहती है, खेत में जो है सिंचाई करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और भाई एक लाभ और हमारे किसान भाइयों का है, लाभ ये है कि भैया खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं, जब मिट्टी में नीचे हवा नहीं लगेगी तो भैया खरपतवार नहीं उगने के, वो नीचे के नीचे ही रह जाएंगे, क्योंकि कोई सी भी चीज हमारे खेत में, कोई सी भी फसल उगा, खरपतवार उगा, तो भैया वो जो है सूर्य के प्रकाश में उगते हैं, सूर्य का प्रकाश जब भैया खेत की मिट्टी को लगेगा तो भाई देखो कोई सा ही पौधा हो वो हरा होता है, हरा यानी के पत्ते उस पर हरे होते हैं, तो भाई वो जो है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिससे भैया पौधे की बढ़वार होती है। तो भाई जब हमारे खेत में पत्ती बिछी हुई रहेगी, मल्चिंग हुई रहेगी, तो भैया उसको जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो खरपतवार हमारे खेत में भैया उभारा ना लेने के, बढ़ने के नहीं है। तो इस तरह से भैया हम जो है मल्चिंग का काम एक छोटा सा काम है, लेकिन भाई लाभ हमारे किसान भाइयों को इतने हैं कि भाई यदि गिनवा में तो भैया देखो समय थोड़ा पड़ जाता है। देखो तो सूखी पत्तियों को हमें गन्ने की आवश्यक रूप से काटना चाहिए, और भाई दूसरे गन्ने की लंबाई भी बढ़ती है। तीसरे भैया देखो फसल जो भी हम बोते हैं अपने खेत में अगली वाली, उसको भी लाभ मिलता है। तो इस तरह से यदि आप गन्ने की पत्तियों की कटाई करेंगे

0: तो भैया आपको अच्छा लाभ मिलेगा और लाभ के साथ साथ आपको उपज भी मिलेगी, क्योंकि गन्ना जब गिरने का नहीं है तो उपज आपकी बढ़ेगी, क्योंकि हम जो है हमारे किसान भाइयों को जो है गन्ने का पैसा तभी उप मिला है जब गन्ने का वजन हो। तो गन्ने में जब वजन मिलेगा तो भैया हम जो है उपज अच्छी मिलेगी, आमदनी हमारे किसान भाइयों की होगी। हम भैया खेत में गन्ने ज्यादा होने से आमदनी नहीं होती, हम तो भैया वजन का पैसा मिले, तो वजन हमारे किसान भाइयों का तभी बढ़ेगा जब हमारी फसल जमीन पर नहीं गिरने की लगने की नहीं है। और भाई साथ ही साथ देखो, जिन भाइयों की फसल अगर गिर गई हो तो भैया वो जो है समय से अपनी फसल को, अभी देखो गन्ने ने बैंड नहीं लिया होने का, तो भैया उसको खड़ी करवा के और बंधवा दें समय से, और अपनी फसल को भैया समय से जमीन से लगने से बचा लें। तो भाई देखो, ये तो कुछ बातचीत हो गई गन्ने में सूखी पत्ती की कटाई के लाभ के संबंध में। अब भाई देखो, हम बात कर ही रहे हैं कि किसानों की उपज किस तरह से बढ़ सके है, तो भाई हमारे किसान भाई अन्य फसलें भी अपने खेतों में लगाते हैं, चाहे गन्ने के साथ साथ भैया दलहन लगा लें, या भैया आलू की लगा लें, या सब्जियों की लगा लें, या अन्य कोई फसल लगा लें, तो उनको हमारे किसान भाई भैया बेच कर भैया लाभ कमाम है, साथ ही साथ अपनी जो आय है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो भाई उन जो फसल है हमारी, जो अन्य फसलें हैं, चाहे भैया सब्जियों की हों, चाहे भैया दालों की हों, और चाहे भैया मसालों की हों, तो भाई उनको हम हमारे किसान भाई, या चाहे खाद्यान्न की हों, तो उन्हें हमारे किसान भाई किस तरह से बाजार में बेच सके हैं जिससे उन्हें अच्छा मूल्य मिल सके। तो इस संबंध में हमने एक बातचीत करी थी भैया पिछले दिनों, स्थल रिकॉर्डिंग करी थी, किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन। भाई जानकारी दे रहे हैं श्री राहुल यादव, जो कि सहायक विपणन अधिकारी मेरठ मंडल हैं। तो आइए सुनते हैं ये उनसे की गई बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच में हैं श्री राहुल यादव, जो कि सहायक कृषि विपणन अधिकारी मेरठ मंडल हैं, और सर से जानकारी का विषय है किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
0: सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप यही जानकारी दीजिए कि विपणन क्या है।
1: जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि विपणन क्या है। विपणन हमारे कृषि के संबंध में अगर हम बात करें, तो जो हमारे कृषि उत्पादों को मार्केटिंग, जो कहाँ हम उन्हें बेच सकते हैं और कहाँ हम उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे जो सरकार की मंशा रही है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उसके अंतर्गत देखिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप अपना उत्पाद अपने नज़दीकी मंडी में जाके बेच सकते हैं, जो मतलब आपका स्थानीय बाज़ार हुआ, इसके अतिरिक्त हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, जिसे हम निर्यात के माध्यम से जो हम बेचते हैं अपना माल, तो उसको एक इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के माध्यम से हम बेचेंगे, तो उस पर हम थोड़ा ज़्यादा मूल्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिस क्वालिटी का माल रहेगा उसके हमें मार्केट में वही मूल्य मिलेगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इसके लिए देखिए, वर्तमान में जो स्थानीय बाज़ार में मंडियाँ हैं
0: जी,
1: और अभी एक मंडी अधिनियम के अंतर्गत FPO को या कोई कंपनी चाहे तो अपनी मंडी किसानों के खेत में जाके स्थापित कर सकती है, जिसमें कई तरह के लाइसेंसेस हैं, जैसे सीधा थोक क्रय केंद्र का लाइसेंस है, एक मंडी उपस्थल स्थापित करना चाहें तो उसके लिए लाइसेंस है, और निजी मंडी स्थापित करने के लिए भी ये लाइसेंस है। तो ये तीन तरह के मंडी स्थापित करने की व्यवस्था है, जिसमें सीधा थोक क्रय में किसान चाहें तो अपने ही खेत में या अपने गांव में ही एक अपनी मंडी स्थापित कर सकते हैं, और जो भी उत्पाद उनके किसानों का, जो उस गांव के हों, उस ब्लॉक के हों, उनका माल वो वहीं के वहीं खरीद लें, ताकि उन किसानों को वो अपना उत्पाद अपनी अपने गांव के बाहर जो मुख्य मंडियां हैं या जो बड़ी मंडियां हैं जो दूर पड़ती हैं उनके यहाँ से, तो उसमें जो ले जाने आने में जो खर्चा होता है वो उनका बचे, और वहीं के वहीं किसान अपने गांव में ही अपने उत्पाद को बेच सके।
0: बिल्कुल।
1: और जो उस मंडी को चला रहे हैं वो अपने स्तर से उसमें वेयर हाउस बना के अपने मंडी में अपने गाँव में ही उसको सेफली सिक्योर करें, और उस पर जब फिर जब बिके अच्छा मूल्य मिले तो वो उसको आगे बेच सके।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मार्केटिंग के संबंध में दी, और साथ ही साथ वो किस तरह से अपने उपज का मार्केट कर सकते हैं, बाजार कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, या किस तरह से वो अपना एक संगठन बना सकते हैं, इस संबंध में जानकारी दी। अच्छा सर, जैसा कि मार्केटिंग का विषय है आज, और हमारे किसान भाई अपनी उपज को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, और जहाँ तक बात है आय बढ़ाने की, तो बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए हमारे जो छोटे किसान हैं और सीमांत किसान हैं, उनको किस तरह से वो फ़ायदा लें कि अपनी जो उपज है उसका मार्केट या बाजार मूल्य उनको अच्छा मिले।
1: जी, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैं थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। एक समय ऐसा था जब हमारे देश में हमारे पास वो क्वांटिटी नहीं उपलब्ध वो क्वांटिटी नहीं थी कि हमारे पास खाने के लिए उपज नहीं थी, तो हमें उस समय हरित क्रांति जो हमारे देश में

0: जी
1: उसके माध्यम से हमने अपने पहले प्रोडक्शन को बढ़ाया और आज हम इतने संपन्न हैं कि अपने देश का क्या, हम अपने देश के जो अतिरिक्त जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसे निर्यात भी कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से प्रोडक्शन में सक्षम हैं आज। बट अब हमारा जो अगला स्टेप होना है, जो हमारा फोकस जिस पे होना है, अब वो होना है हमें क्वालिटी पे। क्वांटिटी पे हम अब पूरी तरीके से संपन्न हैं, बट अब क्वालिटी पे हमें बात करनी है। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर हम अपना माल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम अपने जो देशवासी हैं उनको भी अपना अच्छा उत्पाद खिला सकते हैं। और देखिए, ये बाजार की एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि जैसा उत्पाद वैसा दाम। अगर आप अच्छा उत्पाद उगाएंगे, मार्केट में देंगे, तो उसका रेट आपको अच्छा ही मिलना है। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, उसका बाजार भाव सभी को पता है कि मार्केट में उसका जो हमारा कन्वेंशनल जो उत्पाद होता है, जो पूर्व से चल रहा है, उससे ज्यादा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक क्वालिटी है। तो इसी तरह से अगर हम क्वालिटी पे बात करेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे, तो हमारा उत्पाद का हमें अच्छा मूल्य मिलेगा। साथ ही साथ जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने उत्पाद को, तो देखिए, हम जब हमारा देश, हमारी देश की करेंसी है रुपए, और हम एक्सपोर्ट जब करते हैं तो हमें मिलता है डॉलर।
0: बिल्कुल सर।
1: तो हमें उससे अपने देश में हम एक फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, उससे हम अपने देश के विकास में भी सहयोग करते हैं, और बाहर क्योंकि ज्यादा संपन्न देश है कुछ, तो वहाँ उस चीज का और ज्यादा मूल्य मिलता है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो अच्छा मूल्य ऐसे मिल सकता है। बात रही आपने करी कि छोटी हो रही जोत, तो देखिए, इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे किसानों को संगठित होकर काम करना पड़ेगा। हमारे जो केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, इनके माध्यम से एफपीओ को बहुत पुश किया जा रहा है, बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हर ब्लॉक में एक यूनिट स्थापित कराई जाए, हर एफपीओ को एक मंडी लाइसेंस दिलाया जाए, हर एफपीओ को अपना बीज क्रय केंद्र, उर्वरक क्रय केंद्र और अपनी फार्म मशीनरी यूनिट भी सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। तो मतलब सारे किसान एक एफपीओ से जुड़े और उस एफपीओ के माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ प्राप्त करें, क्योंकि एक एक किसान को एक एक लाभ दे पाना बहुत प्रैक्टिकल बात है कि नहीं पॉसिबल है। तो हम जब एफपीओ को टारगेट करते हैं, तो उस एफपीओ से जुड़े सारे लोग उस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को, और जो हमारे नौजवान साथी खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं और उपज पैदा करके मार्केट में बेचना चाहते हैं, उन सभी को आपकी जानकारी से कहीं ना कहीं लाभ होगा। और सर, आपने अभी बात की किसान भाइयों को कि एफपीओ के संबंध में, तो हमारे किसान भाई किस तरह से एफपीओ से जुड़ सकते हैं, इस संबंध में और थोड़ा सा किसान भाइयों को जागरूक कीजिए।
1: जी, इस संबंध में देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कृषि विभाग का जो तंत्र है, वो ब्लॉक स्तर पर हर गांव में हमारे कृषि विभाग के कोई ना कोई कर्मचारी रहते हैं, और हर जिले में जिला कृषि अधिकारी, उपनिदेशक कृषि कार्यरत हैं। अगर आप चाहें तो वहां से अपने ब्लॉक में, क्योंकि जो ये स्कीम आई थी एफपीओ की, तो वो हर ब्लॉक में एक एफपीओ स्थापित करने के उसमें प्रयास किया गया था, जिसके अंतर्गत लगभग लगभग हर ब्लॉक में ही एक एफपीओ डेडिकेट करके बनाया गया है। तो आप अपने क्षेत्रांत जो भी ब्लॉक है, ग्राम है, वहां पे कौन सा एफपीओ कार्य कर रहा है, आप उसका सदस्य बन सकते हैं। और सदस्य बनने का मतलब ये है कि आप उस एफपीओ के शेयर होल्डर बनते हैं, और जो भी उस एफपीओ अच्छा काम करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसके शेयर बढ़ेंगे, और शेयर बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका उस कंपनी में जो शेयर जितना है उसका आपको भी इनडायरेक्ट लाभ मिलना है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये आपको एक फायदा रहेगा इस तरीके से।
0: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। अच्छा सर, जैसा हम बात कर रहे हैं और आपने भी अभी कार्यक्रम के बीच में बात की थी कि प्राकृतिक खेती, किस तरह से हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा ताकि उनको जो उत्पाद होता है उसका अच्छा मूल्य मिल सके।
1: जी देखिए, नेशनल प्रोडक्शन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हर जनपद में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आकर्षित किया जाए। और स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे, देखिए, हमारा कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग भी इस पहल में एक अहम कार्य कर रहा है। जो भी किसान अपना, अपने खेत का अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से 50% तक की छूट भी दी जा रही है। जो भी खर्चा आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराने में आएगा, उसमें 1,00,000 रुपए तक का या 50% तक की आपको उसमें सुविधा दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो खर्चा हमारा सर्टिफिकेशन में लगता है वो कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराएं। और जो सर्टिफिकेशन में खर्चा होता है वो कम होगा और आपका प्रोडक्ट का आपको मूल्य ज़्यादा मिलेगा। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको और भी देखिए हमारे विभागों के माध्यम से समय समय पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें अपना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम हर तरीके की चीज़ों को उपयोग करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो। कोशिश की जाती है कि हर, क्योंकि हर

0: सिर्फ केमिकल पे ही डिपेंड होना एक उसका इलाज नहीं है,
1: जी,
0: हमें ऑर्गेनिक भी यूज़ करना चाहिए समय के अनुसार, मांग के अनुसार, और जहाँ ज़रूरत पड़े हम केमिकल का भी यूज़ करें, बट कोशिश ये रहे कि कम से कम केमिकल और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक। और इस पर कृषि विभाग के माध्यम से बहुत सारे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं कि हम कैसे, जैसे बीजामृत है, जीवामृत है, ये सारे उत्पाद हमारे जो गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, इससे बनाए जाते हैं, बहुत देसी नुस्खे हैं जो बहुत सालों से हमारे यहाँ यूज़ होते रहे हैं, बट अभी इस समय थोड़े लुप्त हो गए हैं, तो लोगों को उसके बारे में और जागरूक किया जा रहा है कि पुरानी जो प्रकृति जो पुरानी जो प्रैक्टिसेस रही हैं उनको दोबारा पुनर्जीवित किया जाए।
1: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। अच्छा, तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के मन में एक भ्रांति रहती है कि प्राकृतिक उत्पाद की जो उत्पादन होता है वो थोड़ा कम होता है और जो केमिकल उत्पाद होता है उसका उत्पादन हमारे किसान भाइयों को अधिक मिलता है, तो इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी देना चाहेंगे?
0: देखिए, एक भ्रांति है, अगर हम देखिए जब भी हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो हमें उसमें कुछ समय के लिए उसमें हमारा हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसकी हमारा प्रोडक्शन गिरे, बट हम अगर हम जब एक उसे रेगुलर प्रैक्टिस में ले आते हैं तो फिर वो उसका आउटपुट भी बढ़ता है। देखिए, जब हम अब कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, जैसे हम सुबह उठना दौड़ना शुरू करें अगर, तो पहले दिन आप शायद 500 मीटर जाके ही थक जाओगे, फिर अगले दिन आप थोड़ा हो सकता है 750 मीटर तक जाओ, धीमे धीमे आपकी एक अपनी कैपेसिटी आप बढ़ाते हो। जैसे उसी तरह से जब आप ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होंगे, हमें तो एकदम से नहीं होना है, हमें धीमे धीमे अपना केमिकल कम करना है, अपने ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जोर देना है ताकि हमारा प्रोडक्शन बैलेंस रहे और धीमे धीमे हम अपने ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहें। तो प्रोडक्शन शुरुआत में हो सकता है कम हो, जो कि मैं ये भी नहीं पुष्टि नहीं करूँगा कि कम ही होता है, बट अगर आप उसमें लगातार रहेंगे तो उसमें वो प्रोडक्शन 2-3 सालों में आपका आ जाएगा। और इसीलिए होता क्या है, जब आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 साल का कन्वर्जन पीरियड रखा जाता है, कि पहले साल में ही आपको और आपका जो खेत है उसे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं किया जाता है, उसमें 3 साल लगते हैं जो कन्वर्जन पीरियड बोला जाता है जिसे, तो 3 साल बाद आपका खेत ऑर्गेनिक, क्योंकि जो केमिकल आपने पहले से डाले हैं वो डिकम्पोज होने में समय लेते हैं, तो 3 साल बाद वो डिकम्पोज होते हैं और उस 3 साल के बाद आपके खेत को ऑर्गेनिक जब टेस्टिंग्स होती है उसके माध्यम से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है।
1: जी जी जी सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को इस संबंध में दी कि प्राकृतिक खेती पर हमें धीरे धीरे आना है, न कि एक साथ आना है, हमें धीरे धीरे केमिकल की खेती कम करनी है। और आज हम देखते भी हैं कि हमें अस्पतालों में काफ़ी भीड़ है, कि काफ़ी लोग बीमार हैं, तो हमें जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना है। साथ ही सर, जैसा हमारा आज विषय ही है कि कृषि विपणन, कृषि उपज का विपणन के संबंध में, तो सर हम जैसे कि गांव में देखते भी हैं कि हमारे किसान भाई जो है अपना जो उत्पाद होता है उसको गांव में ही बेच देते हैं, तो उन किसान भाइयों को आप किस तरह की जानकारी देंगे?
0: देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसानों को अपना उत्पाद संगठित होकर अपने उत्पाद को इकट्ठा कर बेचना चाहिए, इससे क्या है आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है।
1: जी जी जी।
0: और जब आप इकट्ठा करते हो तो आप अपना अगर वेयरहाउस बना लेते हैं, जैसे नाबार्ड की स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, इसके माध्यम से अपना वेयरहाउस स्थापित करें, सरकार के द्वारा बहुत ही कम रेट पर लोन दिया जा रहा है इन सब प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित करने के लिए, अपना अपने गाँव में ही सारी व्यवस्था करें कि प्रोसेसिंग यूनिट हो, वहीं वेयरहाउस रहे, ताकि अपना आप वहीं इकट्ठा करें माल, अपना ही मंडी लाइसेंस हो कि आपका FPO खरीदे सारे किसान से माल, वेयर हाउस में रखे, और जब आपको उस उत्पाद का उचित मूल्य मिले तब आप उसे बेचिए।
1: बिल्कुल सर,
0: जल्दबाजी में आदमी अपना उत्पाद कम दाम में बेच के, और जब वो अकेला होता है तो उसको फिर खर्चा भी ज्यादा होता है कि आप आधा ट्रक लेके जा रहे हो तो, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको पूरे ट्रक का देना पड़ता है, लेकिन जब आप 2-3 लोग मिलके ले जाते हो तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप 2-3 लोगों में आपस में बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से अगर एकजुट होकर कार्य करेंगे तो आपको जो आपके खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप संगठित होकर कार्य करेंगे किसान भाई, तो उनके खर्चे कम होंगे और उनके उनकी उपज का वो बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, इससे उनको एक उचित मूल्य भी मिलता है इसका।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मार्केटिंग के संबंध में दी, किस तरह से वो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। तो आपने हमारे कार्यक्रम में संगठन के माध्यम से विपणन के संबंध में आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर आपका, जो आपके माध्यम से हम किसानों के समक्ष के कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं।
1: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये बातचीत सुनी, किसानों की उपज का संगठन के माध्यम से विपणन। भाई देखो, श्री राहुल यादव जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि भैया जब भी आप अपनी उपज का विपणन करते हैं या मार्केट करते हैं या बाजार में बेचते हैं, तो भाई उसको जो है हमें बेचने में काफ़ी खर्च हो जाता है। यदि आप संगठित हो जाएं, यानी कि पूरा गांव एक जगह मिलकर अपनी उपज को बेच है, तो भैया उसका जो है लाभ हमारे किसान भाइयों को चाहे थोड़ा थोड़ा ही अधिक मिले, लेकिन भैया मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जब हम अकेले आदमी कहीं भी अपने सामान को या अपनी उपज को

या हमें गेहूं ले जाने हो या धान ले जाना हो या अन्य कोई फसल अपनी ले जानी हो भैया बाजार में, तो भाई उसके लिए अकेले आदमी को उसका खर्च देना पड़ेगा, चाहे ट्रांसपोर्ट हो चाहे मंडी का खर्च हो। तो भाई और यदि संगठित हो जाते हैं हम, तो भैया वो थोड़ा थोड़ा खर्च बंटकर जो है हमारे सभी किसान बहन भाइयों को आता है। साथ ही साथ देखो राहुल यादव जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, तो भाई हमें प्राकृतिक खेती में सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि हम जो है एक साथ प्राकृतिक खेती पर नहीं आना है, हमें धीरे धीरे धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों को कम करना है और प्राकृतिक खेती पर आना है। साथ ही देखो भैया यादव जी ने एक बात और थोड़ी सी हमारे किसान भाइयों को जागरूकता की दृष्टि से भी बताई कि भैया यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो भाई आपको जो है बीमारी और ये जो हमारे शारीरिक कमजोरी होती है भैया वो भी कम होती है, साथ ही साथ जो हमारी उपज होती है उसका बाजार मूल्य भी अधिक मिलता है। साथ ही जो हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं तो भाई उनको जो है 3 साल का एक पीरियड होता है जिसमें भैया प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेट मिलता है, तो भैया वो सर्टिफिकेट भी 3 साल लगते हैं मिलने में। तो भाई इस तरह से यदि आप करेंगे प्राकृतिक खेती तो भाई उससे जो है आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आज जो है भैया अस्पतालों में काफी भीड़ है। और जैसा कि देखो यादव जी ने बताया कि जमीन छोटी होती चली जा रही है और भैया जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, यदि आप इंटरनेशनल बाजार में अपनी उपज को बेचते हैं, चाहे भैया गेहूं हो चाहे धान हो चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, तो भाई उसका जो है हमारे देश की अपेक्षा वहां का भैया डॉलर आता है और फॉरेन कंट्री का जो है रुपया जो भी हो डॉलर है या अन्य कुछ है रियाल है, तो भैया वो आता है और हमारे देश में जो है उस आर्थिक स्थिति हमारे देश की सुधरती है। साथ ही साथ देखो राहुल यादव जी ने किसान भाइयों को योजनाओं के संबंध में जानकारी दी कि भैया आप नाबार्ड के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से जो है संगठित हों और FPO बनाएं ताकि भैया आप अपनी उपज को अच्छे रेट में बेच सकें और अच्छा लाभ अपनी खेती किसानी से कमा सकें। तो भाई जब बात लाभ की होती है तो लाभ एक और चीज़ से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो किसान भाइयों को बिना देर किए लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं महाभारत के किस्से से यो प्यारी सी रागनी।

भले आदमी ना होते घर में तकरार करन आले। अभी भाइयों ने सेठपाल सिंह आर्य व साथियों से यो प्यारी सी रागनी सुनी। भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की दिन भर की थकान उतर गई होगी और भरपूर मनोरंजन हमारे किसान भाइयों का हुआ होगा। भैया देखो, आप खेती किसानी के काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भैया अपने पशुओं का भी ध्यान रखें क्योंकि बरसात का मौसम है और भैया बरसात के मौसम में पशुओं को मक्खी मच्छर ज़्यादा लगे हैं, तो भैया उनका भी ध्यान रखें। साथ ही साथ भैया खेती किसानी के जो भी काम है अपने भैया मौसम को देखते हुए करें, चाहे भैया सब्जियों की तुड़ाई का हो या भैया अन्य फसल का, भैया किसी की कटाई का हो। तो भैया देखो, अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाई उसे बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो भाई आप हमें चिट्ठी पत्री लिखते रहें, इसके लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2476।

3। भाई एक हमारा मोबाइल नंबर है, क्योंकि आजकल सभी के पास बड़े फ़ोन हैं, तो भैया देखो आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9457072888। भाई नंबर एक बार और बता दूं, 9457072888। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस लिख सकते हैं, और जो भी आपका सुझाव हो या हमारे कार्यक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य लिखें। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अतीक अहमद अंसारी से कहानी। कहानी के शीर्षक हैं जुम्मन की हार और माँ की पेंशन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा में कहानी।
1: आपके लिए दो कहानियां लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए पहली कहानी की जानिब चलते हैं, जिसका उन्वान शीर्षक है जुम्मन की हार। कहानी यहाँ से शुरू होती है। जुम्मन की मेहनत रंग लाई। बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद जुम्मन मियाँ आखिरकार सरकारी दामाद जो हो गए थे। घर के सब लोग खुशी में मशगूल थे। आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। जुम्मन को जहाँ नौकरी पाने की खुशी थी, वहीं अपनी खेती बाड़ी की फिक्र भी सताई जा रही थी। जुम्मन चाहते थे कि नौकरी पर जाने से पूर्व खेती बाड़ी किसी को ठेके या बटाई पर दे दी जाए। लल्लन मियाँ का खेत जुम्मन के बराबर में था। लल्लन मियाँ जुम्मन के खेत पर पूर्व से ही गिद्ध की नज़र बनाए हुए थे, यानी उसे बटाई पर लेना चाहते थे। जुम्मन की नौकरी के कारण लल्लन को अपना सपना पूरा नज़र होता नजर आया। चालाक लल्लन फौरन मिठाई खाने के बहाने जुम्मन के घर जा दमके और मिठाई खाने के पश्चात फौरन ही जुम्मन से दिल की बात कह डाली। जुम्मन भी बिना नानुकुर किए बगैर फौरन ही तैयार हो गए। नियम व शर्तें तय हो गईं और एक सादे कागज पर याददाश्त तहरीर भी लिख दी गई, ताकि सनद रहे और भविष्य में काम आए। जुम्मन ईमानदार व्यक्ति थे और जुम्मन की ईमानदारी के दूर दूर तक चर्चा थी। वो दूसरों पर भी इतना ही यकीन किया करते थे। जुम्मन ने अपनी जमीन लल्लन के हवाले कर दी और अगले ही दिन बोरिया बिस्तर उठा नौकरी ज्वाइन करने चले गए। अब लल्लन मियाँ समय अनुसार हर मौसम की फसल का हिस्सा जुम्मन के घर पहुंचा दिया करते, और इस तरह ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। समय बीतता गया। जुम्मन मियाँ छुट्टी पर घर आते तो अपने खेत की लहलहाती फसल को देखकर फूले ना समाते। अचानक लल्लन मियाँ ने फसल के हिस्से में पूर्व की भांति काफी कटौती कर दी, और जब कटौती का यह सिलसिला लगातार चलता रहा तो जुम्मन ने लल्लन से एक दिन पूछ ही लिया कि भाई लल्लन, आखिर माजरा क्या है? आप अब पहले की भांति फसल का हिस्सा कम क्यों दे रहे हैं? क्या फसल कम पैदा हो रही है? लल्लन ने कहा, मैंने अपनी जमीन की पैमाइश कराई कि मेरी काफी सारी जमीन आपके खेत में चली गई है, तो मैंने अपनी जमीन आपके खेत से पूरी कर ली है। अब मेरे पास आपकी जितनी जमीन है उसी के हिसाब से आपका हिस्सा दे रहा हूँ। ये सुनकर जुम्मन के पांव तले की जमीन खिसक गई। अब जुम्मन की नींद हराम हो चुकी थी और उसको रात पहाड़ के जैसी लग रही थी। जैसे तैसे जुम्मन ने करवट बदलते हुए रात काटी और सुबह होते ही तहसील पहुंचकर सारा माजरा वकील को सुनाया। वकील ने केस फाइल कर दिया। मामला संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश हुआ। संबंधित अधिकारी ने अपनी अधीनस्थ अधिकारी को जांच आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा। अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और खेतों की दिखावटी पैमाइश शुरू कर दी, क्योंकि लल्लन मियाँ जांच टीम को पहले ही मैनेज कर चुके थे। लिहाजा जांच टीम ने रिपोर्ट लल्लन के पक्ष में लगाते हुए उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश कर दी। जांच के आधार पर फैसला लल्लन मियाँ के पक्ष में किया गया, और इस तरह जुम्मन मियाँ के पड़ोसी प्रेम व पड़ोसी कर्तव्य को निभाने के जुनून ने उनके यकीन और ईमानदारी को चकनाचूर कर दिया। अर्थात जुम्मन की सच्चाई, सत्य निष्ठा, नेक नियति के कोई मायने नहीं रह गए थे। अब जुम्मन सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इस कलयुगी दुनिया में किस पर यकीन किया जाए और किसको अपना कहा जाए। ये सोचते हुए जुम्मन अपने घर की ओर बढ़ रहे थे और उनकी आंखों के आंसू उनसे बार बार यही कह रहे थे कि इस कलयुगी दुनिया में जुम्मन नहीं सत्य हारा है, जुम्मन नहीं सत्य हारा है, जुम्मन नहीं सत्य हारा है। आइए दोस्तों दूसरी कहानी की जानिब चलते हैं, जिसका उन्वान है माँ की पेंशन। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 5 बहन भाइयों में चीनू सबसे छोटा था। चीनू को छोड़ सभी बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी, यानी सब अपने खाने दीवाने थे। पिता का सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद स्वर्गवास हो गया था, इसलिए पेंशन माँ के नाम आती थी, जिससे चीनू और माता का गुजारा ठीक चल रहा था। चीनू का रुझान अध्यात्म की ओर था। चीनू महाशय उसी में अपना करियर बनाना चाहते थे, परंतु कामयाब ना हो सके, कुछ और करने की कोशिश भी नहीं की। माँ और चीनू के मित्रों ने भी काफी चाहा कि चीनू कोई काम करे तो हम भी उसकी मदद करें, जिससे चीनू की गाड़ी पटरी पर आ जाए और चीनू विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने भाइयों की तरह जिंदगी बसर कर सके। माँ की भी यही इच्छा थी। चीनू की माँ का मिजाज हाकिमाना था, वो पूरे घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। अक्सर देखा भी गया है टेंशन वाली महिलाओं में तानाशाही आ ही जाती है। ऐसी महिलाएं परिवार के साथ समझौता नहीं कर पाती, घमंड इतना कि कई बार तो ये कहते हुए सुना गया है कि मैं किसी का लिया दिया थोड़े ही खा रही हूँ जो मैं किसी की बात सुनूं। चीनू के जो बड़े भाई थे, जब उनका विवाह हुआ उसके पश्चात बेटे में कई बदलाव व खामियां नजर आने लगी थी। अरे बेटा अपनी पत्नी के साथ समय गुजारने लगा जो स्वाभाविक भी है। माँ के साथ गुजरने वाला वक्त धीरे धीरे कम होता गया, जो माँ को बहुत नागवार गुजरा और खलने भी लगा। अब माँ अपने जिगर के टुकड़े को जोरू का गुलाम कहकर पुकारने लगी। घर में राण ना हो इसलिए बेटा चुप ही रहना ज्यादा पसंद करने लगा, और धीरे धीरे बड़े बेटे और माँ में दूरियां बनती चली गईं। अब रही गैर विवाहित पुत्र चीनू की बात, उसकी तो लॉटरी लग चुकी थी, अर्थात माँ से नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। निकट्टू कहकर पुकारने वाली माँ अब उसे जरूरत से ज्यादा दुलार करने लगी थी, क्योंकि कुछ समय मित्रों के साथ गुजारने के पश्चात चीनू का अधिकतर समय माँ के साथ ही गुजरने लगा था। आमतौर पर देखा गया है कि कुंवारा और आर्थिक रूप से कमजोर बेटा ही माँ बाप को सबसे प्यारा होता है। अब बेटे की उम्र चाहे 50 वर्ष ही क्यों ना हो, यहाँ भी ऐसा ही था। इस वक्त माँ को चीनू सबसे प्यारा था। माँ चाहती थी कि चीनू की भी शादी हो जाए, मगर चीनू माँ से जिम्मेदारियों से बचते थे, क्योंकि उन्हें माँ की पेंशन पर मौज उड़ाने का डिप्लोमा जो मिल गया था। सारे रिश्तेदारों और मित्रों ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए थे कि चीनू शादी कर ले, परंतु चीनू माँ से टच से मच नहीं हुए, जिम्मेदारी जो निभानी पड़ती। चीनू के कुछ मित्रों का कहना था कि चीनू ने एक 4 बच्चों की अम्मा से कोर्ट मैरिज कर रखा है। असलियत क्या थी ये तो चीनू या फिर ईश्वर ही जानता था, लेकिन एक बात जरूर थी, यदि चीनू की शादी हो जाती तो यकीनन कुछ ही दिनों बाद चीनू की माँ को दोनों बड़ी बहुएं और पुत्र कुछ ही दिनों में अच्छे लगने लगते। बाकी सच्चाई सामने आ जाती कि कौन कितना बड़ा जोरू का गुलाम है और माँ का फरमाबरदार। लेकिन इसके लिए चीनू की शादी होना बहुत आवश्यक था, जो कतई तैयार ना था। माँ के तल्ख और हकीमाना यानी बादशाही मिजाज के कारण ही एक बेटा किसी अन्य शहर में पलायन कर गया था, यानी अपने शहर से दूसरे शहर में चला गया था और अपने बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। चीनू की माँ भूल चुकी थी कि वो भी कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, सिर्फ और सिर्फ सास और एक हाकिम का रूल अदा कर रही थी, जिस कारण दिन प्रतिदिन घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। और चीनू महाशय इस लड़ाई में माँ का भरपूर सहयोग कर रहे थे, अर्थात आग में घी डाल रहे थे और बिना भविष्य की चिंता किए माँ की पेंशन की मौज उड़ा रहे थे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आपने सुनी अतीक अहमद अंसार से कहानी, शीर्षक था जुम्मन की हार और माँ की पेंशन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया की। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का, और लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म निकाह से।

सलमा आगा की आवाज में भी आपने सुना फिल्म निकाह से ये गीत। गीत को संगीत दिया था रवि ने और गीत लिखा था हसन कमाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पड़ोसन से। संगीत RD बर्मन का है और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

मुकेश और लता की आवाज में भी आपने सुना शोर फिल्म का ये गीत। इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था संतोष आनंद ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत श्री 420 से आवाजें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

मन्ना डे और लता मंगेशकर के गाए फिल्म श्री 420 के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात्रि 10 बजे, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर और गीत संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। अदबी दुनिया के अंतर्गत शाम 7:50 पर आज कलामी शायर होंगे सुनील साहिल। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनिएगा शाहरुख की गाई गजलें। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कल रात्रि 10 बजे। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विधानमंडल समीक्षा आप सुनेंगे कल रात्रि 8:20 पर। ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनिएगा बेनू जुयाल की गाए भजन। छाया गीत कल शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर विद्या सागर सिंह से वार्ता। विषय होगा रस खान के साहित्य में निस्वार्थ प्रेम। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे डॉक्टर दुष्यंत, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ से प्रमोद सिंह की बातचीत। विषय होगा कार्बन फार्मिंग। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, लव स्टोरी और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में कल शाम 5 बजे जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना पर। नई फिल्मों से गीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। कल दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में सुनेगा जगत राम वर्मा और साथियों के गाए जौनसारी लोकगीत। परिवार जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर सुनेगा डॉक्टर गौरव राठी से एस के नौटियाल की बातचीत। विषय होगा मलेरिया कारण लक्षण और बचाव। साथ ही जानकारी का विषय होगा भारत का मौसम और आपका स्वास्थ्य। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा होगी विश्व स्तनपान सप्ताह की। मिड डे मेलेडी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 12:05 पर सुनेगा विजया गोडबोले का गायन। आप प्रस्तुत करेंगी राग शुद्ध सारंग। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल सुबह 11:30 पर। चित्रपट संगीत कल सुबह 11 बजे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में सुनेगा निर्देश त्यागी के गाए शिव जी और गंगा गीत। गोल्डन हिट्स कार्यक्रम 8:45 पर और कल सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने को है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ, कहा युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की जनहित के मुद्दे सदन में रखने की अपील। भारत की अध्यक्षता में कल से लखनऊ में शुरू होगी ब्रिक्स देशों के NSO की 2 दिवसीय बैठक, सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। और कल सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम, कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
8: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
7: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाए नहीं।
8: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें।
7: इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है और जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। राजधानी लखनऊ के गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्मकुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाग लिया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा, यह अभियान जनभागीदारी के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है।
9: सरकार कानून बना सकती, संसाधन उपलब्ध करा सकती, लेकिन चरित्र निर्माण केवल कानून से नहीं होता, संस्कारों से होता है। और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म कुमारी ने दशकों से बिना किसी भेदभाव के समाज में शांति, आत्म जागृति, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का दीप जलाया है।
7: देश भर के लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस के वॉलेंटियर्स, युवा क्लब, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन शामिल हुए। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आज विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने, स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: हम तो सभी लोगों से हमने सहयोग मांगा यार। जो बिजनेस होता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से सत्र आहूत किया जाता। बिजनेस थोड़ा बिजनेस है, 4 दिन का सत्र है। कल विधानसभा में तो निधन का निर्देश होगा और उसके बाद 3 दिन पूरी तरीके से जो परंपरागत तरीके से कार्रवाई है वो संपादित।
7: बैठक में निषाद पार्टी, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक पार्टी, अपना दल एस, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भाग लिया। ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक कल और 4 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
10: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की बैठक कल और 4 अगस्त को भारत की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित होगी। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। वहीं सांख्यिकी ट्रैक का विषय परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी रखा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले आंकड़ों, नवाचार, प्रभावी डेटा प्रसार और जन केंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है, ताकि साक्ष्य आधारित, समावेशी और टिकाऊ विकास को मजबूती मिल सके। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 3 अगस्त को प्रशासनिक डेटा की क्षमता और 4 अगस्त को विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
7: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज लखनऊ के 1090 चौराहे से द राइडिंग चैप्टर्स विजिट माई स्टेट के पहले संस्करण का शुभारंभ कर 65 बाइक राइडर्स के दल को बांदा जिले के कालिंजर किले के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रदेश के कम चर्चित विरासत, प्राकृतिक स्थलों और धरोहरों को नए पर्यटन अनुभव के रूप में देश दुनिया के पर्यटकों के सामने पेश करना है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बाइक राइडर्स के दल को रोमांचक यात्रा के लिए रवाना किया गया है। कल सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 सीसीटीवी कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। वहीं हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। हापुड़ से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
11: सावन के पहले सोमवार को हापुड़ जनपद के सभी मंदिरों में भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना और जल अभिषेक होगा। सुरक्षा के मद्देनजर हापुड़ में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिरों में प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्था बनाने के लिए स्वयं सेवक भी तैनात किए गए हैं। वहीं कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर के जनपद में कांवड़ मार्ग निर्धारित कर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और जो 31 अगस्त तक लागू रहेगा। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
7: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। यह परीक्षा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी 1 सितंबर 2026 तक आवेदन पत्र भरकर शुल्क जमा कर सकेंगे। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने इससे पहले 10000 मीटर में रजत पदक हासिल किया था। दोनों दूरी की दौड़ों में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उपलब्धि पर धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रमंडल खेल की इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक है और उनकी पिछली सफलता के बाद उनके सफर में यह एक और गर्व का अध्याय जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलबीर सिंह को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। कहा, युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की जनहित के मुद्दे सदन में रखने की अपील। भारत की अध्यक्षता में कल से लखनऊ में शुरू होगी ब्रिक्स देशों के एमएसओ की 2 दिवसीय बैठक। सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। और कल सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
12: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
13: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
12: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
13: कहाँ से पता चलेगा?
12: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
14: आज ही सर्च करूंगा।
12: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
15: RBI कहता है,
16: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
17: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
18: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
19: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए शाहरुख की गाई गजलें।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शाहरुख की गाई गजलें। और लीजिए अब पेश है कार्यक्रम की ये अंतिम गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुनी शाहरुख की गाई गजलें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अदबी दुनिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के कलाम शायर हैं सुनील साहिल। लीजिए, प्रस्तुत है इनसे कलाम।
1: गजल का मतलब देखिएगा, फिक्र सबसे है जुदा लहजा अलग, फिक्र सबसे है जुदा लहजा अलग, रंग है मेरा भी कपना अलग, तूने दुनिया की तरह देखा मुझे। शेर बतौर खास, तूने दुनिया की तरह देखा मुझे, काश तेरा जाविया होता अलग। और सच कहूं तो मैंने देखा ही नहीं, सच कहूं तो मैंने देखा ही नहीं, जिंदगी से मौत का चेहरा अलग। और ये शेर भी बतौर खास कि रफ्ता रफ्ता फिर मेरी रफ्तार से, रफ्ता रफ्ता फिर मेरी रफ्तार से, हो गया है वक्त का पहिया अलग। और सर पे सूरज की तमाजत देखकर, सर पे सूरज की तमाजत देखकर, हो गया है जिस्म से साया अलग, हो गया है जिस्म से साया अलग। और गाह हंसना गाह रोना बेसबब, गाह हंसना गाह रोना बेसबब, है मेरे एहसास की दुनिया अलग। और मक्ता देखिएगा गजल का कि बदगुमा होकर भी साहिल क्या मिला, बदगुमा होकर भी साहिल क्या मिला, एक भरोसा था सो वो टूटा अलग। और इस कलाम के बाद एक गजल और हाजिर करता हूं कि कोई मशकूक नहीं तेरी मसीहाई पर, कोई मशकूक नहीं तेरी मसीहाई पर। देखिएगा मतलब कि कोई मशकूक नहीं तेरी मसीहाई पर, उंगलियां उठने लगी मेरे शके भाई पर। और शेर बतौर खास कि उसने चूमा है मेरा हाथ भरी महफिल में, उसने चूमा है मेरा हाथ भरी महफिल में, मैं भी कुर्बान हूं इस तर्ज पजीराई पर। और कौन सा दुश्मने जा मुझ में छिपा बैठा है, कौन सा दुश्मने जा मुझ में छिपा बैठा है, हंसता रहता है मेरी जात की तन्हाई पर। और ये जो ताबूत में लिपटी हुई दो लाशें हैं, ये जो ताबूत में लिपटी हुई दो लाशें हैं, कल अदालत में ही मारे गए सुनवाई पर। और मुझसे बेहतर वो मेरी खैर खबर रखता है, मुझसे बेहतर वो मेरी खैर खबर रखता है, रश्क मैं क्यों ना करूं अपने तमाशाई पर। और शेर देखिएगा कि लोग सुन लेते हैं और दाद भी दे देते हैं, लोग सुन लेते हैं और दाद भी दे देते हैं, गुफ्तगु कौन करे शेर की गहराई पर, गुफ्तगु कौन करे शेर की गहराई पर। और मक्ता भी देख लीजिएगा कि मैंने दिन रात तराशे हैं जो पत्थर साहिल, मैंने दिन रात तराशे हैं जो पत्थर साहिल, वो भी हैरान हैं अब मेरी जबी साई पर, मैंने दिन रात तराशे हैं जो पत्थर साहिल, वो भी हैरान है अब मेरी जबी साई पर। और ये गजल मखसूस तौर पर पेश खिदमत है, कुछ किताबें मेरे सामान में रखे रखे, कुछ किताबें मेरे सामान में रखे रखे, मुझको पढ़ती रही जुजदान में रखे रखे, कुछ किताबें मेरे सामान में रखे रखे, मुझको पढ़ती रही जुजदान में रखे रखे। और उसने मतला कि नेकियां और बदी ध्यान में रखे रखे, नेकियां और बदी ध्यान में रखे रखे, जिंदगी कट गई मीजान में रखे रखे, और वक्त के साथ ही धुंधला गई यादें तेरी। शेर बतौर खास हाजिर करता हूं कि वक्त के साथ ही धुंधला गई यादें तेरी, फूल मुरझा गए गुलदान में रखे रखे, फूल मुरझा गए गुलदान में रखे रखे। और शेर देखिएगा कि देखना एक दिन तुझमें ही उतर जाएंगे, देखना एक दिन तुझमें ही उतर जाएंगे, हम तेरे दीदाए हैरान में रखे रखे, हम तेरे दीदाए हैरान में रखे रखे। और शेर हाजिर करता हूँ कि कुछ भी हासिल न हुआ मेरी सदाकत से मुझे, कुछ भी हासिल न हुआ मेरी सदाकत से मुझे, मौजिजे मर गए ईमान में रखे रखे, कुछ भी हासिल न हुआ मेरी सदाकत से मुझे, मौजिजे मर गए ईमान में रखे रखे। और शेर देखिएगा कि वक्ते रुखसत वो बहुत रोए बहुत ही रोए, वक्ते रुखसत वो बहुत रोए बहुत ही रोए, हाथ को मेरे गिरेबान में रखे रखे, वक्ते रुखसत वो बहुत रोए, बहुत ही रोए, हाथ को मेरे गिरे बान में रखे रखे। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि उम्र साहिल ये मोहब्बत में गुजर जाएगी, उम्र साहिल ये मोहब्बत में गुजर जाएगी, नफे में या किसी नुकसान में रखे रखे, नफे में या किसी नुकसान में रखे रखे। और एक गजल के चंद अशार और देख लीजिएगा। तेरे बगैर भी जीना बड़ा अजाब रहा, तेरे बगैर भी जीना बड़ा अजाब रहा, कि मेरा वक्त मुसलसल बड़ा खराब रहा, कि मेरा वक्त मुसलसल बड़ा खराब रहा, तरसता रह गया ताबीर के लिए आखिर, तरसता रह गया ताबीर के लिए आखिर, जो ख्वाब मैंने सजाया वो सिर्फ ख्वाब रहा, जो ख्वाब मैंने सजाया वो सिर्फ ख्वाब रहा, और कोई भी काम मुकम्मल न हो सका मेरा, कोई भी काम मुकम्मल न हो सका मेरा, अधूरा उम्रे रवा का हर एक बाब रहा, अधूरा उम्रे रवा का हर एक बाब रहा। और शेर देख लीजिएगा कि जिसे मैं अपना बताता रहा जमाने से, जिसे मैं अपना बताता रहा जमाने से, मुझे ही छोड़ के वो सबको दस्तयाब रहा, जिसे मैं अपना बताता रहा जमाने से, मुझे ही छोड़ के वो सबको दस्तयाब रहा, और अब इससे आगे ताल्लुक न बन सका मेरा, अब इससे आगे ताल्लुक न बन सका मेरा, जबां पे उसकी फकत मोहतरम जनाब रहा, अब इससे आगे ताल्लुक न बन सका मेरा, जबां पे उसकी फकत मोहतरम जनाब रहा। और ये शेर भी देख लीजिएगा कि ये शौको जौक ये फन शायरी सुखन गोई, ये शौको जौक ये फन शायरी सुखन गोई, मैं ऐसे दर्द कमाने में कामयाब रहा, मैं ऐसे दर्द कमाने में कामयाब रहा। और मक्ता भी देख लीजिएगा कि मैं एक चेहरे से ही जिंदगी गुजार आया, मैं एक चेहरे से ही जिंदगी गुजार आया, खुदा का शुक्र है साहिल मैं बेनकाब रहा, खुदा का शुक्र है साहिल मैं बेनकाब रहा। और एक आध गजल और देख लीजिएगा। सयाद पे रोए कभी जिंदान पे रोए, सयाद पे रोए कभी जिंदान पे रोए, आदत थी हमें रोने की हर आन पे रोए, सयाद पे रोए कभी जिंदान पे रोए, आदत थी हमें रोने की।

0: हर आन पे रोए और देखा जो कभी खुद को बड़े गौर से हमने, देखा जो कभी खुद को बड़े गौर से हमने, नमनाक नजर दीदाए हैरान पे रोए, देखा जो कभी खुद को बड़े गौर से हमने, नमनाक नजर दीदाए हैरान पे रोए, और अशकों का मजा खूब लिया हमने सफर में, अशकों का मजा खूब लिया हमने सफर में, दामन पे कभी चाक गिरेबान पे रोए, दामन पे कभी चाक गिरेबान पे रोए, और रोने की तलब उठती है क्यों दिल में अचानक, रोने की तलब उठती है क्यों दिल में अचानक, हम बारहा इस जज्बाए अनजान पे रोए, रोने की तलब उठती है क्यों दिल में अचानक, रोने की तलब उठती है क्यों दिल में अचानक, हम बारहा इस जज्बाए अनजान पे रोए, और हर बार सुनाकर उसे रुदादे गमे दिल, हर बार सुनाकर उसे रुदादे गमे दिल, पामालिए एहसास के इमकान पे रोए, हर बार सुनाकर उसे रुदादे गमे दिल, पामालिए एहसास के इमकान पे रोए, और हम मीर तकी मीर नहीं शायरे दिल हैं, हम मीर तकी मीर नहीं शायरे दिल हैं, हम अपने लिखे दर्द के दीवान पे रोए, हम अपने लिखे दर्द के दीवान पे रोए, और मक्ता हाजिर है कि आएगी लहर देखने हर बार तमाशा, आएगी लहर देखने हर बार तमाशा, साहिल भी अगर साहिले वीरान पे रोए, साहिल भी अगर साहिले वीरान पे रोए, और सयाद पे रोए कभी जिंदान पे रोए, आदत थी हमें रोने की हर आन पे रोए।
1: अदबी दुनिया के अंतर्गत अभी आपने सुना सुनील साहिल से कलाम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म दीवाने से। आवाजें हैं कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: ये गीत आपने सुना कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में, और फिल्म का नाम था दीवाने। दोस्तों, जब दिल किसी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब जाए तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। दुनिया की भीड़ में बस एक ही चेहरा सबसे अपना लगता है। ऐसे ही बेइंतहा प्यार और खूबसूरत एहसास को बयां किया था हमारे इस गीत ने, जो अभी आपने सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म दीवाने से।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, मोहब्बत की राहों में कदम जब साथ चल पड़े, सुनिएगा जरा, मोहब्बत की राहों में कदम जब साथ चल पड़े तो हर लम्हा यादगार बन जाता है ना? जी हाँ, इसी खूबसूरत एहसास के नाम करते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत, जो हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से, स्वर रूप कुमार राठौर का।

रूप कुमार राठौड़ का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर से। संगीत अनु मलिक का था और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या और अब बारी है एक ऐसे गीत की जो प्यार की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। अगर किसी का नाम आपकी हर सांस में बस जाए तो समझिए इश्क अपनी पूरी शिद्दत पर है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही प्यारा सा गीत जिसको गाया है उदित नारायण ने।

और प्यार हो गया। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में, संगीत नुसरत फ़तेह अली खान का था और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। श्रोताओं, दिल से किए गए रिश्ते कभी मजबूरी नहीं होते, बल्कि जिंदगी की सबसे प्यारी पसंद बन जाते हैं। अगर आपने भी कभी किसी को पूरे दिल से अपना माना है तो अगला गीत यकीनन आपके दिल को छू जाएगा। जी हाँ श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में।

दिल मांगे मोर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में। संगीत हिमेश रेशमिया का था और गीत लिखा था समीर ने। श्रोताओं, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। कभी एक मुस्कान, कभी एक नजर और कभी किसी की सादगी दिल चुरा लेती है। प्यार के इसी हसीन एहसास को बयान करता है ये कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत। लीजिए सुनिएगा।

अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो के गाए फिल्म गुनहा के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म जन्नत से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को संगीत दिया है प्रीतम ने और गीत लिखे हैं सईद कादरी ने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज में, फिल्म जन्नत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म जन्नत से कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत केके की आवाज में, फिल्म जन्नत।

और श्रोताओं लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत कामरान अहमद की आवाज में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जन्नत से कुछ गीत और ये है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: कामरान अहमद के गाए फिल्म जन्नत के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आपने सुने फिल्म जन्नत से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को संगीत दिया था प्रीतम ने और गीत लिखे थे सईद कादरी ने। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
2: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
5: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
2: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए

0: एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआ और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी बांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Transport. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat,

0: Karnataka and Lakshadweep coast till tomorrow. In Madhya Pradesh, the first Shravan procession of Lord Mahakaleshwar will be taken out in Ujjain tomorrow, marking the first Monday of the holy Savan month. Lord Mahakal, in the Chandramoleshwar form, will be taken out in a traditional palanquin procession, offering devotees an opportunity for darshan. A special puja will be performed at the Mahakaleshwar temple before the procession begins at 4 p.m. The United Kashmir People's National Party, UKPNP, has urged the United Nations and the international community to take immediate steps over the deterioration of the human rights situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. A UKPNP delegation, led by its chairman Sardar Shaukat Ali Kashmiri, held a series of meetings at the UN headquarters in New York. The delegation demanded the release of those detained unlawfully, restoration of internet and telecommunication services in the occupied territory, lifting of curfews and unrestricted access for international media and human rights organizations to assess the situation. In Indonesia, 5 persons lost their lives and 41 are still missing after a ferry carrying 271 passengers and crew caught fire while at sea off Madura Island today. Country search and rescue agency said of those on board, 225 have been rescued so far. A search and rescue operation is underway as teams work to locate the missing passengers. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. The ceremony will begin at 1:30 a.m. Indian Standard Time and will celebrate 11 days of sporting excellence, friendship and cultural diversity. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony, marking India as a host for the centenary 2030 edition. India's impressive campaign at the Games, highlighted by a record-breaking performance in boxing, historic success in judo, milestone achievements in parasports, and multiple medals in athletics, propelled the country to fourth place in the overall medal standings with 13 gold, 17 silver and 9 bronze medals. More from our sports desk.
1: The closing ceremony at Glasgow's famous Hydro Arena that holds up to 13,000 fans will bring 11 days of athletic competition to a finale. The event, which is primarily a celebration of athlete performances, also acts as a thank you to the numerous volunteers and presents the host for the last time with performances by cultural organizations and community groups. The official transfer to the 24th Commonwealth Games in Ahmedabad in 2030 will also take place during the event. The ceremony will be headlined by Scottish rock band Simple Minds. Moreover, Bems, Kami Barnes and Sandy Tom will also perform, while Australian singer Delta Goodrum will be making her third appearance at a Commonwealth Games ceremony. From India, Rashmika Mandana and Shankar Mahadevan will headline India's cultural showcase in Glasgow. Doordarshan will broadcast the ceremony live for the fans. Chirag Jha from Sports Desk.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India's GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया. वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। एसबीआई की तहकीक में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की जीडीपी की शरह तरक्की के मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जलजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 41 लापता हो गए। और 2026 के दौलत मुश्तरका मुकाबलों की इख्तामी तकरीब आज रात मुनाकिद होगी जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि चूंकि भारत एक विकसित भारत बनने की जानिब गामजन है, लिहाजा मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पुरएतमाद होना चाहिए। नई दिल्ली में आज
3: क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: जनाब मोदी ने कहा कि नशे की लत की वजह से लोग अपने मकासद से भटक जाते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। वजीर आजम ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ कुंभों को तबाह कर देती है बल्कि मुल्क की ताकत को भी कम करती है। वजीर आजम ने कुंभों से जोर देकर कहा कि वो बदनामी के सबब नशीले मादों के गलत इस्तेमाल के केसेस को छुपा कर न रखें।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
2: मुल्क भर के 28,000 मकामात के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने इस तकरीब में शिरकत की जिनमें माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब्स, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानियत से मुतालिक तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें शामिल हैं। उम्मीद है कि भारतीय मईशत में रवां माली बरस की पहली सहमाही में तकरीबन 7% का इजाफा होगा जो पहले के अंदाजे से ज्यादा है। ये अंदाजा मजबूत तरीन इकतसादी इंदियों, बेहतर सनअती सरगर्मियों और बरामदात में बहाली से होता है। एसबीआई की एक रिसर्च के मुताबिक माली पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट से पहले कल जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह तरक्की से मुतालिक इस तखमीने से भारतीय रिजर्व बैंक के इससे पहले के तखमीनों में बेहतरी जाहिर होती है जो जुग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की वजह से कम सतह पर थे। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ते की जेलों में बंद कैदियों की गैर तबई मौत की सूरत में उन कैदियों के कानूनी वारिसों को मुआवजा अदा करने की स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। इस बारे में दिल्ली हुकूमत के दाखिली उमूर के महकमे ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: इस स्कीम के तहत खसूसी हालात में 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा अदा किया जा सकता है। जेल अफसरान या अमले की जानिब से फराइज की अदायगी में कोताही, तिब्बी या नीम तिब्बी अमले की लापरवाही और कैदी की खुदकुशी के मामलों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्कीम उन्हीं मामलों पर नाफिज होगी जहां दिल्ली की किसी भी जेल में नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख के बाद किसी कैदी की गैर फितरी मौत होगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इंसानी हकूक के कौमी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक नोटिफाई की गई इस स्कीम के न सिर्फ मखसूस हालात में मुतासर कुंभों को बरवक्त राहत पहुंचाएगी बल्कि इंतजामिया की जवाबदही में इजाफा होगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल किए जाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बिहार में बांकीपुर हल्के, गुजरात में मुंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया में पिछले महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने तीनों रियासतों में खुश असलूबी से गिनती कराए जाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए हैं। आसाम में मर्दमशुमारी 2027 के तहत खुद ही जाती मालूमात का इंदराज करने का अमल सेल्फ एन्यूमरेशन आज शुरू हो गया। शहरी अब इसके लिए बने पोर्टल sense.gov.in पर कुंभों और

0: बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों लोगों को इनखिला पर मजबूर होना पड़ा। साल 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेलकूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवो का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेजबान की छड़ी होस्ट बैटन सौंपी जाएगी, जो साल 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेजबानी की अलामत होगी। पेश और माजूर अफराद के खेलकूद मुकाबलों में भी संगमिल की हैसियत रखने वाली हसूलियाबियां हुई। एथलेटिक्स में बहुत से तमगे जीते गए, जिसकी वजह से मजमुई तौर पर तमगों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में भारत के 2 टेस्ट मुकाबलों के दौरे में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने घुटने की चोट से अजबर नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की ये सीरीज गाले में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रही है। बुमराह के घुटने की चोट काफी शदीद है, जिसका अंदाजा शुरू में नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के महारत के मरकज में खेलकूद से मुतालिक साइंस की टीम के मुताबिक उन्हें अगले मैचों के पेश नजर फिलहाल इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुलगीर मुहिम का आगाज किया। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। SBI की तहकीक में रवा माली बरस की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 41 लापता हो गए हैं। और 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनक्किद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
2: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्व एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्व एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और रानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो
2: भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
3: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट ये धुनें और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास टूटी, दैट वाज द फोर्स जवान के कदमों के लिए फोर्स आना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम महादेव बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
2: दिस इज द फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्शन। Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom kadam kadam badhaye, this is melody, pehle jo tha introduction tha, no melody, kadam kadam badhaye ja khushi ke geet gaaye ja, la la la la la la la la la la la la la la la la, this is melody, now is a brass beat, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: This is the brass duty. This actual, this is the josh. This is the josh jawan ke hirday mein lane ke liye, dimag mein lane ke. Then again is a melody. La ra la ra ra ra ra ra. This is also melody. Now with the trio. Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaaye ja, ye zindagi hai kaum ki, kaum pe lutaye ja.
1: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए। मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से बेशक उनमें कच्चापन है, लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
1: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
2: The trial began on the 5th of November and ended on the 31st of December of 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
1: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
3: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
1: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसरत जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: लिया। जय हिंद भैयो, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of शुभ सुख चैन की is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tab avhan pracharit shuni tab udar bani Hindu Bodh Shikh Jaino Par Shikh Musalman Krishtani Pura

0: see the Jaya Ho becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए

आगे बढ़ रहा था वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुने आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं, कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
1: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
2: बॉर्न इन टू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले। लेटर ही स्पेशलाइज्ड इन टप्पा सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रघुनाथ वाघ ऑफ द ग्वालियर घराना। फर्दरमोर अंडर द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा ही रिसीव्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत एंड भजन्स फ्रॉम द पद्मश्री रेसिपिएंट पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
1: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
2: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya awards.
1: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi, jo ek taal mein nibadh hai. Drut khayal ke bol hain, chalo hato ji chhel, kahi roke gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
2: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटोजी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

0: राग पुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना की बोल है बरनीन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना की बोल है बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन राग पुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बरनीन जाए सखी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारे दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BMZ, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे सेड दैट एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ विकसित भारत, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा